मानो एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

0: देखो देखो ऐसे कि दिया डोले मोरा ये छब मतवारी ये मुख जोरा जोरा न देखो देखो ऐसे कि दिया डोले मोरा
1: भूले भूले मेरी जानी
0: क्या बिचारी तुम तो बसी हो गोरी।

0: हाँ तो मैं
1: क्या कह रहा था?
0: हजूर आप अनंत बख्शी की लिखी तोता मैना की कहानी सुना रहे थे, सुनाइए ना।
2: अरे हाँ, तोते से बो

0: ऐसी धरनी को नमन करता है पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई के प्रदेश में, जी हाँ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र प्राय द्वितीय भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। भारत का ये सुंदर प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा राज्यों से घिरा हुआ है और इसके पश्चिम में है विराट अरब सागर। आइए अब जानते हैं कुछ यहाँ के दिलचस्प इतिहास के बारे में। प्राचीन 16 महाजनपदों में अश्मक या अशक का स्थान आधुनिक अहमदनगर के आसपास का माना जाता है। सम्राट अशोक के शिलालेख भी मुंबई के निकट पाए गए हैं। महाराष्ट्र के पहले प्रसिद्ध शासक सातवाहन, जो ईस्वी सन पूर्व 230 से 225 तक रहे, वे महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने अपने पीछे बहुत से साहित्यिक, कलात्मक तथा पुरातात्विक प्रमाण छोड़े हैं। उनके शासन में ही मानव जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर प्रगति हुई है। फिर इसके बाद वाकाटक आए, जिन्होंने भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल में महाराष्ट्र में शिक्षा, कला और धर्म सभी दिशाओं में अत्याधिक विकास हुआ। उनके शासन के दौरान ही अजंता की गुफाओं में उच्च कोटि के भित्ति चित्र बनाए गए। वाकाटकों के बाद कुछ समय के लिए कलचुरी वंश ने शासन किया और फिर चालुक्य सत्ता आई। इसके बाद तटवर्ती इलाकों में शिलाहारों के अलावा महाराष्ट्र पर राष्ट्रकूट तथा यादव शासकों का भी नियंत्रण रहा। यादवों ने मराठी को शासन की भाषा बनाया और दक्षिण के एक बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद याद करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, जो कि पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपना राज्य दक्षिण में मदुराई तक फैला दिया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर ली। वह जो स्थान था वो पहले देवगिरी नाम से प्रसिद्ध था और अहमदनगर के पास था। बहमनी शासकों ने महाराष्ट्र तथा इसकी संस्कृति को समन्वित किया और शिवाजी के कुशल नेतृत्व में महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास हुआ है और ये एक अलग पहचान के साथ उभर कर सामने आया। शिवाजी ने स्वराज तथा राष्ट्रीयता की एक नई भावना पैदा की। उनकी प्रचंड शक्ति ने मुगलों को भारत के इस भाग में आगे नहीं बढ़ने दिया।

Vamos para el agua de ser, vamos para el agua de ser.

पेशवाओं ने दक्षिण के पठार से लेकर पंजाब पर हमला बोलकर मराठाओं का आधिपत्य स्थापित किया, परंतु 1820 तक आते आते अंग्रेजों ने पेशवाओं को हरा दिया था और ये प्रदेश भी अंग्रेजी साम्राज्य का एक अंग बन गया था। फिर शुरू हुए स्वतंत्रता संग्राम। इसमें भी महाराष्ट्र सबसे आगे था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भी यही हुआ है। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों के अनगिनत नेताओं ने पहले तिलक और बाद में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस के आंदोलन को आगे बढ़ाया। गांधी जी ने भी अपने आंदोलन का केंद्र महाराष्ट्र को बनाया था और गांधी युग में राष्ट्रवादी देश की राजधानी सेवाग्राम। स्वतंत्रता के संग्राम की बात आ गई तो सुन लेते हैं।

0: ऐसी धरनी, ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता है। पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: और आप हो हमारे साथ महाराष्ट्र के सफर में। अब जानते हैं महाराष्ट्र की पहचान एक प्रदेश के रूप में कैसे हुई। शायद आप सभी जानते होंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अब ये दोनों राज्य मुंबई का हिस्सा थे। जब मुंबई राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात के गठन का प्रस्ताव आया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वकालत की। उनका तर्क था कि अगर मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बने रहना है तो ये करना आवश्यक है। किंतु देश के पहले वित्त मंत्री और वित्त विशेषज्ञ चिंतामणि देशमुख ने इसका प्रखर विरोध किया और इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा भी दे दिया। देश की आजादी के बाद मध्य भारत के सभी मराठी भाषा के स्थानों का समीकरण करके एक राज्य बनाने को लेकर बड़ा आंदोलन चला और 1 मई 1960 को कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र जो खानदेशी नाम से जाना जाता है तथा विदर्भ सभी संभागों को जोड़कर महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई। महाराष्ट्र आपस के मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया जो पहले 4 अलग-अलग प्रशासनों के नियंत्रण में था। इनमें मूल ब्रिटिश मुंबई प्रांत में शामिल दमन तथा गोवा के बीच का जिला, हैदराबाद के निजाम की रियासत के 5 जिले, मध्य प्रदेश के दक्षिण के 8 जिले तथा आसपास के ऐसी अनेक छोटी छोटी रियासतें शामिल थी जो समीपवर्ती जिलों में मिल गई। महाराष्ट्र भारत के स्तर में बसा हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये राज्य मुख्यतः पठारी है। महाराष्ट्र पठारों का पठार है। इसके उठे हुए पश्चिमी किनारे सह्याद्री पहाड़ियों का निर्माण करते हैं और समुद्र तट के समानांतर तथा इसके ढलान पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर धीरे धीरे बढ़ती है और राज्य के उत्तरी भाग में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं जबकि अजंता और सतमाला पहाड़ियां राज्य के मध्य भाग से होकर जाती है। अरब सागर महाराष्ट्र की पश्चिमी सीमा का पहरी है जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश इसके उत्तर में। राज्य की पूर्वी सीमा पर छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश इसके दक्षिण में। महाराष्ट्र में कई प्रकार की आकर्षक भूआकृतियां हैं। नर्मदा नदी जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती हुई अरब सागर में गिरती है राज्य की उत्तरी सीमा के एक हिस्से का निर्माण करती है और अरब सागर में ही मिलने वाली ताप्ती नदी की विभ्रंश घाटी इसकी उत्तरी सीमा के दूसरे हिस्से को चिन्हित करती है। ये दो नदी घाटियां सतपुड़ा श्रृंखला नामक उत्खंड से विभक्त होती है। ताप्ती घाटी के दक्षिण में अरब सागर के किनारे कोंकण का तटीय क्षेत्र है और जिसके पूर्व में पश्चिमी घाट या सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से विख्यात गगार स्थित है। सह्याद्री पहाड़ियों की तराई कोंकण में अरब सागर से 6.4 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचती है। कोंकण का जो तटीय किनारा है संकरा है, इसके बीच बीच में सह्याद्री पहाड़ियों के पर्वतीय स्कंद है और क्षेत्र को कई पश्चिमवर्तीय द्रुतगामी नदियां प्रवाहित करती है। उत्तर में स्थित उल्लास इनमें सबसे बड़ी है। सह्याद्री पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में दीवार की तरह लगभग 640 किलोमीटर तक लगातार स्थित है लेकिन इसमें गुजरने वाली कई दर्रे तटीय भूमि और भीतरी क्षेत्र के बीच महत्वपूर्ण सड़क और रेल संपर्क उपलब्ध कराते

सह्याद्री की पूर्वी ढलान का उतार दक्कन के पठार की ओर क्रमिक है, जो पूर्व की ओर ढलान वाली गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदी की घाटियों द्वारा निर्मित है और इन नदियों के अंत प्रवाह से महादेव, जनता, बालाघाट और अन्य पर्वत श्रृंखलाओं को आकार मिलता है। महाराष्ट्र में स्थित ये पर्वत श्रृंखलाएं और घाटियां रुके हुए लावा से निर्मित है, जिनकी मोटाई कई स्थानों पर 3050 मीटर है। कई पहाड़ियों में लावे के विभिन्न प्रकार के अपरदन के कारण पठारी समतल जैसे ऊपरी हिस्से से युक्त सीढ़ीनुमा कगार की विशेष संरचनाएं बन गई है। अगर बात करें कृषि की, तो महाराष्ट्र के लगभग 65% श्रमिक कृषि तथा संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, तूर, उड़द, चना और दलहन। ये राज्य तिलौना का प्रमुख उत्पादक है। महाराष्ट्र को पूरे देश का औद्योगिक क्षमता का केंद्र माना जाता है और राज्य की राजधानी मुंबई देश की वित्तीय तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र है। राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये बात हुई राज्य की आर्थिक विकास की, पर शिक्षा की बात करें तो ये शिक्षा एक ऐसा स्तंभ है जो किसी भी देश या प्रदेश को विकास की ओर ले जाता है। तो आइए थोड़ा जानते हैं महाराष्ट्र के शिक्षा के बारे में। यहाँ के शिक्षण संस्थान में मुंबई विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, कोल्हापुर में जो है शिवाजी विश्वविद्यालय, मुंबई में सेंटिटी महिला विश्वविद्यालय, फिर मुंबई की है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, कवि गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय जो रामटेक में है, और इसके अलावा भी कई विश्वविद्यालय शामिल है। यहाँ शिक्षा और प्रशिक्षण की निगरानी और प्रायोजन के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा निदेशालय बने हुए हैं। महाराष्ट्र में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ अग्रणी अनुसंधान संस्थान भी है। ये संस्थान जल तथा विद्युत, उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी, परमाणु अनुसंधान आदि से संबंध रखते हैं। महाराष्ट्र में शिक्षा के और भी अवसर कई अलग अलग क्षेत्र में प्राप्त किए जा सकते हैं और वंडरफुल है यहाँ की संस्कृति, बहुत ही निराली। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक जीवन तो प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता और ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभावों का मिश्रण है। ये मराठी भाषा और मराठी साहित्य विकास महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति है। स्थानीय क्षेत्रीय देवताओं के प्रति भक्ति, ज्ञानेश्वर और तुकाराम जैसे संत कवियों की शिक्षाएं, छत्रपति शिवाजी और अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक नेताओं के प्रति आदर भाव महाराष्ट्र की संस्कृति की विशेष पहचान है। कोल्हापुर, तुलजापुर, पंढरपुर, नासिक और अन्य धार्मिक स्थलों पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मेलों और त्योहारों का भी महत्व कम नहीं है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में गणेश चतुर्थी, रामनवमी और अन्य स्थानीय व क्षेत्रीय मेले और त्योहार महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके द्वारा लोगों का स्थानीय तथा क्षेत्रीय मेल मिलाप होता है और ये सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। अभी जो गणेश जी की यादें ताजा हो गई है, तो क्यों नहीं हम सुने उनकी महिमा का ये गीत।

0: आप हो हमारे साथ।
1: ऐसी धरनी पुनमन करता है पुणे की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
0: महाराष्ट्र के शहर पर मेरे भाई और बहनों, महाराष्ट्र के नाम से अभिनय करना तो बहुत पुराना है। वैसे पूरे भारत के फिल्म उद्योग की जो शुरुआत है, इसका श्रेय दादा साहेब फाल्के और बाबूराव पेंटर इनके जैसे अग्रणियों को जाता है। पुणे की जो प्रभात फिल्म कंपनी, उन्होंने संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। हिंदी सिनेमा में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित जैसे मराठी कलाकार विशेष रूप से सफल रहे। मराठी साहित्य की ही तरफ महाराष्ट्र में संगीत की भी प्राचीन परंपरा रही है। लगभग 14वीं शताब्दी में इसका मेल भारतीय संगीत से हुआ और आधुनिक काल में पंडित पलुस्कर और पंडित भातखंडे ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई दिशा दी। विलायत में हुसैन अल्लाह रखा इन जैसे अन्य वादकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज हम पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर जैसे गायक इनको याद करते हैं। वे महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। महाराष्ट्र में कला की भी प्राचीन परंपरा रही है। जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण, लकड़ी के खिलौनों, चमड़े के सामान और मिट्टी के बर्तन, इनकी डिजाइनों की तरफ आप देखेंगे तो पता चलेगा महाराष्ट्र की कला भी बहुत ही वंडरफुल रही है। 1833 में स्थापित सर जेजी स्कूल ऑफ आर्ट कला शिक्षा के क्षेत्र में पहला आधुनिक संस्थान था और अब महाराष्ट्र के अधिकांश नगरों और बड़े शहरों में कला संस्थान स्थापित है। शास्त्रीय नृत्य शैलियों ने प्रतिभाओं को आकर्षित किया और पुणे जैसे बड़े नगरों में इनके प्रशिक्षण विद्यालय फल फूल रहे हैं। लावणी, ओवाड़ा माना रोमानी गीत और ओजस्वी नृत्य और तमाशा जैसी संगीत, नाटक व नृत्य से युक्त लोक कथाएं पुनर्जीवित हुई है। कला और फिल्म निदेशालय, साहित्य और संस्कृति बोर्ड राज्य सरकार की गहरी रुचि के परिचायक है। महाराष्ट्र की जो संस्कृति का प्रभाव महाराष्ट्र से बाहर भी फैल रहा है। भूतपूर्व मराठा साम्राज्य की राजधानियां जैसे बड़ौदा, अभी वो वडोदरा के नाम से जानी जाती है, ग्वालियर और अन्य नगरों में महाराष्ट्र मंडल इसमें खास सक्रिय भूमिका निभा रहा है। महाराष्ट्र की और विशेषता सुनने से पहले हम लता जी के इस मनभावन कंठ को भी सुन लेते हैं।

0: आपको हमारे साथ महाराष्ट्र की सैर पर।
1: ऐसी धरनी ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता है पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
0: दोस्तों, आप हमारे साथ है महाराष्ट्र के प्रवास पर, महाराष्ट्र के सैर पर। महाराष्ट्र में देखने और घूमने के लिए कैसे स्थान है ये भी हम देखते हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हैं खास अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, केनेरी गुफाएं, पितलखोरा, कारला गुफाएं, इनके बाद महाबलेश्वर, माथेरान और पंचगंग, जवाहर, मालशीज घाट, अम्बोली, चिकलधारा और पन्नाना पर्वतीय स्थल। इसके अलावा यहाँ के धार्मिक स्थान भी है, जैसे पंडरपुर है, नासिक है, शिरडी, नांदेड़, वैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, तुलजापुर, गणपति पुले, भीमा शंकर, हरिहरेश्वर, शेगांव आदि। ऐसे सुंदर स्थल और प्रकृति दोनों ही साथ महाराष्ट्र है। ये था हमारा और आपका महाराष्ट्र का सफर। अब आगे बढ़ते हैं एक मंजिल की ओर, 29 राज्य एक राष्ट्र एक आने।
1: ऐसी धरनी ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता है पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
0: फिर मिलकर रहेंगे, लेकिन अंत में ऐसे महान राष्ट्र को दिल से सलाम करते हुए आपकी खिदमत में

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पूरे रिवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: हमारा भोजन हमारा व्यक्तित्व। लेखिका सुधापुरी। पात्र परिचय: उन्नति, दृष्टि, यश, वेदांत, आदित्य प्रकाश, आदित्य, सैंडी, आकाश।
2: मजा आ गया, ये तरबूज तो बहुत ही मीठा है।
3: मेरे खरबूजे का तो कोई मुकाबला ही नहीं।
1: मैं क्या बात करते हो, फलों के राजा के सामने किसी और फल की तारीफ। लाहौल बिलाकवत।
4: वो क्या होता है?
1: मुझे भी पता नहीं, पर ऐसा ही कहते हैं ना जब कोई कुछ गलत करता है।
4: ये फलाहारी पिकनिक मुझे बहुत अच्छी लगती है।
2: हाँ, ये मेरी ही दादाजी का आइडिया था।
3: हाँ, मैं तो उन्हें बाबूजी कहकर पुकारता हूँ।
4: और मैं बाबा।
2: वो मेरे सब दोस्तों को बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं बचपन में बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए, बचपन के दोस्त ही हमेशा प्यारे लगती है।
5: मेरे पापा भी यही कहते हैं।
3: मैं भी इस बात में विश्वास रखता हूँ कि हर एक दोस्त जरूरी होता है।
1: जैसे किसी के साथ हम कोई खास खेल खेल सकते हैं।
4: कोई पढ़ाई में मदद करता है चाहे वो खेलने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेता हो।
2: और कोई हमारा मजेदार चटपटा खाना खाने में हमारे साथ होता हो।
5: जैसे इस समय हम सभी मिलकर गर्मियों के मजेदार फल खा रहे हैं।
2: ये ठीक है।
6: ये फलों का आइडिया अच्छा है, कितने ही पेड़ भर क्यों न खा लो, कभी सुस्ती ही नहीं आती।
5: बल्कि इन्हें खाकर हम ताज़ा ही महसूस करते हैं।
7: तुम्हें पता भी है फल हमारे शरीर की किस प्रकार मदद करते हैं?
2: मजे करने में।
7: वो तो है ही, पर सबसे जरूरी बात ये है कि ये हमारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं।
5: तो रोटी, पूरी, आलू दाल, ये सब?
3: हाँ, और दूध।
7: वो सब भी जरूरी है, पर अलग अलग भोजन हमारे शरीर को अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं।
8: अभी हम पर पहुँचे ही हैं विज्ञान में।
7: हाँ, तुम सब इन अलग अलग फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे कुछ बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं, कुछ एनर्जी देने के लिए, तो कुछ बीमारियों से रक्षा के लिए।
1: सब भोजनों में अलग अलग पौष्टिक तत्व होते हैं ना?
7: जैसे दालों में प्रोटीन जो बढ़ने में और शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करता है, अनाज में कार्बोहाइड्रेट जो काम करने की शक्ति देता है, मक्खन और घी में वसा ये भी हमें शक्ति देता है, और कई विटामिनों को शरीर में ग्रहण करने की भी क्षमता है। फल और सब्जियों में विटामिन और मिनरल होते हैं।
4: और दीदी, संपूर्ण आहार पता है किसे कहते हैं?
2: मुझे पता है, दूध को।
7: और संतुलित आहार?
6: ऐसा भोजन जिसमें सब पौष्टिक तत्व सही मात्रा में हो।
5: पर ऐसा तो किसी व्यक्ति की उम्र, अवस्था, लिंग, वो क्या कार्य करता है, इस सब पर भी तो निर्भर होगा ना कि उसके लिए हम किसे संतुलित आहार कहेंगे।
7: हाँ, जैसे बढ़ते बच्चों के लिए खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए।
3: और किसी मजदूर को शक्ति देने वाले भोजन की जरूरत होगी।
7: बिल्कुल ठीक,
1: पर मुख्य बात तो यह है ना कि हमें जीने और बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत है।
4: क्यों, बीमारियों से रक्षा भी तो।
2: और ताकतवर बनने की भी।
5: कहते हैं सबसे पौष्टिक भोजन वह होता है जो सबसे कम पका हो।
7: हाँ, उसके पौष्टिक तत्व आग से और पकने से नष्ट नहीं होते।
6: पर कच्चा भोजन तो बस फली हुए ना, जैसे अमरूद, केला, खरबूजा,
5: अनार।

0: सीताफल, खुरमानी, आलू बुखारा, नाशपाती।
1: केला भूल गए? छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी।
2: मुझे तो जामुन बहुत अच्छा लगता है।
3: मेरे दादाजी इन्हें बहुत खुश होकर खाते हैं।
1: ये मधुमेह की बीमारी वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है।
3: उन्हें तो पपीता भी बहुत पसंद है।
4: मुझे तो बेर बहुत पसंद है।
5: मुझे शहतूत।
6: मुझे फालसे।
7: क्यों, कुछ सब्जियाँ भी तो है जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर
1: और ककड़ी, खीरा। टमाटर को हम सब्जी कहते हैं पर असल में ये एक फल होता है।
3: अच्छा,
2: फिर नट्स भी तो, जैसे मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट,
3: किशमिश और चिलगोजे भी।
4: पता है अब चिलगोजे बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
5: कहीं मौसम में बदलाव तो इनके कम उगने का कारण तो नहीं?
1: तुम भी ना हर बात को प्रदूषण तक ले जाते हो। तो गलत क्या है जब पशुओं की इतनी प्रजातियां विलुप्त हो रही है मानव के प्रदूषण फैलाने से, तो पेड़ भी तो हो रहे हैं।
7: जरा सोचो, ऐसा हो कहीं एक दिन हमें भोजन देने वाले पेड़ पौधे कहीं विलुप्त ना हो जाए, जैसे मक्का, बाजरा।
1: क्यों, गेहूं भी तो है
2: और दालें, फल, मटर, राजमा, चना,
3: सब्जियां जैसे पालक, गोभी।
4: पर अगर पौधे प्रदूषण से प्रभावित हुए तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि तेल और घी भी तो इन्हीं से आता है, कुछ सीधे सीधे और कुछ
5: पता है इनडायरेक्ट तरीके से।
1: गाय घास या पौधा खाती है, दूध देती है, मक्खन निकलता है और घी।
7: पर बात सुनो, अगर पौधों पर प्रदूषण का बुरा असर पड़ेगा तो पशुओं पर भी पड़ेगा, तो दूध पर भी, दही, शहद, पनीर, अंडे या मांस।
1: मैं तो शाकाहारी हूँ।
3: मैं भी मांसाहारी नहीं हूँ, शाकाहारी हूँ।
1: चलो कुछ सकारात्मक सोचते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम सब हो ना। जब जानते हो क्या समस्या है तो समाधान भी तुम ही निकालोगे। अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम सब खाने से पहले हाथ धोते हो?
5: मैं तो धोती हूँ।
2: मैं भी, अच्छी तरह साबुन से।
3: मैं भी।
4: सबको हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए और खाने को खूब अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए।
5: दादाजी कहते थे हमारे 32 दांत होते हैं, तो हर एक दांत को एक एक बार तो भोजन चबाने का मौका मिलना ही चाहिए।
1: ये बात ठीक है, ऐसा हम हर कौर को कम से कम 32 बार चबा कर ही लेंगे।
5: हाँ, पर खाते खाते बातें नहीं करनी चाहिए।
7: मेरी मम्मी कहती है कि सही समय पर भोजन करना चाहिए।
1: पा कहते हैं कि जो बच्चे नाश्ता करके स्कूल जाते हैं उनका दिमाग बहुत तेज चलता है।
2: तो हमें नाश्ता जरूर करना चाहिए।
3: हमारी टीचर उस दिन कह रही थी कि दिन में नाश्ता, दोपहर को लंच और रात का खाना तो जरूर ही खाना चाहिए।
4: और दीदी सबसे जरूरी बात जो सब भूल ही रहे हैं वो है साफ खाना खाना, ढका हुआ और ताज़ा खाना।
5: बासी खाना या सड़ा गला भोजन करने से बीमारी हो सकती है।
1: हाँ, और उन पर मक्खियाँ बिल्कुल न बैठी हों, ये ध्यान रखना चाहिए।
7: और साफ बर्तनों में खाएं, इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए।
1: पर सबसे जरूरी बात तो ये है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए।
5: हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें इतना अच्छा भोजन मिल रहा है, उतना ही लेना चाहिए जितना कि हम खा सके।
2: दीदी शादियों में देखा है लोग अपनी प्लेटों में कितना खाना भर लेते हैं और
3: फिर खाया नहीं जाता तो फेंक देते हैं।
4: चलो आज मिलके कसम खाते हैं, न खाना वेस्ट करेंगे न किसी को करने देंगे।
5: हाँ उतना ही प्लेट में डालेंगे जितना खा सके।
1: इन सब बातों से ही तो एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होगा।
8: अच्छा भोजन अच्छा व्यक्तित्व,
1: ताज़ा, लाभदायक, रुचिकर, सबको पसंद आने वाला, सही मात्रा में सब गुणों वाला, साफ, सशक्त, समस्याओं से लड़ने में सहायक।
5: ये भोजन की बात कर रहे हो कि व्यक्तित्व की?
8: दोनों की।

दूंगा, मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोला, मुझको खा लो, मैं तुम

गोभी मटर टमाटर बोले, गाजर भिंडी बैंगन बोले। अगर हमें भी तुम खाओगे रोज रोज बढ़ते जाओ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम।

0: बच्चों कैसे हो तुम लोग?
1: बहुत अच्छे
2: दीदी।
0: लग रहा है सैंडी की थोड़ी सी तबीयत खराब है आज।
2: हाँ
1: मुझे भी लग रहा है।
0: क्या हुआ सैंडी?
2: कुछ नहीं, थोड़ी वीकनेस हो रही है।
0: कभी कभी गर्मियों के दिन में तबीयत खराब हो जाती है।
2: हाँ ये बात तो है।
0: तो रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाओ।
1: ज्यादातर ट्रैवल करने से तबीयत खराब होती है।
0: ट्रैवल करने से तबीयत खराब होती है। ये तो है।
2: और आज मैं ट्रैवल करके आया हूँ इसीलिए।
0: ट्रैवल अगर गर्मियों में किया जाए तो फिर तो बॉडी का सारा पानी सूख जाता है। बहुत सारे पानी की जरूरत होती है और आराम की।
2: हाँ दीदी
0: है ना। अच्छा चलो आज तुम ट्रैवल करके आए हो तो चलो हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं।
1: ओके
2: ओके।
0: तो तुम लोग की फेवरेट जगह, घूमने की फेवरेट जगह कौन सी है?
1: दिल्ली, मेरी माउंट आबू।
0: माउंट आबू?
1: हाँ।
0: और भुवना?
3: मेरी तो कूर्ग।
0: कूर्ग ये कहाँ पे है?
3: कर्नाटका।
0: कर्नाटका में? क्या वो आपके घर के पास है?
3: नहीं।
0: आप कूर्ग घूमने कब गए थे?
3: लास्ट समर हॉलीडेज गई 2015।
0: 2015 में? अच्छा कितने टाइम के लिए और किसके साथ गए थे?
3: मैंने मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया और अंकल के साथ गई।
0: अरे वाह। और वहाँ पे सबसे अच्छा आपको क्या लगा?
3: मुझे वहाँ सबसे अच्छा वो क्लब लगा जहाँ हम रुके थे, क्योंकि वो स्विमिंग पूल इतना अच्छा था कि हम दिन भर वही थे। और नेक्स्ट डे हमने एक तलकावेरी एक प्लेस है जहाँ कावेरी रिवर स्टार्ट होती है, वहाँ गई। वहाँ का फॉग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी मोमेंट थी वो जब हम महसूस करते हैं। वो बहुत कूल था वो जगह, हिल स्टेशन है ना इसलिए।
0: अच्छा वो एक हिल स्टेशन है।
3: हाँ
0: इसीलिए वहाँ पे ठंडी होगी।
3: और
0: आपने इतने सारे दिनों में वहाँ पे क्या क्या देखा?
3: कॉफी एस्टेट, फिर बहुत सारे टेम्पल्स देखा मैंने, और एक रिवर के पास गई जहाँ हम खेल रहे थे पानी के साथ में और मेरे भैया।
0: अच्छा तो सबसे पहले आपने क्या बोला?
3: कॉफी एस्टेट।
0: कॉफी स्टेट्स, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा?
3: मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रीज और कॉफी प्लांट्स देखी मैंने। कॉफी के पत्ते जैसे निकालते वो स्मेल बहुत अच्छी।
0: क्या आपने वहाँ कॉफी पी?
3: नहीं वो सीजन नहीं था ना।
0: अच्छा मतलब सिर्फ कॉफी को बनते हुए देखा और बहुत सारे टेम्पल्स देखे।
3: हाँ।
0: अरे वाह जगह तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, घूमने का मन कर रहा है ना सैंडी?
2: हाँ दीदी
1: सुन के तो ऐसा लग रहा है हम भी वहाँ घूमा है।
2: चले।
0: हाँ यहाँ तो थोड़ी गर्मी हो रही है, ठंडी जगह जाने में तो मजा आता है। और सैंडी तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है?
2: दिल्ली।
0: दिल्ली? दिल्ली तुम कब गए थे?
2: इसी वेकेशन में।
0: इसी वेकेशन में गए थे। दिल्ली में सबसे अच्छा क्या लगा?
2: लोटस टेम्पल।
0: लोटस टेम्पल? हाँ लोटस टेम्पल तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लोटस की शेप का नजर आता है दूर से देख के।
2: हाँ।
0: और बताओ दिल्ली में कौन कौन सी जगह तुमने देखी?
2: मीनार, फिर इंडिया गेट और अक्षरधाम, कालका मंदिर, बहुत सारी जगह घूम लूंगा हमने।
0: मतलब बहुत सारे मंदिर तुमने घूमे। और उसमें से सबसे फेवरेट जगह
2: लोटस टेम्पल।
0: लोटस टेम्पल लगी।
2: और कुतुब मीनार।
0: और कुतुब मीनार लगी।
1: हाँ। कुतुब मीनार तो कभी बोल ही नहीं सकता।
2: नहीं
0: अच्छा कुछ स्पेशल लग रहा है कुतुब मीनार के साथ।
2: हाँ।
0: क्या
2: वहाँ पे काफी एंजॉय किया मैंने और पंकज ने।
1: वहाँ हमें एक नए फ्रेंड भी मिले जो फॉरेन के थे।
0: अच्छा वहाँ आप लोग नए फ्रेंड्स मिले इसीलिए वो जगह स्पेशल। हाँ। हो गए। और दिल्ली में बस इतनी जगह गए? रेड फोर्ट नहीं गए?
1: रेड फोर्ट
2: गए थे ना, फिर क्लब भी गए, फिर मॉल भी गए, बहुत सारे
0: मॉल गए।
2: हाँ वर्ल्ड स्क्वायर, एमएक्स मॉल, बहुत सारे मॉल घूमे।
0: हाँ, दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े मॉल है।
2: हाँ।
0: और मेट्रो में ट्रैवल किया कि नहीं?
2: खूब
1: मेट्रो में तो पूरे
2: पूरे दिन मेट्रो में, मेट्रो कार्ड बनवाया, पूरे दिन मेट्रो में घूमे।

0: घूमने में मजा आता था।
1: बहुत पंकज तो बोले यही रुक जाते हैं।
2: हमें तो ऐसा लगता था कि मेट्रो में ही अपना घर बना ले।
0: इतना अच्छा लगता था मेट्रो में। और इंडिया गेट कैसा लगा?
1: इंडिया गेट तो अच्छा ही था, वहाँ से तो अपन थोड़ा घूम भी गए थे ना।
2: वहाँ खो गए थे।
0: खो गए थे
1: हाँ।
0: अलग खो गए थे दोनों?
1: नहीं साथ में थे।
2: रास्ता खो गए थे।
0: अच्छा वहाँ से मेट्रो स्टेशन का रास्ता खो गए थे?
2: नहीं टैक्सी स्टैंड का।
0: और अमर जवान ज्योति देखी कि नहीं?
2: देखी, बहुत अच्छी थी।
0: अच्छा लगा?
2: वो ज्योति हमेशा जलती रहती नहीं।
1: और वहाँ पे इंडिया गेट में खास बात और देखी, उस पे जो जो लोग शहीद हुए हैं सबका नाम लिखा हुआ उसके ऊपर।
0: और वो ज्योति हमेशा जलती रहती है।
2: यदि वो ज्योति क्यों जलती है?
0: क्योंकि वो उन शहीदों की याद में जलाई जाती है और उनको हम हमेशा सल्यूट करते हैं। हमेशा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो जवानों के जो शहीद हुए उनके लिए वो ज्योति हम हमेशा जलाए रखते हैं। उसको कंटिन्यू जलाया जाता है, कभी बुझने नहीं दिया जाता। और जब स्पेशल ओकेशंस होते हैं तो वहाँ परेड होती है और खूब सारी भीड़ होती है उन्हें देखने के लिए।
1: हाँ, टीवी में देखा।
0: टीवी में देखा है?
1: हाँ।
0: और दिल्ली कितने दिनों के लिए गए थे आप लोग?
2: 10 दिन।
0: आप लोग अकेले गए कि मम्मी पापा के साथ?
2: हम दोनों फ्रेंड्स गए थे, दीदी के साथ।
0: दीदी के साथ गए थे। अच्छा, अरे वाह, चलो आप लोग देश की राजधानी को देख के आए। बहुत अच्छी बात।
2: हमने राजस्थान की राजधानी भी देखी,
1: जयपुर।
0: अच्छा, मतलब दिल्ली के बाद जयपुर का टर्न था।
1: हाँ।
0: तो पंकज तुम बताओ, जयपुर में तुम्हारा फेवरेट क्या था?
2: जयपुर में मेरा फेवरेट था WTP मॉल।
0: WTP मॉल? मॉल अच्छा क्यों लगा सबसे ज्यादा?
2: वहाँ बहुत अच्छा था, बहुत शांति थी और उसके बाहर जो लाइट्स लगी हुई है वो बहुत स्पेशल लाइट्स है, वो बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को।
0: मतलब कुछ कलरफुल लाइट्स?
2: कलरफुल लाइट्स है, बहुत अच्छी।
0: अच्छा, तब तो देखना पड़ेगा। और जयपुर में क्या क्या देखा?
2: और जयपुर में तो कुछ खास नहीं, बस अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया।
0: हवा महल नहीं देखा?
2: नहीं।
0: अच्छा, जयपुर में हवा महल है। और जयपुर को पता क्या कहते हैं?
1: पिंक सिटी।
0: और पिंक सिटी क्यों कहते हैं जयपुर को?
1: वहाँ की सारी दीवारें गुलाबी गुलाबी नजर आती।
0: हाँ, और पुराना जयपुर देखा आप लोगों ने?
2: नहीं मैंने नहीं देखा।
0: मतलब दोस्तों के साथ एंजॉय किया।
1: हाँ।

0: और भुवना, मैंने सुना है आपने बहुत सारी जगह घूमी है।
1: हाँ,
0: क्या आप कभी कंट्री के बाहर भी गए हो?
1: हाँ, मैंने यूकेजी में मस्कट गई।
0: मस्कट गए हो, तो आपको कुछ याद है मस्कट का?
1: मुझे लूलू मॉल याद है।
0: मॉल याद है, और वहाँ पे तो आप बच्चे होगे तो आपने खूब इंजॉय किया होगा।
1: हाँ,
0: है ना? और इंडिया में आप कहाँ कहाँ गए हो?
1: मैं भी राजस्थान गई, मेहरानगढ़ जोधपुर में, हवा महल, कुंभलगढ़, गुरु शिखर।
0: इतनी सारी जगह?
1: मैंने वो अरावली माउंटेन्स गई वहाँ, और मैंने जब ऊपर की इतना हवा रही थी, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे, बहुत प्लेजेंट था। और मैंने एक राजस्थानी ड्रेस भी खरीदी।
0: अरे वाह, राजस्थानी ड्रेस भी खरीदी, कलरफुल कलरफुल।
1: हाँ,
0: वहाँ पे आप शाम को गए होगे, सनसेट देखा कि सनराइज देखा?
1: सनसेट।
0: सनसेट देखा, कैसा लगा सनसेट देखने में?
1: बहुत अच्छा।
0: और कौन सी जगह? जोधपुर गए आप? जोधपुर कैसा लगा?
1: वो तो बहुत ब्लू सिटी है, तो इसलिए बहुत कूल रहा।
0: कूल रहा। वहाँ पे क्या क्या देखा?
1: मेहरानगढ़।
0: मेहरानगढ़, और वो क्या है?
1: वो एक महल है।
0: अच्छा, महल में आपको सबसे अच्छा क्या लगा?
1: जब हम छत में गए, वहाँ सब ब्लू सिटी दिख रहा था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: मतलब महल की छत से पूरी सिटी ब्लू नजर आ रही थी?
1: हाँ।
0: अरे वाह, फिर तो व्यू बहुत ही अच्छा होगा। और राजस्थान में आप कहाँ गए?
1: मैंने
0: कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
1: हाँ,
0: है ना? उनका जन्म स्थान आप देख के आए?
1: हाँ।
0: और वहाँ तो बहुत ऊपर

0: के जाना पड़ता है ना।
1: हाँ।
0: तो थके नहीं?
1: नहीं, मैंने एक वंडर भी देखा, राजस्थान का बादल महल।
0: अच्छा, और वो वंडर क्या है?
1: जहाँ हम, वो बहुत ऊपर है, हमें बहुत तेज चढ़ना पड़ेगा, और जब हम ऊपर चलेंगे तो वहाँ हम बादल को छू सकते हैं।
0: वहाँ से सिर्फ बादल नजर आते हैं।
1: हाँ, बहुत अच्छा।
0: बहुत अच्छा था ना बादल महल, तो मैंने भी देखा। और बताओ कहाँ कहाँ घूमे हो पंकज?
2: और हम दिल्ली में अक्षरधाम घूमे।
0: अच्छा, हाँ, अक्षरधाम को हम कैसे मिस कर सकते हैं?
2: बहुत स्पेशल जगह है वो भी।
0: स्पेशल जगह है,
3: खास करके वाटर शो नाइट का।
0: आप लोगों ने वो देखा?
2: हाँ, हाँ। बहुत अच्छा।
0: क्या क्या देखा उसमें हमें बताओ तो।
2: वाटर शो ऐसा है कि जब वहाँ फवारे से वाटर निकलता है और ऐसा लगता है कि एक म्यूजिक चल रही है और उस पे वो वाटर डांस कर रहे हैं।
0: अच्छा।
3: हाँ जी।
0: और क्या उसके पहले उसमें कोई थीम भी होती है? लाइट एंड साउंड शो देखा आप लोगों ने?
2: हाँ, हाँ। वही लाइट एंड साउंड शो कहते हैं उसको।
0: उसमें एक बार तो दुनिया की स्थापना, पालना और विनाश का पूरा शो भी दिखाया गया था। मेरे ख्याल से अलग अलग थीम पे वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है।
2: हो सकता है, क्योंकि हमने कुछ और देखा था।
0: हाँ, और वाटर और म्यूजिक के थ्रू वो थीम को रिप्रेजेंट किया जाता है।
3: काफी इंटरेस्टिंग था।
0: काफी इंटरेस्टिंग था ना, मजा आया।
3: बहुत।
0: और वहाँ पे वो जो बड़ी सी जगह है जहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है, खुला खुला आसमान के नीचे इतने सारे लोगों के साथ भी कितना मजा आता है ना।
2: हाँ। बहुत अच्छा था। और वो खास करके टेम्पल जिसमें ऐसा लगता है कि पूरा गोल्ड का बना हुआ है।
3: वहाँ की कैंटीन भी अच्छी।
2: इसे तो हमें खाने का ही।
0: नहीं, अच्छी बात है, अगर जगह अच्छी और खाना भी अच्छा हो तो डबल डबल अच्छा हो गया ना।
3: मैं पहले कैंटीन नहीं था कहीं भी।
0: और कहाँ घूमे हो? दिल्ली के अलावा कहीं घूमने गए हो?
3: कोटा।
0: कोटा, कोटा में क्या देखा?
3: मैंने कोटा में वहाँ पे एक परमाणु ऊर्जा बनाते हैं ना, जो लाइटें आती पूरे राजस्थान में, वो देखा है।
0: अच्छा, उसको कैसे बनाते हैं आपने? हाँ, देखा?
3: हाँ, वहाँ पे अंदर गए थे हम, स्कूल से गए थे जब घूमने गए थे, तब स्कूल से कुछ प्रोग्राम था हमारे, जिम्नास्टिक होता है, तो उसमें हमारी टीम गई थी। तब सर में 6 लोग थे, तब सर हमको घुमाने लगे, तो वहाँ पे काफी अच्छा है, कुछ चंबल करके कोटा में है, उस पानी से लाइट बनता है वहाँ पे, काफी इंटरेस्टिंग है।
0: पानी से लाइट बनती है? अरे वाह।
3: अपनी ज्यादातर राजस्थान में सब जगह लाइट वहीं से आता, परमाणु ऊर्जा।
0: अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज देख के आएगा। और कोटा में तो कोचिंग सेंटर बोलते हैं ना?
3: हाँ, बहुत,
0: मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स होते हैं।
3: स्टूडेंट्स। और कोटा में खास बात ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये लागू कर रखा है कि घर को भी स्कूल बना सकते हैं।
0: घर को भी स्कूल बना सकते हैं?
3: हाँ।
0: वो कैसे?
3: क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन अच्छी, बहुत पढ़ाई काफी अच्छी है कोटा की।
0: पढ़ाई अच्छी है,
3: नॉलेज बहुत काफी कोटा में।
0: लेकिन घर को स्कूल कैसे बना सकते हैं?
3: जैसे ना कि मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव दे रखा है कि
2: मतलब अगर किसी घर में कोई एजुकेटेड व्यक्ति है तो खुद का क्लास खोल सकता है।
3: हाँ।
0: उसे अलग से परमिशन की जरूरत नहीं है?
3: नहीं, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा वहाँ पे। ये हमने बहुत, जब जहाँ रुके थे पास में कोचिंग सेंटर था, इतनी भीड़ हम तो सीधे समझ वही देखते रहे।
0: वहाँ पे तो देश भर से स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आते हैं ना।
3: हाँ।
0: दूर दूर से आते हैं। तो आप लोग भी थोड़ी पढ़ाई करके नहीं है?
3: नहीं,
2: हम तो बस देखने गए थे।
3: हम तो बस खेलने के लिए गए थे, हमारा वहाँ पे उमेर सिंह स्टेडियम था, तो हमारे वहाँ पे प्रोग्राम था हमारा शो, मतलब जिन मास्टर का शो था हमारा, तो सुबह जाना होता शो करने के लिए और शाम को।
0: अच्छा।
3: क्योंकि मैं जिन मास्टर में रह चुका हूँ ना, स्टेट लेवल खेल के आ चुका हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो खेलने के बहाने आपको घूमने को मिल गया?
3: पांचवा रैंक आया था हमारा, हमारी टीम का।
0: अरे वाह,
3: थैंक यू।
0: तो ये पता है बच्चों, ये भी अच्छी बात है, जब आप पढ़ाई में अच्छे होते हैं, खेलने में अच्छे होते हैं, तो उसके साथ साथ भी आपको घूमने की कई अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं।
3: हाँ।
0: है ना? और पंकज, आप और कहाँ घूमने गए हो? जब आप छोटे थे क्या तब कहीं घूम के आए?
2: जब मैं छोटा था तब तो मुझे याद भी नहीं मैं कहाँ घूमने गया था।
0: इतने छोटे भी नहीं,
2: ऐसी कोई मोमेंट याद नहीं।
0: अच्छा, अपने आपका जो घर है, आप लोग आप रोड में रहते हो, ये भी तो टूरिस्ट प्लेस है, माउंट में बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं।
3: हाँ दीदी।
0: तो यहाँ के बारे में कुछ बताओ, यहाँ तो आप लोग बहुत घूमे होंगे।
2: यहाँ तो हमने हर जगह घूम रखा।
0: तो यहाँ की जगह के बारे में कुछ बताओ।

0: यहाँ मैं सुंदा माता मंदिर घूमने गया था।
1: और वहाँ पे क्या है?
0: वहाँ पे बस एक मंदिर है, बहुत बड़ा है और फेमस मंदिर है।
1: फेमस है, बहुत पुराना है।
0: और वहाँ एक सैंड की हिल है।
1: सैंड की हिल है, अच्छा।
2: पूरा रीति रीत,
1: अच्छा।
0: इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: और भुवना, तुम्हारे घर के पास कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत फेमस है?
3: चार मीनार।
1: चार मीनार। पहले हम सबको बताओ आपका घर कहाँ है?
3: मेरा घर तो थोड़ा दूर है चार मीनार से, मारेटपल्ली में।
1: अच्छा, और वहाँ कौन कौन सी जगह है जो आपने घूमी है?
3: मैंने चार मीनार घूमा, फिर गोलकंडा।
1: गोलकंडा क्या है?
3: वो एक महल है जहाँ राजा रहते थे, वो एक कैपिटल होता था हैदराबाद का पहले।
1: हैदराबाद का कैपिटल, ओके। और वहाँ क्या क्या चीजें हैं?
3: वो एक्चुअली रुइन हो गई, हाफ तो रुइन हो गई, इसलिए मैंने इतना कुछ नहीं देखा, फिर देख के आगे बस
1: देख के आगे। और आपके घर में कौन कौन सी घूमने की जगह है?
3: जब मैं छोटी थी मैं चेन्नई गई, वहाँ क्वींसलैंड गई मैं।
1: क्वींसलैंड?
3: बहुत छोटी थी।
1: वो जगह आपको याद है?
3: हाँ, फोटोज भी थी। और मैंने जू गए।
1: जू गए? जू में तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं।
3: हाँ,
1: आपका फेवरेट कौन सा है?
3: मेरा फेवरेट रैबिट।
1: रैबिट तो बहुत क्यूट होते हैं। और पंकज कैंडी, अपने शहर के बारे में हमें और नहीं बताओगे?
2: माउंट आबू हमारा काफी अच्छा है।
0: हमारा शहर तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है,
1: क्योंकि राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन।
2: हाँ, माउंट आबू को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं।
1: राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, अरे वाह। और कौन कौन सी घूमने की जगह है? अगर कोई आपके शहर घूमने आता है तो उसे कहाँ कहाँ लेके जाओगे?
2: दिलवाड़ा का जैन मंदिर।
1: दिलवाड़ा का जैन मंदिर,
2: जिसे इतिहास में पढ़ा भी जाता है।
1: वहाँ की खासियत क्या है सैंडी?
2: खासियत है वहाँ की महावीर भगवान की मंदिर 880 किलो सोने की है।
1: अच्छा, और वहाँ की जो कारीगरी
2: सुपर,
1: वो तो देखने लायक
2: है। उन्हें लोग बुक्स में पढ़ते हैं और देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से आते हैं।
1: वहाँ की एक एक दीवार में अलग अलग नक्काशी और कारीगरी है।
0: इस मंदिर का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ
2: कारीगरी नहीं की हुई है।
1: और कितना सुंदर और बड़ा मंदिर है।
2: हाँ दीदी, बहुत।
1: दिलवाड़ा मंदिर तो सच में बहुत।
2: और कहा जाता है कि दूसरे देश के लोगों ने शायद उसे वार करने की कोशिश करी, इस मंदिरों पे तोड़ने की कोशिश करी, पर उस मंदिर में कुछ भी खरोच भी नहीं आई।
1: अरे, खरोच भी नहीं आया,
2: ऐसा मेरे पापा से सुना मैंने।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत सी कहानियाँ हैं जो मंदिर से जुड़ी हुई हैं।
2: हाँ,
1: और कौन कौन सी जगह है?
2: अचलगढ़, जहाँ पर शिवलिंग।
1: अच्छा, अचलगढ़ आप लोग गए हो?
2: हाँ, मैं एक बार गया था फैमिली के साथ।
1: हाँ, माउंट में तो वैसे कहीं भी घूमने चले जाओ अच्छा।
2: अचलगढ़ में पापा बता रहे थे कि वहाँ दो भैंस है जो वहाँ पे दूध दही की नदियों बहती थी।
1: अच्छा।
2: हाँ,
1: मतलब है कि दूध घी दही। हाँ, बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था।
2: हाँ, और वो दो भैंस पी जाते हैं तो उनको शायद किसी राजा ने गोली मार दिया था, तो वो पत्थर के बन गए थे, अभी भी वहाँ पर है।
1: अच्छा, ऐसी कहानी मशहूर है।
2: हाँ, और हम लोग देख के अभी भी वो है, ऐसे दो भैंस वहाँ पर
1: जो पत्थर की भैंस है वो। हाँ, वहाँ पे,
2: और अभी भी गोली मारी उसकी निशानी पे है।
1: अच्छा।
2: हाँ,
1: ये तो देखना पड़ेगा।
0: मैं भी देखना चाहता हूँ।
2: ठीक है, चलो।
1: अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें फ्यूचर में घूमने का मौका मिले, किसी एक जगह जाने का मौका मिले, देश में या विदेश में, तो वो जगह कौन सी होगी?
2: मेरी तो अमेरिका।
1: अमेरिका? और अमेरिका क्यों?
2: बस अमेरिका अच्छा लगता है, अमेरिका जाना।
0: टीवी में अच्छा लगा।
1: टीवी में और फिल्मों में हम अमेरिका देखते हैं और अमेरिका बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसलिए अमेरिका जाना है। और बाकी की चीजें तो अमेरिका जाके पता चलेगी
2: कि कैसा है।
1: तो सैंडी, जब बहुत सारी पढ़ाई करके एक अकाउंटेंट बन जाएगा, फिर अमेरिका घूम के आएगा?
2: हाँ।
1: और हम सबको लेके नहीं जाओगे?
2: हाँ, लेके जाऊंगा ना दीदी, बिल्कुल। पहले मैं जाके आऊंगा दीदी, अच्छा है तो ले जाऊंगा।
1: अच्छा, और पंकज?
0: मैं लंदन जाना चाहता हूँ।
1: लंदन जाना चाहते हो? लंदन क्यों जाना चाहते हो?
0: वो प्लेस मुझे नाम से ही अच्छा लगता है, इसलिए मुझे वहाँ देखना है कि वहाँ क्या है जो इतना फेमस है वो।
1: अच्छा, हाँ, लंदन का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, जब भी हम विदेश की बात करते हैं लंदन का नाम तो जरूर आता है।
0: हाँ दीदी, इसलिए मैं भी जानना

0: गांव जा रहे थे तो बीच में आगरा ट्रेन लेट थी, तो फिर वहां से स्टेशन से पापा ले गए थे, 10-15 मिनट के ले गए थे।
1: अच्छा, तो वहां पे क्या देख के अच्छा लगा?
0: सबसे मस्त वहां की नदी, जो पास से नदी निकल रही है, काफी इंटरेस्टिंग। वहां की आगरा की पूरी ताजमहल है, उसका पूरा परछाई वो नदी में दिखती है,
1: नदी में दिखती है।
0: हाँ।
1: और वो दूर से बहुत ही सुंदर नजर आता है, है ना?
0: हाँ।
1: और इंडिया के वंडर की बात की और वर्ल्ड का एक वंडर घूमना देखना चाहती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या ट्रैवलिंग के टाइम पे कोई मुश्किलें आती हैं?
0: इससे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है।
1: जैसे?
2: जैसे कई बार खो जाते हैं रास्ता।
0: जैसे हम दिल्ली में खो गए थे।
1: दिल्ली में खो गए थे, फिर मिले कैसे?
0: हम साथ में खोए, मतलब बस रास्ता भूल गए।
1: रास्ता भूल गए
0: तो
1: रास्ता भूल जाए तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
0: हमने गूगल खोला।
1: गूगल खोला? हाँ, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ है।
2: लेकिन
1: हाँ।
2: फिर भी मुझे एक मेन पॉइंट याद था जहाँ से हम वापस जा सकते थे।
1: इसीलिए जब आप घूमने जाए तो
0: मैं थोड़ा डर गया।
1: आप फिर डर गए थे कि कहीं गलत ना चले जाए?
0: हाँ, जबकि पंखे सही आ रहा था।
1: होता है कभी कभी, जब हम डर जाते हैं तो सही भी हमें सही नजर नहीं आता।
0: हाँ, थोड़ा मैं जल्दी हड़बड़ा जाता हूँ उस बात के लिए।
1: और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है?
0: कि पेशेंस रखना चाहिए।
1: हमें पेशेंस रखना चाहिए और सही रास्ता खोजने के लिए इंतजार करना चाहिए। गूगल है, आसपास के कुछ लोग हैं जो आपको विश्वास के पात्र लगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। और कभी भी एक व्यक्ति के डायरेक्शन पर ना जाके 3-4 लोगों से वो डायरेक्शन कंफर्म करें, तभी आगे बढ़े।
0: ओके दीदी,
1: है ना?
2: हाँ दीदी,
1: उसे कहते हैं क्रॉस चेक करना। 3-4 लोग तो आपको एक साथ गलत नहीं बताएंगे।
0: हाँ।
1: है कि नहीं?
2: कुछ लोग मजाक भी करते हैं।
1: कुछ लोग मजाक कर सकते हैं या गलत बता सकते हैं, लेकिन अगर 3-4 लोगों से आपने क्रॉस चेक किया तो मतलब आप सही रास्ते तक पहुंच जाओगे, है ना?
0: हाँ दीदी।
1: और दोस्तों के साथ घूमने में ज्यादा मजा आता है कि फैमिली के साथ?
0: दोस्तों के साथ।
1: और पंकज?
2: फ्रेंड्स के साथ।
1: भुवना?
3: फैमिली के साथ।
1: भुवना को फैमिली के साथ ज्यादा मजा आता है। फैमिली के साथ मजा नहीं आता पंकज और सैंडी को?
0: मजा आता है पर उतना नहीं,
1: क्योंकि दोस्तों के साथ ज्यादा मस्ती करते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन फैमिली के साथ भी बहुत मजा आता है, क्योंकि उनके साथ वो टाइम हमें घर पे कभी कभी नहीं मिल पाता। सब लोग अपने अपने जॉब में व्यस्त होते हैं, इसीलिए जब भी फैमिली को लेके जाओगे तभी भी और इन्जॉय करने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करना।
0: ठीक है दीदी।
1: और सैंडी भी हमें कोई जगह के बारे में बताने वाले है क्या?
0: हाँ, अम्बा जी मंदिर, जो कि हम पैदल गए थे घूमने के लिए।
1: पैदल? कितनी दूर?
0: यहाँ से ज्यादा दूरी पे नहीं है। मैं और पंकज जब अम्बा जी मंदिर में नवरात्रि चलते हैं तो काफी लोग पैदल जाते हैं, अच्छी मान्यता होती है, तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम पैदल गए थे। हाँ, फिर शुरू शुरू जाके वहाँ हालत खराब हो गई थी हम लोगों की, दर्शन तक ये नहीं सो गए हैं।
1: मतलब इतना चले कि थक गए।
0: थक गए।
2: हाँ, तो बहुत मजा आया।
0: हाँ।
1: दोस्तों के साथ सफर में भी ज्यादा मजा आता है घूमने से ज्यादा।
0: फर्स्ट टाइम पैदल गए थे हम लोग कहीं।
1: पैदल
0: पता नहीं
1: लगा था आप लोग को पैदल चल के जाने में।
0: रात को 8 बजे निकले थे ना,
1: 5 घंटे पैदल चले थे।
0: हाँ, लगातार।
1: ठीक है बच्चों, आज हमने ट्रैवलिंग के बारे में बहुत सी बातें की।
0: हाँ दीदी।
1: अभी तो तुम लोग छोटे छोटे हो और इतनी सारी जगह घूम के आए हो, और जब और बड़े हो जाओगे तो और जगह जब घूमने जाओगे तो इंजॉय करने के साथ साथ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की भी कोशिश करना।
0: हाँ
2: दीदी, अभी तो सिर्फ इंडिया की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है,
1: बाद में विदेशों की भी करेंगे।
0: हाँ।
1: और जहाँ भी जाएंगे उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे, ताकि वो हमेशा हमारे और भी काम में आए। ओके, आज की ये बातचीत हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।

0: तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।
1: अवकाळी पाऊस वादळ वाऱ्याची चिंता विसरून जा, पीक विमा काढा हो।

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: Ikipa,
2: Ikipa, Ku, Ku, Ku, Baba.

0: अच्छा आज का स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान दीपक जाधव जी राहटनी रेडियो पुनेरी आवाज से हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। तो दीपक जाधव जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, और आप विशेष सर्वेयर है जो खास करके जमीनों का जो है सर्वे करता है करते हैं, और साथ ही साथ उनके डॉक्यूमेंट्स को भी आप जो है करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है कि किसी को अपनी जमीन का डॉक्यूमेंटेशन और फिर सर्वे करना हो तो आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़कर आप इन चीजों को सुचारू रूप से नियम अनुसार कर सकते हैं। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति से हमारी मुलाकात हो रही है दीपक जाधव जी से। दीपक जाधव जी बहुत बहुत स्वागत, और मैं चाहूंगा आप अपने बारे में बताइए हमें। स्वागत,
1: मेरा नाम है दीपक प्रकाश जाधव, मेरा कंपनी का नाम है विमल इंटरप्राइजेस एंड सर्वे पिंपरी चिंचोड़ पुणे। मेरा ऑफिस है राहटनी में, मैंने ये कंपनी 2011 में चालू किया था।
0: अच्छा,
1: तब से अभी तक मेरे 1200 प्लस कस्टमर है। जो बिल्डर्स है, लोकल्स कस्टमर है, आर्किटेक्ट है, डेवलपर्स है, उसमें ज्यादा मेरा कंपनी है। कुछ लिमिटेड कंपनीज है जिसका साल का जो रहता है कि भाई ये नहीं करना है, ये प्रॉपर्टी कार्ड बनाना है, जिसका सात बारह बनाना है, ऐसे कंपनी का मेरा काम चलता है।
0: जी जी जी, दीपक जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं पुणे में। ये कितना टाइम हो गया आपको इन कामों को करते हुए?
1: ये 2011 से अभी तक चालू है।
0: अच्छा, 2011 से अभी तक आप कर रहे हैं, मना एक 14 साल की तपस्या आपकी पूरी हो रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा कि एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है, और निश्चित तौर पे अभी आप सब काम जो है बहुत ही एक लंबा सफर आपने तय किया। तो शुरू में जब ये बिजनेस आपने शुरू किया या काम करना शुरू कर दिया तो क्या क्या चैलेंजेस आते थे आपके पास?
1: पहला चैलेंजेस था कि मशीन लेना है।
0: अच्छा,
1: पैसे चाहिए। शुरुआत वैसा है, डिप्लोमा होने के बाद क्या है वो मशीनरी खरीदना, उसके लिए बहुत पैसा, उसी में लोन होता नहीं मशीन।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो क्या मतलब जो है जो व्हाइट पेमेंट दे के लेना पड़ता है, तो 11 लाख 12 लाख 17 लाख 18 लाख ऐसा मशीन का ये पैसा। उसे पहला मशीन लेते समय बहुत प्रॉब्लम हुआ, इससे दोस्त से पैसा लो, कुछ गहने रखे ले लो, घर से मम्मी से लिया, पापा से लिया, ऐसा करके पूरा फंड बना के पहला मशीन खरीदा था।
0: बहुत बढ़िया। हाँ,
1: तो एक साल में नील किया मैंने पूरा पेमेंट।
0: अच्छा।
1: हाँ, एक साल में। हाँ। और एक साल में दूसरा मशीन भी ले लिया।
0: क्या बात।
1: हाँ, तो ऐसा स्ट्रगल था स्टार्ट में, अभी कुछ नहीं है, अभी 6-7 मशीन है, ऑफिस है, तब ऑफिस नहीं था, ऐसा अभी चल रहा है सबकी दुआ से, कस्टमर हैप्पी है तो काम मिलता है सर।
0: सही बात है, एक बार आपसे कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है।
1: हाँ।
0: तो वो आपको खुद तो कस्टमर है ही है, दूसरों को भी आपके साथ जोड़ता है। तो ये काम आप खुद हो के, जैसे कि एक बार डिप्लोमा हो गया तो प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी को असिस्ट किया या डायरेक्टली आप सीखते गए, कैसा?
1: एक मेरा दोस्त था सचिन लवांडे बोल के, उसने मुझे सिखाया है पूरा।
0: अरे वाह।
1: हाँ, वो उसी में था पहले।
0: हाँ हाँ
1: हाँ, उनसे ये सीखा मैं।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा, आज के समय में जैसे कि हमारे बहुत सारी यूथ है वो भी कुछ न कुछ करना ही चाहते हैं, तो क्या वो इस फील्ड में आ सकते हैं? तो उसकी मानसिकता क्या होनी चाहिए, कितनी तैयारी उसकी होनी चाहिए, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे?
1: सर कैसा है, अभी मेरे पास

0: जो सर्वर जॉब करते हैं
1: जी जी जी,
0: वो क्या करते हैं, कम समय में उनको थोड़ा सा जल्दी फास्ट बड़ा होना रहता है। क्या होता है, 6 महीना 4 महीना जॉब किया कि मशीन लेना पड़े, वो बोलते हैं मशीन लेने का और खुद का चालू कर देते हैं। पहले अच्छा। आपको कस्टमर बेस बनाना पड़ता है सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जो आर्किटेक्ट चाहिए आपको, डेवलपर चाहिए, बिल्डर्स चाहिए या कंपनी चाहिए, वो नए लोग जो लड़के हैं उनको क्या होता है, फास्ट तुरंत होना चाहिए
1: जी,
0: हमारे कंपनी का नाम बड़ा, तो ऐसा नहीं होता सर। क्या तो सब जो यंग जो आने वाले व्यवसाय में, तो उनके लिए बोलता हूँ थोड़ा किसी के पास अनुभव लीजिए, एक साल डेढ़ साल, उसके बाद क्या रहता है, तुरंत ये चीज करने में थोड़ा सा गलत है, तो फिर वो क्या करते हैं, थोड़े दिन लेते हैं और मशीन बेचने के लिए फिर निकाल देते हैं, तो ऐसे में वो माइनस जाते हैं। फिर वो व्यवसाय के पीछे जो उनका राज रहता है वो क्या बोलते, नहीं व्यवसाय ऐसा है वैसा है, फिर जॉब करने लग जाते हैं। व्यवसाय ये अच्छा ही है लेकिन थोड़ा समय दीजिए उसको, पहला स्ट्रगल कीजिए, पूरा बात समझ के लिए, कस्टमर मार्केट क्या है, कैसा है, क्या करना पड़ता है, उसके बाद डिसीजन लीजिए खुद का बिजनेस करने के लिए, ये बोलूंगा मैं सब।
1: दीपक जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता और तुरंत नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और पेशेंट रखना है। आजकल वो युवाओं में कहीं ना कहीं कमी आई है और वो चीज आप देख भी रहे हैं, क्योंकि जो लोग सीखने के लिए आते हैं या आपके यहाँ काम करते हैं तो वो भी समझते हैं कि मशीन ले लिया तो काम हो गया। लेकिन मशीन लेने के लिए भी पैसे लगेंगे और उसको फिर मेंटेन करना है, फिर काम आपको चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो आपके लिए वो सिरदर्द भी हो जाएगा, है ना। इसके लिए आपको पहले टीम बनाना है, जैसे दीपक जी बता रहे थे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें कोई भी काम करना है, बिल्कुल काम तो करना ही है, क्योंकि आपको जीना है, मुझे जीना है, सबको जीना है, तो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन काम अगर आप सुचारू रूप से सही ढंग से समझ के और किसी के निरीक्षण में आप करते हैं तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, बजाय कि आप जल्दबाजी में मशीन लेके अपना ही कुछ सेटअप शुरू कर देंगे तो सारा चीज गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए आपको एक कम्युनिटी बेस आपका जो है अच्छी पहचान बनाए, लोगों से मिले जुले और फिर आप जो है सुचारू रूप से ईमानदारी से अच्छे से काम करने का सोचे। जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में खाना भी ठीक से नहीं बनता, चाय भी ठीक से नहीं बनता। चाय भी बनाना हो तो आपको पेशेंसली हर चीज को सामने सब चीजें हो आपके पास और बड़े ध्यान से पूर्व से प्रेम से अगर आप बनाते हैं, इसलिए होटल में भले ही आप 5 स्टार होटल में जाके खाना खाओ, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, सब चीजें बाजू में आसपास में बहुत सारी चीजें, लेकिन वो घर में जो फुर्सत में माँ प्यार से बनाया खाना है उसकी तुलना में वो कम ही लगता है। तो इसलिए हमेशा जो है अपनों से प्यार से जीवन जो है वो समृद्ध बनाता है, भले पैसा ना हो लेकिन आप कीमती, आपका कीमत बहुत लगता है आपका, आपको देखने वाले आपको मिलने वाले खुशी फील करते हैं, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, अगर ईमानदार है, वैल्यू बेस्ड इंसान है और सबका कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बेहतरता आती है। ऐसा कहा जाता है मानवता का पहला धर्म है नमन, एक दूसरे को सम्मान दे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, ऐसे नहीं कि उसका कुछ भी हो जाए मैं पहला। तो फिल्मी चीजें नहीं चलती, फिल्मी चीजें 3 घंटे के लिए फिल्म में अच्छा है लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको 100 साल की जिंदगी बितानी होती है, जहाँ पर सबको साथ में, पत्नी बच्चे माँ बाप सबको लेके चलना होता है, परिवार को लेकर चलना होता है, तो इसको आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मना बड़े बेहद तरीके से आपको सोचना है। दीपक जी, मैं चाहूंगा कि आपका मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता था ये सब काम करने के, क्योंकि आपने कहा एक साल में आपने मशीन लिया और उसको फिर पे भी किया, तो काफी मेहनत किया होगा, क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप कर्जा लिया, एक साल में पे भी किया, नया मशीन भी लिया, तो ऐसा ये भी लग रहा है कि कुछ ज्यादा या तो मेहनत किया होगा आपने।
0: सही है, क्या होता है जब अपन एक ध्येय रहता है ना खुद का, स्ट्रगल भाई ये करना ही करना है मुझे, तो जब वो करना है ना तो वहां तक समझो मुझे बॉम्बे यहीं से पैदल जाना है तो मतलब जाना ही है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ऐसा मैंने रख दिया ना,

0: खाना पड़ता है, इसके लिए भागना पड़ता है, नींद नहीं, खाना नहीं, देखना पड़ता, काम
1: काम, काम। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं रात
0: पूरा मेरा हो गया। और उसी में कैसे है, जब मुझे ऐसा लगता है कुछ काम का थोड़ा ये है, तो मैं खुद थोड़ा सा मेडिटेशन घर पे कर देता हूँ, या मेरे दोस्त लोग के साथ बैडमिंटन खेलने जाता हूँ,
1: दो घंटा,
0: तीन घंटा, एक घंटा। फिर कुछ भी नहीं हुआ तो मेरी मम्मी गांव रहती है भीड़ में, तो मैं उससे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, या महीने में दो बार तो भी मैं घर जाके आता हूँ, तो उसमें मुझे मोटिवेशन मिलता है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दीपक यादव जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। और मैं चाहूंगा कि युवाओं के लिए जो बातें आपने बताया बहुत ही सही बताया, कि अपने करियर को बनाना है या इस फील्ड में आना है जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, सर्वेइंग का, डॉक्यूमेंटेशन का, तो सीख के जरूर आगे बढ़ सकते हैं, बस पेशेंस और एक सभी को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है इसमें। और मैं चाहूंगा जाते जाते एक आज के समय में जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं उसमें ये जो ब्रह्म कुमारी का फिलॉसफी है या ध्यान धारणा है वो कितना जरूरी है, आप क्या सोचते हैं?
0: नहीं, इसमें पहला कैसा था कि भाई लोग जो थे वो खेती बाड़ी में काम करते थे, जॉब करते थे, खाने में सही टाइम पे खाते थे, ये करते थे। अभी कैसा है, जो मिला रास्ते पे वो खा ले लेते क्या, उससे आपके बॉडी को 100% पचन नहीं होता, ये नहीं होता, बहुत है। इसके लिए सुबह व्यायाम करना पड़ेगा, वॉकिंग जाना पड़ेगा, व्यायाम करना, ध्यान करना पड़ेगा। जिसको वो ध्यान करते वॉकिंग नहीं जा सकते तो वो अपने सेंटर में आ सकते इधर मेडिटेशन के लिए। फिर इधर आने के बाद सबको पता चलता है कितना खाना है, क्या खाना है, कैसा खाना है, तो उसी में तो पूरा हो ही जाता है।
1: जी जी जी, जी। दीपक जी बहुत अच्छी बात बताया। और मैं चाहूंगा कि आप यहाँ अब आ गए हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ से सीखेंगे, कितना टाइम आप देना चाहेंगे, रेगुलर आएंगे, कैसा?
0: देखो अभी तो मैं बाजू में रहता हूँ, तो हर बार चलते फिरते सामने से आता जाता हूँ, अंदर जाता हूँ, दीदी से मिलता हूँ, बात करता हूँ, ये तो बहुत सालों से आता जाता हूँ।
1: जी जी,
0: मैं जो नहीं आते एक बार एक दो बार आजिए, शिविर अटेंड कीजिए, उसके बाद खुद आपको खुद बोलता है आदमी नहीं यार जाके आएंगे।
1: बिल्कुल,
0: जब अंदर से खुशी मिलती है ना तब आदमी खुद होके आते हैं। हाँ
1: दीपक जी, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए?
0: सबके लिए एक बोलूंगा मैं,
1: जी जी,
0: कोई भी चीज करते समय कर्म और धर्म दो चीज पे ध्यान रखिए। क्या?
1: बिल्कुल, कर्म और धर्म।
0: हाँ, अपना एक बार शिविर इधर आगे ज्वाइन कीजिए, सब आपको पता चल ही जाएगा। जब नहीं आएंगे तो नहीं पता चलेगा, आएंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो खुद के लिए सीखेंगे, इतना बोलूंगा।
1: चलिए दीपक यादव जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आप यहाँ आइए, सीखे और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया, क्योंकि आपके पास में है तो आप इसका लाभ जरूर ले सकते हैं, और जैसे आप खुद लाभ ले रहे हैं इन चीजों का, तो आप भी चाहते हैं कि दूसरे भी इसका लाभ उठाए, अपने जीवन को बेहतर शांति और प्रेम से गुजारे। तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं इन भविष्य के लिए आपको, ओम शांति। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहां हमने दीपक जी को सुना, दीपक यादव जी को सुना, जो खास सर्वेयर का काम करते हैं और जो भी खेती बाड़ी है, जमीन है, इन सभी का डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको प्रॉपर मोज मापनी जिसको मराठी में कहते हैं, वो चीजें करते हैं, तो ये चीजें हमारे लिए सबके लिए जरूरी है, और ये सबके प्रॉब्लम्स को भी हल करते हैं। कई बार मोज मापनी में जो गड़बड़ हो जाती है, कम हो गया, ज्यादा हो गया, मेरा इतना है, वो मेरा इतना है, हम आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन एक मशीन के साथ और गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ जब हम सर्वे कर लेते हैं तो हर एक को अपना जो है हिस्सा मिल जाता है, ठीक से मिल जाता है, झगड़े खत्म हो जाते हैं, और शांति से वो अपने अपने मार्किंग करके अपना कंपाउंड बना के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन में बदलने का काम दीपक जी का है, तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन में अगर तरक्की करना चाहते हैं बहुत जल्दी, तो लोगों के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन में बदलिए, तो आपका जीवन अपने आप खुशनुमा हो जाएगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं।

ये गीत तो आप सबने सुना होगा। सच में सारे जग में दूसरा हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि यहाँ की विभिन्नता भी एकता का प्रतीक है। इन्हीं विभिन्नताओं से होते हुए आइए चलते हैं आज जानने तमिलनाडु को। ब्रिटिश शासनकाल में यह प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। स्वतंत्रता के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी को कई भागों में बांट लिया गया, जिसके फलस्वरूप मद्रास तथा अन्य राज्यों का उदय हुआ और 1968 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। तमिलनाडु शब्द तमिल भाषा के तमिल तथा नाडु, जिसका शब्दार्थ घर या वास है, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है तमिलों का घर या तमिलों का देश।

चलिए अब आपको ले चलते हैं उस दौर में जहां आपका इंतजार कर रहा है तमिलनाडु का अनुपम इतिहास। तमिलनाडु का इतिहास बहुत पुराना है। यद्यपि प्रारंभिक काल के संगम ग्रंथों में इस क्षेत्र के इतिहास का अस्पष्ट उल्लेख मिला है, किंतु तमिलनाडु का लिखित इतिहास पल्लव राजाओं के समय से ही उपलब्ध है। यह कुछ स्थानों में से एक है जो प्रागैतिहासिक काल से आज तक आबाद है। प्रारंभ में यह तीन प्रसिद्ध राजवंशों की कर्मभूमि रही है, जो थे चेर, चोल तथा पांड्य। तमिलनाडु के प्राचीन साहित्य में यहाँ के राजाओं, राजकुमारों तथा उनके प्रशंसक कवियों का विवरण मिलता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह साहित्य ईसा के बाद की कुछ प्रारंभिक सदियों का है। तमिलनाडु में स्थित है उत्तर मेरु ग्राम, जहाँ से पल्लव एवं चोल काल के लगभग 200 अभिलेख मिले हैं। चोल पहली सदी से लेकर चौथी सदी तक मुख्य अधिपति रहे। इनमें प्रमुख नाम करिकाल चोल है, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार कांचीपुरम तक किया। चौथी शताब्दी के पूर्वार्ध में पल्लवों का वर्चस्व कायम हुआ। उन्होंने ही द्रविड़ शैली की प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला का सूत्रपात किया। 11वीं शताब्दी के अंत में तमिलनाडु पर चालुक्य, चोल, पांड्या जैसे अनेक राजवंशों का शासन रहा। इसके बाद के 200 वर्षों तक दक्षिण भारत पर चोल साम्राज्य का आधिपत्य रहा। तमिल का संगम साहित्य चेर, चोल वंश और पांड्य वंशों के शासन काल में फला और फूला है। चोल राजाओं ने वर्तमान तंजावुर जिला और तिरुचनापल्ली जिले तक अपने राज्य का विस्तार किया। इस काल में चोल राजाओं ने दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। काल भ्रो को 6वीं सदी तक उत्तरी भाग में पल्लवों तथा दक्षिण भाग में पांड्यों ने हरा दिया। इसके पश्चात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी तमिलनाडु के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ा योगदान दिया है, जिसमें से प्रमुख हैं सी सुब्रमण्यम, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चिदंबरम पिल्लई, टीएसएस राजन, कसीम थूनी नागेश्वर राव, के कामराज, के संतानम, मिंजुर भक्तवत्सलम आदि।

Yeah.

जानते हैं कुछ तमिलनाडु के भूगोल के बारे में। तमिलनाडु राज्य प्राकृतिक रूप से पूर्वी तट पर समतल प्रदेश तथा उत्तर और पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्रों के बीच विभाजित है। पूर्वी मैदान का सबसे चौड़ा हिस्सा उपजाऊ कावेरी के डेल्टा पर है और आगे दक्षिण में रामनाथपुरम और मदुरई के शुष्क मैदान हैं। राज्य के समूचे पश्चिमी सीमांत पर पश्चिमी घाट की ऊंची श्रृंखला फैली हुई है। पूर्वी घाट की निचली पहाड़ियाँ और सीमांत क्षेत्र जो स्थानीय तौर पर जावड़ी, कालरायन और शेवराय कहलाते हैं, प्रदेश के मध्य भाग की ओर फैले हैं। यहाँ महत्वपूर्ण नदियों में कावेरी, पुन्नेयार, पलार, वैगई और ताम्रपर्णी शामिल हैं। ये सभी नदियों अंतरस्थलीय पहाड़ियों से पूर्व की ओर बहती हैं। कावेरी और इसकी सहायक नदियाँ तमिलनाडु के जल एवं विद्युत का महत्वपूर्ण स्रोत है। नदियों के डेल्टा की जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता के साथ साथ यहाँ की मुख्य मिट्टियों में चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली और लाल मिट्टी पाई जाती है। कपास उत्पादक काली मिट्टी रेगूर या रेगड़ के नाम से जानी जाती है और यह पश्चिम में सेलम व कोयम्बतूर, दक्षिण में रामनाथपुरम व तिरुनेलवेली तथा मध्य में तिरुचनापल्ली के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तमिलनाडु राज्य के लगभग 15% हिस्से में वन है। पश्चिमी घाट के उच्चतम शिखरों वाले पर्वत नीलगिरी, अन्नमलई और पलानी पहाड़ियाँ उपअल्पीय वनस्पतियों को सहारा देते हैं। पश्चिम घाट के पूर्व की ओर तथा उत्तरी एवं मध्यवर्ती जिलों की पहाड़ियों की वनस्पतियों में सदाबहार व पर्णपाती वृक्षों के मिश्रित वन हैं। वनों से प्राप्त काष्ठ उत्पाद में चंदन, पल्पवुड और बांस शामिल हैं। रबर भी एक महत्वपूर्ण वनोपज है। यहाँ के जलीय पक्षियों का प्रतिनिधित्व वेदांतांगल स्थित पक्षी अभयारण्य करता है, जबकि अन्य वन्य प्राणियों को मुदुमलई स्थित आखेट अभयारण्य में देखा जा सकता है।

फिर भी यहाँ पत्थर एवं कांस्य की मूर्तियाँ बनाने की कला की शिक्षा के लिए विद्यालय हैं। तमिल साहित्य ने तेजी से लघु कथाओं व उपन्यासों के पश्चिमी साहित्यिक स्वरूप को अपनाया है। सुब्रमण्यम सी भारती जो 1882 से 1921 तक रहे, वे पारंपरिक तमिल कविता को आधुनिक बनाने वाले प्रारंभिक कवियों में से एक थे। यहाँ 1940 के दशक से ही चलचित्र जन मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम बना हुआ है। यहाँ चलते फिरते और स्थायी दोनों प्रकार के सिनेमा घर हैं। भावात्मक और भव्य फिल्मों जिनमें प्रायः हल्का फुल्का संगीत और नृत्य होता है का निर्माण अधिकतर चेन्नई के आसपास स्थित स्टूडियो में होता है। कलाओं का भी तमिलनाडु में एक बड़ा इतिहास है। 580 ईसा के लगभग पांड्य शासक जो मंदिर निर्माण कला में निपुण थे शासन के प्रमुख हो गए और 150 सालों तक वे राज करते रहे। कांचीपुरम उनका प्रमुख केंद्र था। द्रविड़ स्थापत्य उस समय अपने चरम विकास पर था।

नौवीं सदी में चोल राजाओं का पुनः उदय हुआ। राजराज चोल और उसके पुत्र राजेंद्र चोल के नेतृत्व में चोल शासन एशिया के प्रमुख साम्राज्यों में गिना जाता था। उनका साम्राज्य बंगाल तक फैल गया। राजेंद्र चोल की नौसेना ने बर्मा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सुमात्रा, जावा, मलई तथा लक्षद्वीप तक अधिकार कर लिया। चोल राजाओं ने भुवन यानी मंदिर निर्माण में प्रवीणता हासिल कर ली। तंजावूर का बृहदेश्वर मंदिर इसका सुंदरतम उदाहरण है। चौथी सदी के आरंभ में पांड्य फिर सत्ता में आ गए, किंतु अधिक दिनों तक सत्ता में रह ना सके। उन्हें उत्तर के मुस्लिम खिलजी शासकों ने हरा दिया था, पर उसके बाद मुसलमानों ने भी धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिससे 14वीं शताब्दी के मध्य में बहमनी सुल्तान कायम हुई। लगभग उसी समय विजयनगर साम्राज्य ने भी तेजी से अपनी स्थिति मजबूत बना ली और समूचे दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। शताब्दी के अंत तक विजयनगर साम्राज्य दक्षिण की सर्वोच्च शक्ति, किंतु 1564 में तालिकोटा की लड़ाई में दक्षिण के सुल्तानों की सामूहिक फौज से वह पराजित हो गया। तालिकोटा के युद्ध के बाद कुछ समय तक स्थिति अस्पष्ट रही, लेकिन इस बीच यूरोप के व्यापारी अपने व्यापारिक हितों के लिए दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगे थे। पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के लोग एक के बाद एक जल्दी जल्दी आए और उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए, जिन्हें उन दिनों फैक्ट्रीज कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मछलीपट्टनम, जो अब आंध्र प्रदेश में है, वहां अपनी फैक्ट्री लगाई और धीरे धीरे उन्होंने स्थानीय शासकों को आपस में लड़ाकर उनके क्षेत्र हथिया लिए। ब्रिटिश लोगों ने भारत में सबसे पहले तमिलनाडु में अपनी बस्ती बसाई। उसके बाद सन 1901 में मद्रास प्रेसिडेंसी बनी, जिसमें दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकतर हिस्से शामिल थे। बाद में संयुक्त मद्रास राज्य का पुनर्गठन किया।

गया और वर्तमान तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में आया। 16वीं सदी के मध्य में विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात कुछ पुराने मंदिरों का पुनः निर्माण किया गया। 1670 तक राज्य का लगभग संपूर्ण क्षेत्र मराठों के अधिकार में आ गया, पर मराठे अधिक दिनों तक शासन में नहीं रह सके। इसके 50 सालों के बाद मैसूर स्वतंत्र हो गया। इसके अलावा दक्षिण के राज्य भी स्वतंत्र हो गए। सन 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजी शासन में आ गया था। तमिल सभ्यता विश्व की पुरातनम सभ्यताओं में से एक है। तमिल यहाँ की आधिकारिक भाषा है और इसे जनक भाषा का दर्जा भी मिला। तमिल भाषा का इतिहास काफी प्राचीन है, जिसका परिवर्तित रूप आज सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होता है।

तंजावुर के भित्ति चित्र, भरतनाट्यम, मंदिर निर्माण तथा अन्य स्थापत्य कलाएं हैं। संत कवि तिरुवल्लूर का तिरुक्करल प्राचीन तमिल का प्रसिद्ध ग्रंथ है तथा तमिल का विकास 20वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम में भी काफी तेजी से हुआ। तमिलनाडु हस्तशिल्प कला में समृद्ध है, जिसमें हथकरघे का रेशम, धातु की मूर्तियां, चमड़े का काम, तांबा, पीतल और कांसे की वस्तुएं, लकड़ी का काम, ताड़पत्र का काम और बेंत का सामान प्रमुख है। कला के साथ साथ जो बात जरूरी है वो है शिक्षा, तो एक नज़र यहाँ के शिक्षा क्षेत्र पर भी डालते हैं। यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च विद्यालय और कला एवं विज्ञान महाविद्यालयों साथ साथ चिकित्सा महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक संस्थाएं तथा औद्योगिक परीक्षण संस्थाएं हैं। तमिलनाडु में 21 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, चिदंबरम में अन्नामलई विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर में भारतीयार विश्वविद्यालय, तिरुचनापल्ली में भारती दासन विश्वविद्यालय, मदुरई में मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, कोडैकनाल में मदर टेरेसा वीनस विश्वविद्यालय, सेलम में पेरियार विश्वविद्यालय और तंजावुर में तमिल विश्वविद्यालय शामिल हैं। चेन्नई स्थित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और गांधी ग्राम स्थित गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, जो क्रमशः हिंदी भाषा और महात्मा गांधी की ग्रामीण उच्च शिक्षा की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में लगे हुए हैं।

चलिए पढ़ाई की बातें तो हो गई, अब जानते हैं तमिलनाडु को और करीब से। यहाँ की संस्कृति त्योहार सब कर रहे हैं आपका इंतजार। यहाँ हिंदू धार्मिक और सेवार्थ विभाग अपने अंतर्गत आने वाले 9300 से भी ज्यादा बड़े मंदिरों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, विशेषकर चिदंबरम, कांचीपुरम, तंजावुर और मदुरई साहित्य अधिकांश नगरों में गोपुरम यानी द्वार मीनार छाए हुए हैं। यहाँ के मंदिर उत्सव चक्र श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध रथ उत्सव है, जिसमें मूर्तियों से सज्जित रथों की शोभा यात्रा के साथ मंदिर के चारों ओर परिक्रमा कराई जाती है। तमिलनाडु में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल। ये त्योहार फसल कटाई के समय जनवरी माह में किसान अपनी अच्छी फसल के लिए आभार प्रकट करने हेतु मनाते हैं। पोंगल के बाद दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में जल्लिकट्टू, जिसमें तमिलनाडु शैली की सांडों की लड़ाई होती है, मनाया जाता है। तमिलनाडु में अलंगनालूर जल्लिकट्टू के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जबकि चिट्टिराई मदुरई का लोकप्रिय त्योहार है। यह पांड्य राजकुमारी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के अलौकिक परिणय बंधन का स्मृति में मनाया जाता है। तमिल महीने आदि के 18वें दिन नदियों के किनारे आदि पेरकू पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही नई फसल की बुवाई से संबंधित काम भी शुरू हो जाता है। नृत्य महोत्सव मामल्लापुरम भी यहाँ का एक अद्भुत महोत्सव है। समुद्र तट से लगे प्राचीन नगर मामल्लापुरम में पल्लव राजाओं द्वारा 13 शताब्दी पूर्व चट्टानों से काटकर बनाए गए स्तंभों का एक खुला मंच है, जिस पर लोक नृत्यों के अलावा नृत्य कला के सर्वश्रेष्ठ और सुविख्यात कलाकारों द्वारा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव में मंदिरों की नगरी चिदंबरम के निवासी सृष्टि के आदि नर्तक

भगवान नटराज को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके अतिरिक्त महामहिम तमिलनाडु का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है जो 12 वर्ष में एक बार होता है। यहाँ नवरात्र भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्र पर्व का शाब्दिक अर्थ नवरात्रियाँ हैं, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न रूपों में और अनोखे ढंग से मनाया जाता है। यह पर्व शक्ति, धन और ज्ञान के लिए देवी शक्ति को संतुष्ट करने के लिए मनाया जाता है।

तमिलनाडु में घूमने के लिए भी कई सुंदर जगह मौजूद है, जैसे कि चेन्नई, मामल्लापुरम, बुम्बुहार, कांचीपुरम, कुंभकोणम, धारावरम, चिदंबरम, तिरुवन्नामलई, श्रीरंगम, मधुरई, रामेश्वरम, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, तंजावूर, वेल्लोर, मधुरानंदम आदि। आप जब चाहे यहाँ आकर ऐसे ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थलों के दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी तमिलनाडु की यात्रा तो यहीं खत्म होती है, पर भारत का सफर अभी लंबा है। तो चलते रहिए हमारे साथ 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी में।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा यू नो ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होकर बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, ऐसे बहुत ही खूबसूरत गाने आपको सुनाने वाला हूँ। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको ले चलता हूँ श्री 420 इस फिल्म का एक गाना जो 1955 में बहुत ही पॉपुलर रही। 55 से लेकर आज तक ये गाना जो है इतना पॉपुलर है कि 60s एंड 70s के दौर में तो ये गाने हर रेडियो सेट पे और हर जगह जहाँ भी शादियां होती थी वहां पर इस गाने को सुना जाता था। तो आइए ये खूबसूरत सा गीत, जी हाँ, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश थाली, मुकेश की खूबसूरत आवाज में शैलेंद्र साहब का लिखा ये गीत, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। मैं हूँ आपका हम सफर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कहावों का सफर। इस कार्यक्रम में बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने सुना, श्री 420 का। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत था और गीत के धुन के साथ आप रैपो कर रहे होंगे या आप अपने पैर, हाथ और मन से उस गीत के साथ जुड़ गया होंगे, है ना? तो चलिए, आपकी खूबसूरती, आपकी जो भाव है वो मैं समझ रहा हूँ। और आइए, ऐसा ही कुछ भाव भरा गीत एक और मैं सुनाने वाला हूँ। 1960 में एक फिल्म आई थी, जिस देश में गंगा बहती है। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। जिस देश में गंगा बहती है, ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत था और ये देशभक्ति पर थी। तो शैलेंद्र साहब ने इसमें एक गाना लिखा था, मुकेश जी ने ही इसे गाया था और शंकर जयकिशन का ही संगीतबद्ध एक गाना है, जैसे कि ये।
2: मेरा नाम राजू घराना नाम।
1: जी हाँ, मेरा नाम राजू घराना अनाम। तो आइए, ऐसे खूबसूरत गीत को हम लोग अभी सुनेंगे। और कहते हैं कि कुछ भी मुकाम हासिल करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें ही चाहिए, पहला तो एक निश्चय और दूसरा कभी ना टूटने वाला हौसला। अगर ये दो चीजें आपके पास हैं, तो आप जीवन में वो सब कुछ कर सकते हैं जिसकी चाहत आप अपने दिल में बनाए रखे हैं। तो आइए आगे और भी बातें करेंगे, लेकिन ये गाने के बाद। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: खबरों के सफर में मैं हूं आपका हम सफर समी। जी हां, मेरा नाम राजू। ये बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना मुकेश साहब की आवाज में। और चलिए बात करते हैं बहारे फिर भी आएगी ये रात, फिर ना आएगी। एक फिल्म आई थी जिसका नाम है ये 1965 का, ये रात फिर ना आएगी। और इस फिल्म का एक गाना है, मेरा प्यार वो है के मर कर भी तुमको याद करेगी। तो ये ऐसे ही कुछ भाव भरा एक गीत है जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कुछ अपने जीवन में जो ख्वाब हमने देखे हैं उसे हासिल करने के लिए, जैसे कि दो चीजें मैंने बताई और इसके साथ में संघर्ष के भी दो रास्ते हैं। जब आपका हौसला टूटने लगे तो उस समय किसी ऐसे की जरूरत होती है जो कि आपको एक बार फिर से उठाकर खड़ा होने के लिए प्रेरित करे। और इसीलिए ये कहा जाता है कि महान लोगों द्वारा कुछ अच्छी अच्छी मूल मंत्र दिए हैं, जैसे कि जैसे महात्मा गांधी के 10 विचार उन्होंने दिए थे। उसमें से कोई भी एक विचार अगर आप सुन लेते हैं उस समय, या उसके ऊपर काम करते हैं, या उसके ऊपर मंथन करते हैं, तो आपको ऐसे गिरते समय या गिरने के बाद फिर से उठने का जो हौसला है वो इन बातों से मिलती है। तो इसीलिए अपने साथ हमेशा ऐसी ऐसी चीजें रखिए जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए, बातें होती रहेगी लेकिन गाने भी चलते रहेंगे। तो आइए सुनते हैं 1965 का ये खूबसूरत गीत अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबों के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना अभी, और SH बिहारी साहब का लिखा, महेंद्र कपूर की आवाज में आपने सुना, OP नैयर का संगीत से सजा जो गीत अभी आपने सुना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1968 की ओर मैं ले चलता हूँ। उस समय एक फिल्म आई थी जिसका नाम था साथी। जी हाँ, ये फिल्म भी अपने आप में कमाल का बिजनेस किया था और लोगों को काफी पसंद आया था। इस फिल्म का एक गीत मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है, जिसे सुमन कल्याणपुरी ने गाया है। सुमन कल्याणपुरी के साथ मुकेश जी ने भी इस गीत को आवाज दिया है। सुमन कल्याणपुरी को कहते थे उस समय लता मंगेशकर का हू यानी डुप्लीकेट आवाज इनके पास थी लता जी का, तो इसीलिए लता जी के सामने ये बिल्कुल चुप सी हो जाती थी। लेकिन फिर भी लोगों ने इनकी आवाज को पहचाना जाना और तवज्जो मिला। इन्होंने भी काफी अच्छे गीत गाए हैं, और कभी आप सुमन कल्याणपुरी और लता मंगेशकर के दोनों गीत अगर आप सुनते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किसका लता जी का है, कौन सुमन का है। चलिए इनके बारे में बाद में बात करेंगे। और नौशाद साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। और आइए आगे बढ़ते हैं। सफर में पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। यहाँ ये विचार महान जो व्यक्ति है अब्दुल कलाम साहब के विचार है, जो इन्होंने लिख के रखा है। और वो चीज जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो जिंदगी हमारी बिल्कुल आसान हो जाती है। दो बार इन चीजों को दोहराइए अपने मन से, और पूरे मन से उन विचारों को सोचना शुरू कर दीजिए। देखिए, आपके कदम अपने आप उठने लगेंगे। जी हाँ, महान लोगों की महान बातें जब हम सुनते हैं तो हमें प्रेरणा जरूर मिलता है, और प्रेरणा मिलते ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। तो चलिए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, 1947 की तरफ ले चलता हूँ, थोड़ा सा पीछे। और राजा मेहंदी अली खान का एक गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो गीता दत्त ने गाया है, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा, दो बाई ऐसा फिल्म से ये गाना है। तो ये गाना आपके लिए अभी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। और बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने सुना, मेरा सुंदर सपना बीत गया। चलिए, सपने खत्म हो जाते हैं, सपने फिर आते हैं। जैसे जैसे आप सोएंगे, सपने तो नए नए आते रहेंगे, लेकिन वो सपने जो नींद में आते हैं वो हमारे जीवन के बहुत मायने नहीं रखते हैं। लेकिन सपने वो हो जिससे हमारी नींद खत्म हो जाए, नींद पिट जाए। जी हाँ, आइए 1964 की और फिर से मैं ले चलता हूँ आपको। और एक फिल्म आई थी दोस्ती। जी हाँ, इस फिल्म को तो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए। कमाल का फिल्म है और दिव्यांग दोस्ती का इसमें बहुत ही सुंदर नमूना दिया है, एग्जाम्पल है कि कैसे दो दिव्यांग व्यक्ति भी एक दूसरे की कमी को समझते हुए उसको मिलकर दोस्ती के साथ उसे मजबूती का एक चोला पहनाते हैं, मजबूती देते हैं अपनी कमजोरियों को, और वो दोनों मिलकर किस तरह से धमाल की जिंदगी जीते हैं और लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो आइए, ऐसा ही कुछ भाव भरा एक गीत है जैसे कि ये।

जी हाँ, ये दोस्ती का बड़ा प्यारा सा भाव इसमें आता है। मजरू सुल्तानपुरी का कलम से लिखा ये गीत मोहम्मद रफी ने गाया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार खाबों का सफर, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। काफी अच्छे अच्छे गीत आप सुन रहे हैं 60s एंड 50s के, और जितने पुराने गीत आप सुनते हैं उतना ही हमें जो है एक एहसास बढ़ता है, जीवन जीने की कला हम सीखते हैं इन गीतों से। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े चीनी पत्थर पर, तब तक कोई पत्थर मूरत भी नहीं बनता। जी आप देखेंगे किसी पत्थर को अगर किसी कारीगर के हाथ में दिया जाए तो वो चीनी और हथौड़े से उसके ऊपर छेद करता है और उसको खुरेदता है, और जब वो पत्थर उन चीजों को सहन कर लेता है तब एक अच्छी मूरत बन के हमारे बीच में आती है। तो इसीलिए कहने का भाव ये है कि हमारे जीवन में जब संघर्ष ना हो, मुश्किलें ना हो, कांटे ना हो, तो उस रास्ते पे चलने में भी क्या मजा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे रास्ते पे चलिए ताकि आपके बाद हजारों लोगों के लिए वो रास्ता बन जाए। तो आइए, आशा करता हूँ आप मेरी बातों को सुनकर कहीं न कहीं मोटिवेशन तो मिल ही रहा होगा, और जो प्यार मिल रहा है आप लोगों का मैसेजेस पढ़कर या आते हैं जो मैसेजेस आपके, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो चलिए बातें कम करके मैं सीधे ही आपको ले चलता हूँ गीत की तरफ, जैसे कि ये गाना, मेरा दिल ये बता प्यार तूने किया है। चलिए अब आपका दिल क्या कहता है, मेरा दिल क्या कहता है, गीत को सुनने के बाद समझ में आ जाएगा। जी हाँ, जनक जनक पायल बाजे जो 1955 में आई थी फिल्म, उस फिल्म का ये गाना है अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबू का सफर। जी हाँ, मेरा दिल ये बता, ये गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में आपने ये गाना सुना। हसरत जयपुरी साहब का बहुत ही प्यारे कलम वसंत देसाई का संगीत से सजा। जी हाँ, जनक जनक पायल बाजे, ये फिल्म से ये गीत था। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आशा करता हूँ आप सभी आज के इस कार्यक्रम को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और कार्यक्रम के आखिरी मोड पे

लोग पहुंचे हैं। जी हाँ, अब मैं आपको ले चलता हूँ एक राखी के गीत की तरफ। जी हाँ, साहिल लुधियानवी साहब ने इस गीत को लिखा है, आशा भोसले ने गाया है, रवि साहब का संगीत है। काजल इस एल्बम से जो 1965 में रिलीज हुई थी, तो उसका एक गाना जो आप बहुत बार सुन चुके होंगे, और जाते जाते मैं इस गाने को आपके लिए सुनाना चाहूंगा, क्योंकि ये अक्षर एम से शुरू होता है और एक भाई बहन का जो अनूठा प्यार है वो इसमें झलकता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से तो बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान ले। जी हाँ दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलना है, लेकिन बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आप सभी ऐसे जो अच्छे विचार हैं वो अपने जीवन में बनाए रखिए, और इन चीजों को बार बार जो है याद करते हुए अपने जीवन में मोटिवेशन प्राप्त करें। तो चलिए, जाते जाते आपके लिए गाना मेरे भैया मेरे चंदा आप सुनेंगे, और इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात ख्वाबों के सफर में। इसी तरह आपका प्यार बना रहे, दुआओं में याद रखिएगा। सलाम नमस्ते, खमा गनीसा, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: चल मौसम भी है वादा भी है उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है चल मेरे दिल
1: नमस्कार दोस्तों मैं हूं शिवम सरस्वती आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो real मायने में assertiveness होगा, क्योंकि assertiveness inner stability। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: ब्रेक नंतर आपला स्वागत आहे।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, a new way of responding, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: कुछ लोग होते हैं दोस्तों, जो अपने जीवन से न केवल अपने आसपास के लोगों के जीवन में उजाला लाते हैं, लेकिन पूरे देश का नाम पूरे जहान में रोशन कर जाते हैं। ज्योतिर्गमय की फाउंडर टिफनी ब्रार एक ऐसी ही मिसाल है। यशस्वी भारत की एक ऐसी यशस्वी बेटी है, जिन्होंने अपने जीवन से केवल अपने माँ बाप परिजनों का, अपने आसपास के लोगों का ही नहीं, लेकिन समूचे भारत देश का नाम गौरवान्वित किया है। टिफनी जी, दोबारा हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एपिसोड में आपने बताया कि भारत को भारत कौन सी बातें बनाती है। आज आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि भारत को यशस्वी बनने से रोकने वाली बातें कौन सी है, कौन सी वो बातें हैं जिन पे सुधार किया जा सकता है।
3: अनेकता में एकता कहा जाता है हिंदी में, एंड व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंडिया इज दैट हम ऑर्गेनाइज नहीं है, हम डिसेबल फ्रेंडली नहीं है, हम

0: पंक्चुअल नहीं है, हम काफी सारी चीजों में डिसऑर्गेनाइज। जैसे कि अगर आपने मुझसे कहा कि 10 o'clock को इंटरव्यू में आना है, मुझे आना ही है, लेकिन अगर आपने ये इंटरव्यू 10 o'clock के लिए शेड्यूल किया और मैं 11 o'clock को आऊँ, तो आपका एक घंटा जाया हो जाएगा, आपका ये एक घंटा जो है वेस्ट हो जाएगा। आप इतने में कोई और काम कर सकते थे, लेकिन हमारे इंडिया में कोई किसी का वक्त का इम्पोर्टेंस नहीं देता है। अभी मिनिस्टर आ रहे हैं पुणे से, हम सब खड़े होते हैं, मिनिस्टर आ रहे, रोड ब्लॉक्स होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन मिनिस्टर एक घंटे लेट आते हैं। लेकिन और कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। एट द सेम टाइम एक्सेसिबिलिटी के लिए तो हम इतने सारे हम लड़ चुके हैं। हमारे रोड्स में अभी तक होल्स है, अभी तक छोटे छोटे पॉट होल्स है, अभी तक स्टोन्स और स्लैब्स है, अभी तक पीपल आर स्टिल स्पिटिंग ऑन द रोड। अब्रॉड में ऐसा नहीं करते, पीपल आर स्टिल थ्रोइंग देयर लिटर हियर एंड देयर। लेकिन बाहर के कंट्रीज में एनवायरमेंट को भगवान माना जाता है। एक्सेसिबिलिटी होती है कि हम जैसे विकलांग लोग अपने आप चल सके, हम जैसे विकलांग लोग बिना किसी के सहारे रोड क्रॉस कर सके, व्हीलचेयर यूजर्स आसानी से जा सके, लेकिन हमारे इंडियन रोड्स में तो ये हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये बिल्कुल एक ड्रीम है जो भगवान जाने कब सही होगा, कब सफल होगा, ये हमारा पूरा सपना कब होगा कि हमारे पूरे रोड्स बाहर के कंट्रीज के जैसे एक्सेसिबल हो, हमारे पीपल थोड़े डिसेबल फ्रेंडली हो, थोड़े पंचुअल हो, थोड़े ऑर्गेनाइज हो। अभी भी जब हम पुरस्कार लेने गए थे, बहुत सारी चीजें डिसऑर्गेनाइज थी, बहुत सारी चीजें वक्त पे नहीं हुआ, एंड इट्स द प्रेसिडेंट अवार्ड। बहुत सारी चीजें वक्त पे हुआ, लेकिन बहुत सारी चीजें वक्त पे नहीं हुआ, क्योंकि 2 साल का था कोविड के दौरान, दे वर गिविंग द प्राइज आफ्टर 2 ईयर्स, तो देयर वर लॉट ऑफ लैग्स। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा क्यों होता है, क्यों लैग होते हैं? ऑन कंट्रीज के लोग हमें बोलते हैं कि ओके दिस इज इंडिया, दैट्स व्हाई यू पीपल आर बिहाइंड। ये हमें चेंज करना चाहिए, हमारे कंट्री का ये स्टीरियोटाइप हमें बिल्कुल चेंज करना चाहिए।
1: एक्चुअली इसमें मैं यहाँ से 2 बातें लेना चाहूंगा। एक जो आपने बोला ना कि कब चेंज होगा भारत की दशा, या ये जो ड्रॉबैक्स है भारत की, मैं समझता हूँ इसके लिए हम सबको मिल करके ठानना होगा कि जो आपने पहली बात कही कि हमारे देश की संस्कृति क्या कहती है, हमारे देश की संस्कृति कितनी स्ट्रांग है, कितनी पावरफुल है। जब हमें उसका अच्छा एक भान रहेगा कि भाई मैं ऐसे देश को बिलोंग करता हूँ, और मेरे पर्सनल लाइफ से भी मेरे कंट्री का इमेज जो है देश दुनिया में जा रहा है, तब हम इसको चेंज करेंगे। और दूसरा जो आपने बात में इसमें से लेना चाहूंगा कि आपकी इस प्रेरणा से मैं अपने श्रोता साथियों के साथ यही शेयर करना चाहूंगा कि क्यों नहीं हम एक बात आज के डिस्कशन से ले लें कि हम पंक्चुअल हो जाएं, हम समय के पाबंद हो जाएं। जैसे मैं अपने समय को कीमती मानता हूँ, ऐसे सामने वाले का समय भी उसके लिए बहुत कीमती है, और एक दूसरे के समय का अगर हम मान रखेंगे तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। तो टिफनी जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, मतलब कह तो इसको रैपिड फायर कह सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको सवाल पूछूंगा और आपको एक शब्द में या एक जुमले या एक वाक्य में उसका जवाब देना होगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट?
0: या।
1: सो आपके लिए शांति क्या है?
0: मेरे लिए शांति है साइलेंस। शांति मेरे लिए विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, झगड़ा, ऊंची आवाजें, गालियाँ, डिफरेंस इन ओपिनियन भी अगर करना चाहो तो शांति से करिए। तो मेरे लिए शांति है द साउंड ऑफ बर्ड्स, जो ये चिड़िया के वॉइस होते हैं, जो ये हवा का धुन होता है, जो नेचर की आवाज है, विंड चाइम्स, बर्ड्स, विंड, सी ब्रीज, ये सब मेरे लिए शांति।
1: आपका जवाब इतना इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है आप एक बहुत अच्छी पोएट भी बन सकती हैं। Have you tried writing something?
0: I've tried writing short stories, women ke struggles ke upar kai short stories, ek do short stories se likhe hain, lekin maine actually publish nahi kiya, maine aise likhe word document mein save karke rakha hai.
1: Sahi time hai ki hamare shrota aur hum zarur chahenge ki aap kabhi bhi hamare sath apne stories, apne poetry share zarur kare, hame iska bahut intezar rahega. Dusra sawal hai aapke liye, pyar kya hai?
0: प्यार भी ये है कि अंडरस्टैंडिंग समवन अनकंडीशनली, जैसे वो अपने माँ हो, वो अपने भाई हो, वो कोई भी हो, लविंग अनएक्सपेक्टेंटली और अनकंडीशनली। कि जैसे हम किसी से प्यार करें लेकिन हम उनसे कुछ वापस एक्सपेक्ट ना करें। अब जैसे कि अगर मैं आपको 100 रुपए दूं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि ओके ये मेरे शांतनु भैया है, उन्होंने मुझसे 100 रुपए मांगा है तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आप मुझे 10 रुपए इंटरेस्ट दें, या आप मुझे ये 100 रुपए के बजाय 200 रुपए दें, या आप मुझे एक हफ्ते में ये 100 रुपए लौटा दें। दैट इज नॉट लव। या मैं आपके लिए कुछ कर दूं और मैं कुछ एक्सपेक्ट करूं आपसे, तो दैट इज नॉट लव। लव इज व्हेन यू डू समथिंग फॉर समवन अनकंडीशनली। लव इज शोन थ्रू एक्शंस, इट्स नॉट शोन थ्रू ओनली वर्ड्स। लव इज शोन थ्रू द एक्शंस, द वे

0: care for someone, the things you do for someone, the way you hold that someone, the regard, that is love. The way you touch somebody's heart, kisi ke dil ko aap chhu sakte hain apne words se, apne inspiration se, apne empathy se, apne energy se, aap kisi ko chhu sakte hain, unke liye kuch kar sakte hain, unki zindagi mein aap parivartan la sakte hain, that is true love.
1: Bahut sundar. Kartavya kya hai? What is duty?
0: Duty is to do what you can for the society, to do your duty for the society, for the environment, apna environment clean rakhna, apne kaam acche tarike se, imandari se karna, jo bhi aap kaam karte hain, imandari se karna. Abhi jaise ki kaha jata hai ki, Bible mein kaha hai ki apne master aur slave, bas khali master dekhne ke liye, the servant should not just do his work because, just to gain the favor of the master. Khali master ka wo tarif paane ke liye apna kaam na kare, lekin jab aapka master aapko na bhi dekh raha hota, to apna kaam imandari se kare.
1: Matlab kisi ko khush karne ke liye, kisi ko dikhane ke liye nahi karna hai.
0: Dikhane ke liye nahi karna, lekin apne dil se kariyega, imandari se kariyega apna kaam.
1: Apne santushti ke liye. अपनी ईमानदारी से हमें चीज को करनी है. बहुत अच्छा बोला. तब ये है कि जो हमें करना है वो हमें करते रहना ईमानदारी से. इसके बाद के जो चार प्रश्न हैं उसका जवाब मुझे एक शब्द में चाहिए होगा. इज इट वेरी चैलेंजिंग फॉर यू?
0: आई विल ट्राई.
1: आई एम नो यू कैन विन इट. आप बहुत अच्छा जवाब देंगे. तो पहला सवाल, आपका फेवरेट सॉन्ग?
0: आई नो आई डोंट हैव अ फेवरेट सॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है.
1: ओके.
0: बट आई लव म्यूजिक. म्यूजिक बहुत पसंद है मुझे.
1: किस तरीके का म्यूजिक पसंद करते हैं आप?
0: बहुत स्लो म्यूजिक, ऐसे ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है मुझे. लता मंगेशकर टाइप गाने बहुत पसंद है. एंड बहुत सारे मीनिंगफुल सॉन्ग्स पसंद है मुझे. हर लैंग्वेज के सॉन्ग्स, तमिल, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, मराठी, सब सॉन्ग्स, सब लैंग्वेजेस के अपने. एंड इंस्ट्रूमेंट्स बहुत पसंद है मुझे, जैसे फ्लूट, जैसे सितार, हारमोनियम, इंडियन जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तबला, क्लासिकल, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वायलिन, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है मुझे.
1: और अगर एक कोई कहानी आपके बचपन में जो आपने सुनी हो, पंचतंत्र में या कोई भी फोकलोर हो, या कोई भी ऐसी कहानी जो बचपन में आपने सुनी हो और जो आपको बहुत इंस्पायर करती हो, कौन सी है वो कहानी?
0: आई वुड से इट्स पंचतंत्र की तो कहानी नहीं है, लेकिन एक कहानी को मैंने सुनी, वो सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है, द गूस एंड द गोल्डन एग. वो कहानी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है कि यू नो ग्रीडी नहीं बनना चाहिए हमें, क्योंकि वो गोल्डन एग्स के लिए वो इतने ये करते हैं, लाइक दे, आई मीन दे किल दैट बर्ड हु लेज द गोल्डन एग्स. कि वो लोग सोचते हैं कि अच्छा अभी ये बर्ड को किल करने से ये गोल्ड पूरा उसके बदन से हम निकाल सकते हैं. सो दैट इज ओवर ग्रीड, आई मीन दैट इज ओवर एक्सपेक्टेशन. लेकिन अगर वो बर्ड को किल ना करके उस बर्ड को अच्छे से पालन पोषण करते तो उनको डेली वो गोल्डन एग मिलता ही रहता. लेकिन गॉड ने यू नो बिकॉज दे किल दैट बर्ड, जब वो देख रहे थे कि गोल्ड है कि नहीं बर्ड के अंदर, तो द बर्ड वॉज एन ऑर्डनरी बर्ड जस्ट लाइक एवरी अदर बर्ड. सो यू नो,
1: तो आई थिंक लोग जो है वो हमारे धैर्य और हमारे कुछ खा जाता है, और उसके बाद हमारे पास जो रह जाता है वो है सिर्फ पछतावा. सो दैट वाज वेरी वेरी गुड स्टोरी यू ब्रॉट अस बैक. आखिरी दो सवाल एक एक शब्द में, भारत क्या है?
0: ये तो आपने पहले भी पूछ चुके हैं मुझसे. तो अकॉर्डिंग टू मी एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, इंडिया इज अ कंट्री विद अ वास्ट कल्चरल हेरिटेज, यही कहना चाहूंगी. हमारा बड़ा संस्कार, अनेकता में एकता.
1: तो एक शब्द में अगर उसको कहना हो तो अनेकता में एकता. या टिप्पणी क्या है या टिप्पणी कौन है, एक शब्द में या एक फ्रेज में?
0: आई डोंट थिंक आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन, मुझे पता नहीं है. वो तो आई मीन मैं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जिसको भगवान ने लेके आया है. ही ब्रॉट मी फॉर अ पर्पस एंड आई होप आई कैन फुलफिल दैट पर्पस एंड गो बैक टू गॉड.
1: तो इस सवाल का जवाब हम और हमारे श्रोता आपको देते हैं. टिफनी प्रेरणा है. सो यू आर एन इंस्पिरेशन एंड आपसे कई लोग सीख रहे हैं, आपसे कई लोग बल पा रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू आर एंड व्हाट यू डू. आप जो हैं, आप जो कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं.
0: थैंक यू सो मच.
1: एंड मैं को एक मौका देना चाहूंगा कि आप अपने श्रोता साथियों को एक मैसेज दे सकते हैं, ज्योतिर्गमय के बारे में बता सकते हैं, हाउ दे कैन कनेक्ट विद यू. यू आर फ्री टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन विद देम.
0: सो आप ज्योतिर्गमय के सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं. ज्योतिर्गमय का फेसबुक पेज है, वेबसाइट है ज्योतिर्गमय इंडिया.org. और अगर आप लोगों को किसी को मुझसे

0: पर्सनली कनेक्ट करना हो तो आप ब्रह्म कुमारी के लोगों के द्वारा हमें कनेक्ट कर सकते हैं शंकरप्रिया के द्वारा. आई मीन यू विल बी हैप्पी टू पास ऑन माय डिटेल्स. और मेरी ईमेल आईडी tiffanybrar@gmail.com है. किसी को ऑर्गेनाइजेशन या मुझे भी आप किसी तरह से भी सपोर्ट करना चाहेंगे तो आप सपोर्ट कर सकते हो, नॉट ओनली विद मनी बट विद वर्ड्स, विद गुड वर्ड्स, विद एनकरेजमेंट, विद लव.
1: थैंक यू सो मच Tiffany जी. मतलब आज का ये दिन हम सभी साथियों के लिए, जो भी यहाँ सुन रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत खास है क्योंकि आज हम सबके साथ हैं. तो आपको बहुत बहुत थैंक्स दोबारा, और ऐसे ही हेल्दी, हैप्पी और एक्टिव रहिएगा, और आप अपने साथियों को इसी प्रकार से मोटिवेट करते रहिएगा. तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके साथ दोबारा फिर मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.
0: गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.
1: तो साथियों, आज के इस एपिसोड में Tiffany जी ने भारत का जो आयाम हमारे सामने रखा वो था कि भारत अर्थात विविधता. एक गुलदस्ते को जब हम देखते हैं तो उसमें कई रंग होते हैं, कई खुशबू होते हैं, और वो गुलदस्ता हमारा देश है जहाँ मैं, आप, हम सब अलग अलग रंग बिखेर रहे हैं, अलग अलग खुशबू बिखेर रहे हैं. तो अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी. जुड़े रहिएगा हमारे साथ सुनने के लिए 90.4 FM रेडियो मधुबन से मैं RJ शांतनु आपका शुक्रिया अदा करता हूँ.
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन.
3: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है. एक, आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है. सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में. है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है. थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, I'll start working on it today. And अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ. आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर. तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है. आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए.
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हेलो पुराना स्तंभ जी।
1: हेलो मनु।
0: आज तो मैं बहुत अच्छी शायरी सुनकर आ रही हूँ।
1: अच्छा, किसी मुशायरे में गई थी क्या?
0: अरे नहीं नहीं, हम ना आज एक ओल्ड एज होम गए थे।
1: अच्छा,
0: वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं हमारे कॉलेज वाले। हम जब वहाँ गए तो कुछ लोगों से बातचीत हुई मेरी। वहाँ मुझे एक दादाजी मिले। उनसे बात करते हुए पता चला कि वो अपने जमाने के शायर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: मगर एक बात है पुराना स्तंभ जी।
1: क्या बात है मनु?
0: उनके चेहरे की उदासी मेरे नजरों के आगे से जा ही नहीं रही। उनके बेटे ने उन्हें ओल्ड एज होम लाकर छोड़ दिया है। पूरी उम्र

0: जो व्यक्ति सर ऊंचा करके जिया हो, वो आज ऐसी जिंदगी जी रहा है जैसे मान लो उसने अपनी जिंदगी से हार ही मान ली हो।
1: हाँ, आजकल की यंग जनरेशन प्यार के गीत तो गाती है, परंतु माँ बाप के सच्चे प्यार को ही अनदेखा कर देती है। माता पिता की दुआओं के बिना जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सुख शांति नहीं मिल सकती। और ये कैसे भूल जाते हैं कि एक दिन उनका भी बुढ़ापा आना है और उनके बच्चे भी उनके साथ यही कर सकते हैं।
0: हाँ पुराना स्तंभ जी, वो माँ जो अपने बच्चे के लिए रात रात जागती है, और वो पिता जो अपनी सारी चाहतें छोड़कर अपने बच्चे की छोटी से छोटी इच्छा पूरी करता है, उनको बेसहारा छोड़ देते हैं। बाद में कितना भी पश्चाताप हो, पर तब वो माँ बाप लौट कर नहीं आएंगे।
1: मनु, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। इस मामले में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है।
0: पुराना स्तंभ जी, मैं दादाजी से भी मिलती रहूंगी। अच्छा, आप मुझे अगली कहानी आज किसकी सुनाने वाले हैं?
1: आज मैं तुम्हें राजगुरु के बारे में बताता हूँ।
0: ओह हाँ, उनके बारे में जानने के लिए तो मैं कब से आतुर हूँ, सुनाइए ना उनकी कहानी।
1: ठीक है, तो सुनो। शिव राम हरि राजगुरु, इनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे के खेड़ नामक गांव में हुआ था।
0: अच्छा।
1: भारत के प्रसिद्ध वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। ये सरदार भगत सिंह और सुखदेव के बड़े घनिष्ठ मित्र थे। इस मित्रता को राजगुरु ने मृत्यु तक निभाया। देश की आजादी के लिए दी गई राजगुरु की शहादत ने इनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा दिया।
0: बिल्कुल।
1: राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव की शहादत आज भी भारत के युवकों को प्रेरणा प्रदान करती है। उनके पिता का नाम श्री हरि नारायण और माता का नाम पार्वती बाई था। राजगुरु के पिता का निधन उनके बाल्यकाल में ही हो गया था। और इनका पालन पोषण इनकी माता और बड़े भाई ने किया।
0: अच्छा।
1: राजगुरु बचपन से ही बड़े वीर, साहसी और मस्त मौला थे। भारत माँ से प्रेम तो बचपन ही से था। इस वजह से अंग्रेजों से घृणा उनके लिए स्वाभाविक ही थी। वे बचपन से ही वीर शिवाजी और लोकमान्य तिलक के बहुत बड़े भक्त थे।
0: अच्छा।
1: संकट मोल लेने में भी उनका कोई जवाब नहीं था मनु, किंतु वे कभी कभी लापरवाही भी कर जाते थे।
0: कैसे?
1: राजगुरु का पढ़ाई में तो मन था नहीं, इसलिए इनको अपने बड़े भाई और भाभी का तिरस्कार सहन करना पड़ता था। माँ बेचारी कुछ बोल न पाती थी। जब राजगुरु तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए, तब वे अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए घर छोड़कर चले गए। फिर सोचा कि अब जबकि घर के बंधनों से स्वाधीन हूँ, तो भारत माता की बेड़ियां काटने में अब कोई दुविधा नहीं। वे कई दिनों तक अलग अलग क्रांतिकारियों से भेंट करते रहे। आखिर में उनकी क्रांति की नौका को चंद्रशेखर आजाद ने पार लगाया। राजगुरु हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के सदस्य बन गए।
0: अच्छा।
1: चंद्रशेखर आजाद इस जोशीले नवयुवक से बहुत प्रभावित हुए और बड़े चाव से इन्हें निशानेबाजी की शिक्षा देने लगे। शीघ्र ही राजगुरु आजाद जैसे ही कुशल निशानेबाज बन गए। कभी कभी चंद्रशेखर आजाद इनको लापरवाही करने पर डांट देते थे, किंतु ये सदा आजाद को बड़ा भाई समझकर कभी बुरा नहीं मानते थे। राजगुरु का निशाना कभी नहीं चूकता था। बाद में दल में इनकी भेंट भगत सिंह और सुखदेव से हुई। राजगुरु इन दोनों से बड़े प्रभावित हुए। भगत सिंह और सुखदेव ये दोनों राजगुरु को अपना सबसे अच्छा साथी मानते थे। दल ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के जिम्मेदार अंग्रेज अफसर स्कॉट का वध करने की योजना बनाई और इस काम के लिए राजगुरु और भगत सिंह को चुना गया। राजगुरु तो अंग्रेजों को सबक सिखाने का अवसर ढूंढ ही रहे थे। अब वह सुअवसर उन्हें मिल गया।
0: फिर क्या हुआ?
1: 19 दिसंबर 1928 को राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव के कुशल मार्गदर्शन के फलस्वरूप जेपी सैंडर्स नाम के एक अन्य अंग्रेज अफसर, जिसने स्कॉट के कहने पर लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाई थी, उसका वध कर दिया। कार्यवाही के पश्चात भगत सिंह अंग्रेजी साहब बनकर, राजगुरु उनके सेवक बनकर और चंद्रशेखर आजाद सुरक्षित पुलिस की दृष्टि से बचकर निकल भागे।
0: अच्छा।
1: भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के असेंबली में बम फोड़ने और स्वयं को गिरफ्तार करवाने के पश्चात चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सुखदेव सहित दल के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। केवल राजगुरु ही इससे बचे रहे।
0: अच्छा।
1: आजाद के कहने पर पुलिस से बचने के लिए राजगुरु कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र चले, किंतु लापरवाही के कारण राजगुरु भी छुटपुट संघर्ष के बाद पकड़ लिए गए।
0: क्या बात है, राजगुरु तो मानो एक नाम नहीं बल्कि खुद में प्रेरणा है, देश प्रेम की मिसाल है।
1: हाँ, उस वक्त का भारत आजादी के इन परवानों के रंग से ज्वलंत हो उठा था। वो वक्त याद करता हूँ तो लगता है कि जैसे वीरता की कहानी लिखी जा रही हो।
0: अब तो मैं आगे की कहानी भी जल्द से जल्द सुनना चाहती हूँ, लेकिन पहले दादाजी के पास भी तो जाना है, उनको नई कविता की बुक देकर आनी है, वो बहुत खुश हो जाएंगे।
1: हाँ, जरूर जाओ।
0: थैंक यू पुराना स्तंभ जी, बाय बाय।
1: बाय बाय मनु।

0: अहो ऐकलंस का?
1: हो आमचा हरणीय पुणेरी, हो आमचा हरणीय पुणेरी.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग। ऑटोमेटिक

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड।

0: हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस. सो नाउ इट्स योर चॉइस. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
2: आला आला आला
3: अहो काय आला.

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद रमा कुमारी, इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। जब हैप्पीनेस के इंडेक्स को हम देखते हैं तो आज भी हमें लगता है कि इंडेक्स जो है वो अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है। हमारी मंजिल क्या है, क्या हम उसे स्टेबिलिटी पर ला सकते हैं, एक इस लेवल पर ला सकते हैं अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को? कोशिश यही कर रहे हैं इस पूरी श्रृंखला में। सबसे बड़ी बात, हमारा जो पहला प्रयास है वो ये कि कम से कम इसको देख तो पाएं कि दिन भर में हम जो है ऊपर नीचे अपने इमोशंस के साथ होते हैं, खासकर हैप्पीनेस के साथ होते हैं। मंजिल तक पहुंचते जाएंगे जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे। आज भी कुछ और बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है जो मुझे टेक ओवर कर जाता है और फिर मेरी अपनी हैप्पीनेस जो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं वो नहीं क्रिएट कर पाता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: शिवानी। सिचुएशन जब थी, हमारी ये आदत कैसे बनी कि सिचुएशन ने हमें टेक ओवर किया? आई होप आई एम राइट, बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि सिचुएशन आई, हम पहले डिटैच रहते हैं, उसके बाद हम जजमेंटल होना शुरू होते हैं लोगों के प्रति या अपने प्रति भी, और उसके बाद हमारी सारी इमोशंस जो है वो पूरी सिचुएशन टेक ओवर कर जाती है। व्हाट टू डू नाउ?
1: वन इज तो इसको वॉच करना ही शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और प्रैक्टिस करें कि जैसे एक ड्रामा देखते हैं या एक मूवी देखते हैं तो हम ऑडियंस में बैठते हैं ना, ऑडियंस से बैठकर वहां देखते हैं कि स्टेज पर क्या हो रहा है। इस तरह से जीवन की यात्रा में भी चलते हुए ऑडियंस भी बनते जाएं बीच बीच में, यू नो इट इज अ लिटिल वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ दैट। लेकिन होता क्या है कि हम स्टेज पर भी हैं सो हम एक्टर भी हैं, लेकिन एक्टर के साथ साथ हमें क्या बनना,
0: व्यूअर,
1: ऑडियंस भी बनना है। क्यों ऑडियंस बनना है? कि ऑडियंस बनने से हम डिटैच्ड होते हैं, यू नो आई एम एन ऑडियंस, ये सब ड्रामा चल रहा है, ऑल द एक्टर्स आर प्लेइंग द रोल। तो डिटैच होकर उनको देखें, जजमेंटल होकर नहीं। जैसे ही जजमेंटल हो गए तो हम उनके रोल के अंदर उनके साथ,
0: एज एन ऑडियंस ऑल्सो आई वॉज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द होल थिंग
1: एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। साक्षी होकर हरेक के रोल को देखते जाए। जैसे ही आप साक्षी होकर हरेक के रोल को देखेंगे आपका माइंड कैसे होता जाएगा, इट विल बिकम स्टिल, उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। और साक्षी होकर दूसरों के रोल को देखते हुए फिर जब अपना रोल प्ले करेंगे तो वो रोल कैसे होगा, यू नो देन आई विल बी अ क्रिएटिव एक्टर। कि मैं जो अपना रोल प्ले कर रही हूँ क्योंकि मेरा माइंड स्टिल है, स्टेबल है, तो क्रिएटिव है। एक डिस्टर्ब्ड माइंड क्रिएटिव नहीं हो सकता। अभी जब हम ऑटोमेटिक मोड में चल रहे थे तब ये था आपने जो कहा या जो किया वो मेरे ऊपर इफेक्ट आया, तो मेरी अपनी क्रिएटिविटी
0: कुछ भी नहीं,
1: उसमें कुछ भी नहीं थी। डिड आई हैव द पावर टू से टू माई सेल्फ कि इरिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने जो बोला है आई कैन रिमेन स्टेबल? नो।

0: नहीं ये तो नेचुरल है, उन्होंने बोला तो मुझे बुरा लगेगा। तो मतलब मेरे पास पावर नहीं थी कि मैं अपने रोल को कैसे प्ले करने वाली हूँ। मेरा रोल डिपेंडेंट था
1: उनके कहने,
0: आपके रोल पर, कि आप अपना रोल कैसे प्ले करेंगे। उस हिसाब से मेरा रोल तो अपने आप ही बनता ही जा रहा था। अब अगर अपने सारा दिन को देखें कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या हम क्रिएटिवली उस रोल को प्ले कर रहे हैं या हमारा रोल अपने आप ही बनता जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू पीपल। तो वो क्यों? क्योंकि हम हर एक के रोल में इतना घुसे हुए हैं और उनके रोल पर इतने जजमेंटल हो रहे हैं कि उस टाइम पर हम अपने रोल को क्रिएट करना भूल जाते हैं।
1: जब हम फिल्म ही नहीं देख पा रहे, जब हम ड्रामा ही नहीं देख पा रहे वो जज यू नो एक व्यूअर के रूप में, एक साक्षी भाव से, तो हम अपने जीवन में तो
0: आज सारा दिन अगर एक बार ट्राई करें, सिर्फ एक दिन, क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम किसी के भी रोल को, क्या कहें, किसी को भी जज नहीं करते आज एक दिन। एक दिन नहीं करते,
1: अच्छा है वो, गंदा है वो, एक्टिंग कर रहा है,
0: कुछ भी नहीं, या उनको ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं, एक दिन नहीं करते। हमें करना है या नहीं करना है, लेकिन ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन डे। अच्छा, इवन इफ वन डे इज टू मच फॉर यू, जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन आवर। आपको एक दिन ज्यादा भारी लग रहा था क्या?
1: क्योंकि हमें पता था कि पूरे दिन में हमने बहुत सारे लोग ऐसे आने हैं, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आनी है जो हम भूल जाएंगे।
0: तो एक घंटा इज पॉसिबल ना, तो एक घंटा ये करके देखना कि यू नो जस्ट ट्राई टू क्रॉस दैट वन आवर विदाउट गोइंग हर एक के बारे में, हर एक के बारे में, हर एक सिचुएशन के बारे में, एंड जस्ट एट द एंड ऑफ दैट वन आवर जस्ट सी हाउ यू फील। आप कैसा फील करते हैं वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हो रहा है वो ये कि हर एक के रोल के अंदर आई गेट सक्ड, यू नो, आई गेट सक्ड इनटू योर रोल। यू शुड बी लाइक दिस, यू शुड नॉट बी लाइक दिस, यू शुड स्पीक लाइक दिस, यू शुड बिहेव लाइक दिस। आई कुड बी सेइंग दिस बट इवन इफ आई एम नॉट सेइंग, आई एम थिंकिंग लाइक दिस, यू नो। बहुत सारी जजमेंट्स हम बोल नहीं रहे,
1: एक्चुअली
0: सोच तो सारा
1: मेरे दिमाग में तो यही बात आ रही थी कि अभी एक घंटा जो हम देंगे उसमें अगर कोई सिचुएशन नहीं आई तब तक तो मैं ठीक ही रहूंगा, लेकिन उस एक घंटे में मैं सोचता भी तो बहुत कुछ।
0: बात सोचने की हो रही है, जजमेंटल इज नॉट अपने शब्दों में, जजमेंटल है यहाँ सोचने में। तो एक घंटा अगर ट्राई करें कि जो है जैसा है everyone is okay, एक घंटा I am not going to judge, तो उसमें आपको एक घंटे के एंड में पता चलेगा आपकी बहुत सारी एनर्जी जो ऐसे ही ऐसे suck, you know, everyone is, we would say that everyone is sucking my energy like this. So it's not everyone sucking, I am giving my energy
1: out
0: to everyone. Yeah, I'm giving it out. And after giving it out, I feel empty. यहाँ खाली हो जाते हैं। और जब judgmental हो रहे हैं तो quality of thoughts positive भी नहीं है ज्यादा, it's more of हर एक की कमियां कमजोरियां बहुत ज्यादा हम देखते हैं। तो ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, एक एक की वीकनेस देखते देखते यहाँ हालत क्या हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे। तो अगर हम जो ये साक्षी भाव टीवी के सामने नहीं कर पा रहे, इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं कि एक घंटा लेट मी जस्ट बी डिटैच्ड, नो वन एंड नो सिचुएशन विल अफेक्ट मी फॉर वन आवर, तो हमें पता चलेगा कि डिटैच्ड होने से कितना अंदर पावर भरती है। फिर जो सेकेंड स्टेज हम वॉच कर सकते हैं, जब मैंने आपको देखना बंद कर दिया तो मैं अपने को देखना शुरू कर देती हूँ। मैं यहाँ आई इवैल्यूएट कि यहाँ क्या हो रहा है। आप जो लास्ट टाइम कह रहे थे ना कि अपने थॉट्स नहीं, हम आई कैन नॉट सी माय थॉट्स, व्हाई कैन नॉट आई सी माई थॉट्स,
1: सो मच आउट।
0: सी एट वन टाइम मेरा ध्यान एक ही पर जा सकता है, तो एक सेकेंड अगर वो एक सेकेंड मैं आपके बारे में सोच रही हूँ तो मैं अपनी तरफ ध्यान नहीं देती। तो जब बहुत ज्यादा और चीजों के बारे में हम सोचते हैं तो ये अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता। थोड़ी देर के लिए यहाँ देखना शुरू करें,
1: एक घंटा, जस्ट वन आवर हम अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सिचुएशन के बारे में भी तो सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से
0: फिर सोचेंगे क्या हो जाएगा। एक घंटा सोचेंगे
1: क्या होगा, फिर हम ना सिचुएशन रहे ना लोग रहे ना, फिर अब क्या होगा।
0: इट्स नॉट सिचुएशन के बारे में या लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, जजमेंटल नहीं होंगे
1: कि अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती तो अच्छा होता,
0: ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा। सी, वो ये भी हमें पता नहीं है कि हम कितने जजमेंटल हैं, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है। जब देखना शुरू करेंगे ना तब पता चलेगा, अच्छा अच्छा, आई क्रिएट दीज काइंड ऑफ थॉट्स अबाउट एवरीवन, राइट नाउ वी नॉट इवन अवेयर के व्हाट क्वालिटी ऑफ थॉट्स आई क्रिएट फॉर एवरीवन। सो वन डे इट्स नॉट दैट आई स्टॉप थिंकिंग, सी नो वन शुड डू इट अननेचुरली, मैंने कुछ नहीं सोचा।

0: वो तो खैर है ही गलत, हमारी जिंदगी में हमारे ही बच्चे ने ये करना था,
1: तो फिर वो मेरी पेरेंटिंग स्किल पर भी तो क्वेश्चन मार्क उठ जाता है ना। तो ये जब हम एनर्जी, पहली बात जो भी कुछ ऐसा कोई स्टिमुलेंट ले रहा है उसके जीवन में कुछ थोड़ा सा तो वैक्यूम है, यू नो समवेयर सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी लो है एंड ये स्टिमुलेंट्स मुझे उसको भरने में मदद करते हैं। लेकिन अब वो लो सेल्फ एस्टीम के साथ, वो कोई हर्ट के साथ, दर्द के साथ मैंने वो लेना शुरू किया, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड एम्पावरिंग मी हाउ टू कम आउट ऑफ माय पेन, सबसे मुझे क्या मिला? आप बुरे हो, आप गलत हो, आप ये रिजेक्शन मिला। मैंने एक्चुअली वो लेना इसलिए शुरू किया होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो रिजेक्शन की एनर्जी या हर्ट की एनर्जी थी। अब एक्चुअली वो छोड़ने के लिए मुझे चाहिए होगा कि वो भरा जाए, वो जो मेरे अंदर का वैक्यूम है वो भरा जाए। लेकिन हमारी इंटेंशन बहुत राइट होती है, हम चाहते हैं कि वो बच जाए उन चीजों से, लेकिन हम उसके रूट को नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ये ले रहा है, ये इसकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, तो हम उसको रोज कहते हैं ये गलत है, ये छोड़ दो। हम ये नहीं समझते ये क्यों ले रहा है, और वो जो रीजन जिसके कारण ये ले रहा है वो तो इससे भी ज्यादा बुरा है। अगर मेरे अंदर कोई दर्द है, वो दर्द तो इस स्मोकिंग से या अल्कोहल से भी ज्यादा बुरा है। ये स्मोकिंग और अल्कोहल मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, ओके, लेकिन वो जो दर्द मैंने पकड़ के रखा है, रिजेंटमेंट, वो मेरे लिए कितना हानिकारक है। तो आई जस्ट नीड टू गो वन स्टेप बिहाइंड। जेन्युइन लव है ना, कंसर्न है, तो क्या करे, एक स्टेप पीछे जाए। ये स्टिम्युलेंट्स छूट जाएंगे अपने आप, लेट इट बी राइट नाउ फॉर सम टाइम। एक स्टेप पीछे जाकर ये क्यों ले रहे हैं, वैक्यूम है, तो इंस्टेड ऑफ उनको ये एनर्जी भेजे कि आप गलत हो, इफ यू कैन सेंड देम दैट एनर्जी ऑफ लव, ऑफ रिस्पेक्ट। हम कहते हैं लेकिन प्यार तो हम बहुत करते हैं ना, प्यार में हम बार बार ये नहीं कह सकते आप बुरे हो, आप गलत हो, ये पाप है, ये दूसरे को डिस एम्पावर करता है। आप उस बात को साइड रखो कि वो क्या ले रहे हैं, आप इग्नोर कर दो, इवन इग्नोर कर दो आप उसको थोड़े दिन के लिए, आप सिर्फ उसके वो दर्द को भरो, जस्ट बाय गिविंग जेन्युइन रिस्पेक्ट, नॉट बाय सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलकर, अंदर से वो भर जाएगा ना, वो स्टिम्युलेंट तो ऐसे छूट जाएगा। और अगर वो भरेगा नहीं, आप रोज लड़ते रहो उस बात के लिए कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो,
0: उससे भी पहले अपने आप को तो भरे। क्योंकि हमने इतना दर्द क्रिएट किया है इस पूरे थॉट से कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ये कर रही है, या मेरा हस्बैंड ये कर रहा है, एंड वी जस्ट गो इनटू सो मच ऑफ अ डीप। यस,
1: सो वन नाउ अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जजमेंट, अगर कोई मेरे आसपास ऐसा कुछ कर रहा है,
0: तो आई एम नॉट बैड,
1: नॉट टू बी जजमेंटल अबाउट इट। आप जजमेंटल नहीं होते ना जैसे, तो सामने वाले को आपसे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, और जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, भले आप बोलेंगे कुछ नहीं, आप ऊपर से बात अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी
0: उन्हें पता होता है, यू नो, सो मेनी टाइम्स दे से दैट आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग,
1: एग्जैक्टली, सो दैट एनर्जी रीचेस। तो एक दिन के लिए ये ट्राई करना कि औरों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना, फिर अपने थॉट्स को देखना शुरू करना, अपनी फीलिंग्स को, धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि ये जो थॉट्स भी हो रहे हैं ना, ये क्रिएट किए जा रहे हैं। आई एम क्रिएटिंग दीज थॉट्स, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस थॉट्स, आई एम नॉट इवन द थॉट, आई एम नॉट दिस रोल, आई एम नॉट दिस, यू नो, द बॉडी, बट आई एम नॉट इवन द थॉट, दैट ऑल्सो आई एम क्रिएटिंग, आई क्रिएट दैट थॉट। जैसे ही आप उस लेवल पर आते हैं कि आई क्रिएट दिस थॉट, आई क्रिएट दिस फीलिंग, आप थॉट से भी डिटैच हो सकते हैं। आप क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला
0: ये थॉट मैंने क्रिएट कर दिया,
1: तो मतलब मैं कोई और हूँ ना, जैसे मैंने कहा ये मैंने क्रिएट किया, तो मैं कोई और हूँ। एंड ये स्थिति में जब आप पहुंचते, तो दिस इज स्टिलनेस, जो हम कई बार बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस वॉट इज दैट स्टिलनेस, वॉट इज साइलेंस। तो साइलेंस है, एक तो यहां से साइलेंस, और एक है यहाँ साइलेंस। तो यहाँ साइलेंस मतलब ये नहीं कि हम सोचना बंद कर देंगे। कई बार भाई बहने मेडिटेशन मीन्स ट्राई करते हैं हम थॉट से नहीं क्रिएट करें, नॉट रियली पॉसिबल, लेकिन सिर्फ साक्षी होकर देखें कि ये भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे ही वो देखेंगे ना, उसकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाएगी, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट इनर स्टेबिलिटी, दैट साइलेंस, दैट पीस। ये एक्सपीरियंस करना है। क्या होता है, नॉर्मल में, नॉर्मल एक्टिविटी में वी आर क्रिएटिंग अबाउट 25 टू 30 थॉट्स पर मिनट। दिस इज मेडिकली बीन कैलकुलेटेड। ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो मशीन होती है, उस पर ये वेव्स आते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन बिहाइंड दैट। 25 टू 30 थॉट्स
0: पर मिनट,
1: पर मिनट नॉर्मल स्टेट में। इसको हम कहते हैं बीटा स्टेज ऑफ द माइंड के नॉर्मल स्टेट।

0: एक्ट ऑफ द माइंड में, और अगर हम माइंड के वेरियस स्टेजेस को देखें सारा दिन, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल कम टू सारा दिन में 40,000 to 50,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं. दिस इज माई प्रोडक्शन. ये जैसे एक कंपनी है और उसकी ये प्रोडक्शन है 40,000 थॉट्स अ डे. क्वालिटी
1: इट्स ऑल वेस्ट एक्चुअली. मैक्सिमम टाइम्स यू नो,
0: तो उसमें कई थॉट्स बहुत पावरफुल पॉजिटिव होते, कई नेगेटिव होते हैं, गुस्सा रिजेंटमेंट चिंता, कई नेसेसरी होते हैं कि ये करना है आज ये जान, और बहुत सारे वेस्ट होते हैं. वेस्ट मतलब बहुत ज्यादा जो बीत गया, या बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचना जो अभी हुआ ही नहीं, तो उसमें कोई पावर नहीं है क्योंकि इट इज नॉट इन माई कंट्रोल, नीदर द पास्ट नॉर द फ्यूचर. तो इतनी सारी हमारी थॉट्स की स्पीड है. आर वी एवर अवेयर कि हम एक मिनट में 25 to 30 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं? तो इसलिए बहुत फास्ट है. तो जब हम मेडिटेशन में बैठते तो ये धीरे धीरे स्लो होता. मेडिटेशन भी नहीं, अगर आप सिर्फ इसको वॉच करना शुरू कर दो, ये स्लो डाउन हो जाएगा. यू विल गेट टू सी द स्पीड. और तब अगर इसको हम थोड़ा सा भी स्लो करते तो हमें लगता है ये तो हमने सोचना ही बंद कर दिया. तो सोचना बंद नहीं किया, लेकिन सोचने की स्पीड को बहुत स्लो कर दिया है. तो हैप्पीनेस मीन्स व्हेन माय थॉट्स डोंट गो लाइक दिस बट दे आर एब्सोल्युटली स्टेबल. एक कंटेंटमेंट, एक इनर पीस. हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं कि संतुष्टता क्या है, सेटिस्फेक्शन क्या है, पीस क्या है. इट्स ऑल दिस फीलिंग वेयर यू आर इनसाइड एक्चुअली जस्ट कम्फर्टेबल. जब भी ऐसे ऐसे कुछ भी होता है वो कम्फर्टेबल नहीं होता, लेकिन आप बिल्कुल स्टेबल है, कंटेंटेड है. दिस इज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज नॉट एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट इज डिफरेंट. हमने आइसक्रीम खाया आज, कहते आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर, दैट्स नॉट हैप्पीनेस. वो तो एक सेंसेशन है. एक सेंसेशन थी टेस्ट बड के द्वारा मुझे मिली, एंड दैट इज यू नो गिविंग मी दैट सेंसेशन. आई से दिस इज हैप्पीनेस. सपोज लेट्स से कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा, लेकिन आज कुछ हुआ तो वो ठीक हो गया. से आई एम वेरी हैप्पी, यू नो माई, दिस इज नॉट हैप्पीनेस. वो दर्द था, आई हैव गॉट रिलीव्ड फ्रॉम माई पेन, सो इट्स अ रिलीफ. देन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड. लेकिन हम इन सारी चीजों को नाम क्या दे देते हैं? हैप्पीनेस. और इस प्रोसेस में हैप्पीनेस एक्चुअली क्या है वो भूल जाती है.
1: तो वो जो सारी चीजें अगर हमें नहीं मिल रही हैं तो हम फिर वी से दैट वी आर नॉट गेटिंग हैप्पी.
0: या दैट्स व्हाई. एंड देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर इट आउटसाइड. तो हैप्पीनेस चाहिए नहीं एक्चुअली. कुछ भी नहीं करना है खुश रहने के लिए. खुश हम ऑलरेडी हैं. सी इट्स अ डिफरेंट थिंग. एक है कि यहाँ यू नो इट्स लाइक अ ग्लास. आई एम गोइंग थ्रू लाइफ टूडे विद द फोकस कि ये जो मेरा ग्लास है ना ये खाली है, प्लीज इसको भरो. कुछ ना कुछ ऐसा होता जाए जिससे ये भरता जाए. जस्ट चेंज द फोकस वन डे कि ये ग्लास ऑलरेडी भरा हुआ है. अब सिर्फ सारा दिन क्या करना,
1: इसको बाहर नहीं जाने देना,
0: संभाल के चलना है कि हर छोटी छोटी बात में ये स्पिल ऑफ नहीं कर जाए. क्योंकि ये इतना जल्दी स्पिल ऑफ करते जाते हैं सारा दिन में, फिर एट द एंड ऑफ द डे वी फाइंड आवरसेल्व्स वेरी एम्प्टी, वेरी डिप्लीटेड.
1: दिस बिकम्स वेरी बोरिंग.
0: अगेन अगर आपने एक्साइटमेंट को अपनी हैप्पीनेस के साथ रिलेट कर दिया,
1: तो जब वो नहीं होगी तो आप.
0: और एक्साइटमेंट भी बहुत हेल्दी नहीं है एक्चुअली माइंड के लिए. एंड जैसे फियर है तो वो लो स्टेट है, एक्साइटमेंट उसका अदर ऑपोजिट है. तो ये दोनों चीजें स्टेबिलिटी नहीं है. और फिर हम दोनों
1: एक्चुअली हम दोनों में वी से दैट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, यू नो
0: इट गिव्स अ वेरी
1: पिट ऑफ माय स्टमक. ऐसे कुछ फील होता है, चाहे डर लग रहा है चाहे बहुत खुशी हो रही हो.
0: इन दोनों चीजों में आपको अपनी फिजियोलॉजी पर इम्पैक्ट दिखाई देगा
1: शरीर पर.
0: यहाँ नॉर्मल नहीं रहता है आपकी हार्ट. एक्साइटमेंट में आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है नहीं, डर में भी आपकी हार्ट बीट नॉर्मल, आपकी पल्स रेट नॉर्मल, एनीथिंग दैट्स नॉट नॉर्मल. Now we know this is what is abnormal, but we thought ये normal है. See, मन पर तो शायद हमें अभी नहीं पता चले कि कितना impact पड़ रहा. Physiology पर तो दिखाई दे रहा ना. तुरंत you will find your heart beating so fast. How's that normal? The happiness is that stability. तो अब क्या होगा, situation specific नहीं है. अब चाहे कुछ भी हो जाए सारा दिन मेरे आसपास, मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे अपनी stability को नहीं खोना है. इट डजेंट मीन मैं कुछ नहीं करूं, मैं कुछ नहीं कहूं किसी को. बच्चे ने कुछ गलत किया, मैं कहूं या नहीं कहूं? कहें, लेकिन दो चॉइसेस हैं. या तो गुस्सा होकर कहें, डिस्टर्ब होकर कहें, या फिर स्टेबल रहकर करें. वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? वी थॉट रिएक्ट करना, गुस्से से बोलना, डिस्टर्ब होना, दिस इज द ओनली वे टू डिसिप्लिन समबडी. सो व्हाट वी कुड ट्राई वन डे इज डू एवरीथिंग.

0: आपको काम करवाना है लोगों से, आप काम करवाओ, डिस्टर्ब हुए बना, और इसको सिर्फ एक दिन का एक्सपेरिमेंट करना है. वी ऑलवेज ट्राई दिस एज अ 24 आवर एक्सपेरिमेंट. 24 घंटे इसको ट्राई करना है कि आज एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे आसपास, एंड कुछ भी देन मीन्स कुछ भी, जस्ट वन डे आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब. जस्ट वन डे आई विल डू एवरीथिंग जस्ट विद दिस रिमेम्बरेंस, आज एक दिन स्टेबल. और यू विल रियलाइज ये बहुत बहुत ईजी है. इट्स सिर्फ किया नहीं था अभी तक. ट्रैफिक में अचके, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं, किसी ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर लिया, कैसे चलाते हैं पता नहीं, इनको लाइसेंस कौन दे देता है, ऐसे ही है ये, तो ये है सारी सारा दिन. सिर्फ एक दिन वो नहीं करना है, सब कुछ करना है, सिर्फ एक दिन डिस्टर्ब नहीं होना, स्टेबल रहना. एंड यू विल रियलाइज इसके लिए कोई विधि, कोई तरीका सीखना नहीं है कहीं से, इसको सिर्फ याद रखना है कि मुझे एक दिन स्टेबल रहना. एंड यू सी हाउ मच एनर्जी यू विल सेव. डेफिनेटली.
1: सो ये जो स्टेबिलिटी है ये हमें कितनी स्ट्रेंथ देती है और कितना हमें एनर्जी देती है, एक्चुअली कितना कुछ और करने के लिए करती है. तो ये हम अपने साथ करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए रहेगा. और आपसे हर बार कहेंगे कि कुछ भी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ पा रहे हैं, उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, एक खुला निमंत्रण हर बार की तरह. तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. सीधा शिवानी, जो जो आज हमने समझा है उसे हमने किया तो है, ट्राई किया है उसे समझे, लेकिन एक और बात समझ में आई हुई है कि साइलेंस में जैसे बैठते हैं वो डीप हमारे सबकॉन्शियस में जब बैठने लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ मिनट अगर हम रिफ्लेक्ट करें,
0: कम्फर्टेबल होकर बैठे और अपने थॉट्स को consciously create karne ka prayas kare. Let me look at myself, the creator, the master, the powerful being. I, the creator of every thought, has a choice. Mere aas paas chahe kuch bhi ho jaye, I choose stability. Chahe koi kuch bhi kahe, I choose stability. और जैसे ही आई रिमेन स्टेबल, सिचुएशन परिवर्तन हो जाती है. एक क्षण के लिए अपने आप को उस व्यक्ति के सामने देखें जो आज दिन तक हम समझते थे कि ये मुझे गुस्सा दिलाता, ये मुझे डिस्टर्ब करते. अपने आप को उनके सामने देखिए, वो वैसे ही है, वैसे ही बोल रहे हैं, वैसा ही व्यवहार, लेकिन अपने आप को देखें, आई एम स्टेबल. उनके बोल, उनके व्यवहार मेरे मन पर प्रभाव नहीं डाल सकते. आई चूज माई रिस्पॉन्स बिकॉज आई एम द पावरफुल बींग. ओम शांति.
1: ओम शांति. अगर इन रिफ्लेक्शंस को देखें तो कहीं ना कहीं वो शक्ति जो बाहर से तलाश रहे थे, इन सॉफ्ट इमोशंस, इन्हें हम सॉफ्ट इमोशंस कहते थे, चाहे वो हैप्पीनेस था, पीस था, लव था, वो मुझे कितना शक्तिशाली बनाता है. तो आज खुशी की और शांति की, स्टेबिलिटी की इस शक्ति को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करें. आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी.

0: फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति. इन दिनों हम बात कर रहे हैं क्रोध की, यानी कि एंगर की. हमने ये देखा कि इमोशन, जिसे हम अभी तक बहुत अपनी ताकत मान लेते थे, कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी है और उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको आने से पहले एक पॉजिटिव फीलिंग को रख सकते हैं. हमने ये भी जाना कि जिस एंगर को हम कई बार जस्टिफाइड मानते थे, कई सारी गलत मान्यताओं को लेकर हम उसे जस्टिफाई करते थे या उसे सही मानते रहे थे, वो कितना अनहेल्दी हो जाता है हमारे लिए. और एक कारण कि हम क्रोध क्यों करते हैं वो भी सामने आया था, क्योंकि जैसा हम दुनिया को देखना चाहते हैं, जब वैसा नहीं हो रहा होता कोई व्यक्ति या सिचुएशन, तब हमें गुस्सा आता है. उसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं कि क्यों गुस्सा आता है. इस पर और किस तरह से इस क्रोध को कम किया जा सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए आइए मुलाकात करते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी से. ओम शांति. ओम शांति. सिस्टर शिवानी, एक कारण जिस पर हमने पिछली कड़ी को छोड़ा था वो जो था कि जिस नजर से हम दुनिया को चाहते हैं, जो चाहते हैं हम कि ऐसा हो, जब नहीं हो रहा होता ऐसा, तब गुस्सा आता है. मुझे अभी भी एक वो फिल्म याद आया कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है. तो उसके अलावा, ये तो एक बात हुई, उसके अलावा और भी कई कारण है.
1: ये ही सबसे बड़ा कारण है और ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आप हर टाइम पर देखेंगे. अंदर यहाँ पर हमने एक इमेज बनाई हुई है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, या लोगों को कैसा होना चाहिए, या लोगों को मेरे साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए. इसकी एक इमेज हर एक की मेरे अंदर बनी हुई है. अब जो आउटर रियलिटी होगी वो सेम तो होने वाली नहीं है. तो जब भी वो आउटर रियलिटी मेरी वो इमेज के साथ मैच नहीं करती है, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू होता है, विच इज अ साइन दैट मेरे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि मैं अपनी अंदर की इमेज को जो आउटर रियलिटी हो रही है उसके साथ एडजस्ट कर पाऊं. मैं अपनी अंदर जो इमेज बनाई है उसको पकड़ कर रखा है
0: किसी भी सिचुएशन को
1: किसी भी व्यक्ति को. आपको इस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये मैंने इमेज बनाई है. अब आप थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं, या आपका काम करने का तरीका अलग है, या आप शायद उतना एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, व्हाटएवर डिफरेंट रीजंस. तो यहाँ अंदर डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि मेरे अंदर वो पावर नहीं है कि मैं अपनी इमेज को चेंज कर सकूं जल्दी से.
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, इससे मुझे एक बात याद आती है कि हमने जब पहले बात की थी ईगो की बात की थी, अगेन दैट वाज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माय ओन सेल्फ. सो जो इमेज है, मुझे लगता है जो फिक्स चीजें हम कर लेते हैं अपनी लाइफ में, वही प्रॉब्लम क्रिएट करती है कहीं ना कहीं.
1: तो फ्लेक्सिबिलिटी फिनिश हो जाती है ना. आपको इस तरह से काम करना चाहिए था, नाउ दैट्स एन इमेज.

0: में आता है तो तीन चीजों के साथ हमारा गुस्सा होता है, हमारा अंदर युद्ध एक चल रहा है, या तो जो बीत गया, जो पास्ट हो गया उसके साथ हमारा गुस्सा है, क्योंकि जब भी किसी सिचुएशन पर हमें गुस्सा आएगा तो सिचुएशन तो जस्ट
1: गुजर चुकी है,
0: अब उसके गुजरने के बाद हम गुस्सा कर रहे हैं. मीन्स व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दैट व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड.
1: Well, that's wonderful. Before we go ahead, I think इसको rub in और कर लेते हैं हम, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अभी हमारे साथ भी, दर्शकों के लिए भी, मेरे लिए भी शायद, कि impossible है किसी भी situation या किसी भी व्यक्ति को control करके उसे change करना.
0: Absolutely. It's impossible.
1: And we always think it's the easiest thing.
0: It's impossible. ये असंभव है. बिकॉज वो जो सेकेंड चीज, एक चीज हम करते हैं, हम पास्ट को सारा दिन कंट्रोल कर रहे हैं, सेकेंड हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा, पहली चीज मेरी एंगर होगी एक सिचुएशन पर, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सो आई एम फाइटिंग इनसाइड विद दैट. सेकेंड आई एम फाइटिंग अगेंस्ट पीपल इंटरनली. वाई? क्योंकि लोगों को वो करना चाहिए जो मुझे चाहिए, तो जब वो वैसा नहीं करते तो मुझे गुस्सा आता है, तो मैं किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ? दूसरे लोगों को, विच इज अगेन इम्पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज द डिक्टेटर्स, जो भी डिक्टेटर्स भी आज तक हम सुनते हैं, थिंक ऑफ द वर्स्ट डिक्टेटर, दे कैन नॉट कंट्रोल पीपल, बिकॉज हरेक की अपनी पावर है सोचने की और डिसीशन लेने की. हरेक अपने अनुसार डिसीशन लेता है. हमें लगता है कि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, एक्चुअली नहीं, वो चूज कर रहा है डर में जीने का. उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चूज करेंगे कि वो डर के जीवन नहीं जिएंगे. इफ आई हैव द पावर टू कंट्रोल, देन आई शुड बी एबल टू कंट्रोल
1: एवरीवन,
0: देन व्हाई ओनली अ फ्यू? तो नोबडी कैन कंट्रोल पीपल, इसलिए लोगों को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. दैट विल कॉन्स्टेंटली क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, अंदर एक डिस्टर्बेंस सारा दिन चलना रहेगा, और ये फिर कॉन्स्टेंट रहेगा, ये ऐसे क्यों कर रहा, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए, इसे ऐसे बोलना चाहिए, यू नो, ये एक कॉन्स्टेंट हैबिट बन जाती है सारा दिन लोगों को करेक्ट करने की, उनको चेक करने की, चेंज करने की कोशिश करने की, और फिर जब वो नहीं कर पाते
1: तब इरिटेशन शुरू हो जाती है. तो छोटी सी बात नहीं समझ सकते,
0: आपको कितनी बार कहा, आप अभी भी नहीं करते हो, तो फिर वो और एंगर जनरेट होता है. तो इट्स ईदर फाइटिंग विद द पास्ट और फाइटिंग विद पीपल, एंड द थर्ड इज फाइटिंग इनसाइड विद योर सेल्फ. हमारा अपने आप से भी एक युद्ध जो है वो सारा दिन अंदर चलता ही रहता है, क्योंकि बहुत बार हम अंदर अपने आप से भी हार जाते हैं. तो वो एक अंदर एक लड़ाई अपने आप से चलती रहती है जो हम बाहर बताना नहीं चाहते हैं. तो वो फिर एक एंगर के रूप में निकालते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल. और अंदर युद्ध भी क्यों चलती है? क्योंकि ये जो दो चीजें थी, पास्ट को चेंज करने की आदत और लोगों को चेंज करने की आदत, दोनों में हम फेल होते हैं. हम कोशिश कॉन्स्टेंटली वो करते हैं, फेल कॉन्स्टेंटली होते हैं दोनों पर, तो अंदर क्या होगा?
1: गुस्सा, अपने ऊपर फ्रस्ट्रेशन, यू नो, लाइक दिस इज बिकॉज फेलियर विल एक्चुअली ऑलवेज ब्रिंग डिप्रेशन.
0: सो आई एम फेलिंग ना, आई एम ट्राइंग कॉन्स्टेंटली एंड फेलिंग कॉन्स्टेंटली टू कंट्रोल सिचुएशंस एंड पीपल. दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंगर इन माई सेल्फ, ऑन मी, मेरा अपने ऊपर गुस्सा कि ये क्यों मेरी बात नहीं मानते हैं. तो इसका मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगता है. तो इसलिए जो डीपेस्ट लेवल ऑफ एंगर होता है कि हमें अपने आप पर गुस्सा क्यों आता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आप किसी शॉप में गए कुछ लेने के लिए, या आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, और आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, और आधा पौना एक घंटा हो गया आपका ऑर्डर नहीं आया, ठीक है, और फिर आप उसको फिर से बुलाते हैं और उसको पूछते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो तो भूल ही गया था, या उसने गुमा दिया था, या व्हाटएवर. राइटियस एंगर क्या राइटियस है ना, आप एक घंटे से वेट कर रहे थे उस टाइम, तो आप उसके ऊपर तुरंत से गुस्सा कर देते हैं. अब अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है कि आपको ये पता है कि मैं एक घंटा वेट करता रहा, अगर मैं 10 मिनट के बाद ही इसको बुला के पूछ लेता तो मेरे इतने 45-50 मिनट्स जो वेस्ट हुए ये तो बच जाते. तो अंदर सबसे पहले हमें अपने ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी एक गलती हो गई है. मुझे 10-15 मिनट बाद चेक कर लेना चाहिए था कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ, तो मुझे अपने ऊपर वो गलती हुई. और दूसरा, मैंने जो गुस्सा कर दिया तुरंत सामने वाले पर,

0: भी मुझे पता अंदर से कि मेरी एक गलती हुई, आई वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. तो दो गलतियां मेरे से हो चुकी है इस टाइम. एक, मेरा टाइम बहुत सारा वेस्ट हुआ, एंड दूसरा आई वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. तो मेरे अंदर यहाँ एक गिल्ट डेवलप होना शुरू होता है कि मेरे से ये दो गलतियां हो चुकी हैं. अब लेकिन इसको सप्रेस करके मैं बाहर प्रोजेक्ट क्या करूंगी, गलती किससे हुई है, एंड देन आई शाउट इट आउट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई मेक इट साउंड दैट आई एम जस्टिफाइड. बट एक्चुअली हु एम आई एंग्री विद? आई एम एंग्री विद माई सेल्फ. मोस्ट ऑफ द टाइम इन द होल डे इफ यू चेक, वी आर एंग्री विद आवर सेल्फ. इट्स ऑलवेज, इन फैक्ट ऑलवेज आई वुड फाइंड दैट देयर इज सम डिसहार्मनी, समथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग इन साइड. लेकिन उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं दूसरे के ऊपर. आई कैरी दिस बैगेज विद मी कि मेरे से मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था. और सामने जब कोई आ जाता है उस पर वो प्रोजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं मैं आपसे गुस्सा. बट ये टेम्पररी है कि हमने दूसरे के ऊपर उठाकर उसको फेंक दिया. बट एक्चुअली दैट बिटरनेस इज इन साइड मी. तो जब भी गुस्सा आए, यू विल रियलाइज इट्स वन ऑफ दीज थ्री रीजंस: सिचुएशंस को कंट्रोल करने के प्रयास, लोगों को, या फिर अपने अंदर अपने आप से झगड़ा. तो जब भी गुस्सा आ रहा है, इस तरह से हम गुस्सा कर रहे हैं, अपने आप से रुक कर, इफ यू कैन स्टॉप अगेन, आस्क योर सेल्फ, किसको गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा क्रिएट कौन कर रहा है, और इसमें सफर कौन कर रहा है. ये जैसे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप को दोगे कि इस टाइम सफर कौन कर रहा है, भोगना किसकी हो रही है, यू विल गेट द आंसर. एंड अगर आपका अपने आप से युद्ध चल रहा है तो अपने आप को याद दिलाओ कि इट्स ओके, यू हैवंट फेल्ड एट एनीथिंग, इट्स जस्ट ओके, इट्स फाइन, इट्स ओवर. एंड फिर भी अगर गुस्सा नहीं कम हो रहा हो, जस्ट आस्क योरसेल्फ वन मोर क्वेश्चन, कितनी देर करना और. इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल इजिएस्ट वे. बिकॉज करना क्या है, कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करना है ना, अंदर अपने हालचाल पूछना है. तो जैसे अगर कोई गुस्सा कर रहा हो एंड यू नो हैव टू टेल हिम कि आप अपना नुकसान कर रहे हो, तो पहले तो आप पूछो आप किसका नुकसान कर रहे हो. अब किसी और से नहीं पूछना, अपने आप से पूछना कि इस टाइम किसका नुकसान हो रहा है. और फिर भी वो करते जाओ, आप करते जाओ, तो जस्ट एक सेकेंड के लिए अपने आप से पूछो और कितनी देर,
1: फॉर हाउ लॉन्ग. यस,
0: यू नो, इफ यू कैन आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग, जस्ट वॉच व्हाट हैपेंस. बिकॉज अपना नुकसान खुद से कोई नहीं करना चाहता.
1: इट्स एक्चुअली लाइक यू नो कोल्ड शावर. यू नो इट्स लाइक अ स्लैप. ओके, कम ऑन, होल्ड ऑन.
0: अपना नुकसान करो, कितनी देर के लिए और करना. एंड इमीडिएटली यू विल वॉन्ट टू टेल योर सेल्फ नो मोर,
1: नो
0: मोर, अपना नुकसान मैं क्यों करूँ. तो इट्स यू नो, ये जो हैबिट अपने आप में डालनी होगी, ये एवरी डे बेसिस पर चलती है. और इसलिए वो जो वन घंटे में एक मिनट का पॉज होता है, इट हेल्प्स टू डू ऑल दीज थिंग्स. इसलिए वो वन मिनट की प्रैक्टिस को तो इमिजिएटली डाल देना चाहिए कि हर एक घंटे के बाद एक मिनट के लिए पॉज करें और अपना हालचाल चेक करें. How is it all going here inside? Is there anywhere? क्योंकि गुस्सा एकदम से नहीं आएगा हमेशा. Sometimes it starts with a little and then it will increase and then it will increase.
1: कहते भी तो हैं कि किसी और का गुस्सा कहीं निकला, कुछ गुस्सा कहीं और था और निकल कहीं और गया. अच्छा, before we go, because we might move, आगे आगे जाते जाएंगे, एक बात ये थी कि हम लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं तब प्रॉब्लम आती है, ये सिचुएशंस को. यहाँ टीचर और स्टूडेंट की बात अगर हम देते हैं, टीचर इज ऑलवेज देयर टू टीच समथिंग, यू नो, एक कहीं ना कहीं. और उसमें ये लगता है कि उन्हें समझाना जरूरी है, उनको बताना बहुत जरूरी है. तो कई बार टीचर फील्स कि दे नीड टू चेंज द प्यूपल, द स्टूडेंट. तो ऐसे में ये जो सिचुएशन है कि
0: तो वही हमने पहले भी देखा कि कंट्रोल नहीं, इन्फ्लुएंस. You want to change the student, या आप उनके अंदर जो भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, सबसे पहले वो परिवर्तन, you know, it's आप किसी के अंदर कोई गलती को सुधारना चाहते हैं, उसके लिए आप गलती नहीं कर सकते. That is no justification at all. क्योंकि जब हमें समझ में आ गया कि गुस्सा करना एक मेरी गलती है, और अभी आप कोई गलती कर रहे हैं, और आपकी गलती को सुधारने के लिए मैं और एक गलती करूँ, तो परमात्मा शिव बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि दूसरे की गलती को सुधारने के लिए आप गलत करते हैं. हाउ फार इज इट जस्टिफाइड? आप जस्टिफिकेशन की बात करते हैं, कहते बाबा लेकिन आपको क्या पता उन्होंने क्या किया. तो उन्होंने जो किया वो किया, आपने क्या किया? तो आपने उन्होंने जैसे हम कह देते हैं उन्होंने झूठ बोला, लेकिन

0: से झूठ सहन नहीं होता। अच्छा, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने गलती की, तो आपने क्या किया, आपने एक और गलती की। तो आर यू ऑथोराइज टू शाउट एट द अदर पर्सन, आर यू ऑथोराइज टू करेक्ट द अदर पर्सन बाय मेकिंग अ मिस्टेक योर सेल्फ। करेक्ट आपको वही कर सकता है जो खुद सही रास्ते पे चल रहा। आई कैन नॉट गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल यू, आई एम नॉट जस्टिफाइड टू डू।
1: एक और बात जो हम कहते हैं बहुत बार कि उन्होंने तो इतना किया, मैंने तो इतने पे ही खत्म किया, मैंने तो थोड़ा ही किया।
0: तो उन्होंने बड़ी गलती की, मैंने छोटी गलती की, नॉट जस्टिफाइड अगेन। गलती तो गलती है,
1: क्योंकि अगेन वो गलती मुझे तंग कर रही है।
0: सबसे इम्पोर्टेंट
1: इज आई थिंक वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड,
0: हम दूसरे पर एहसान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने तो इतना किया, मैंने तो इतना ही किया, बट इट्स नॉट फॉर द अदर पर्सन। उसने तो इतना नुकसान अपना किया, लेकिन आपने भी इतना नुकसान अपना तो किया ना। वो आपको अपने आप को जवाब देना है कि आप बार बार अपना नुकसान क्यों करते हैं।
1: ये हम एक और मेरी बात जोड़ना चाहूंगी कि हम कई बार कहते हैं, शिव बाबा की जैसे बात कर रहे हैं कि आपके लिए, आपके लिए मैंने इतना किया या आपके लिए मैं ये करना चाहता। अगेन इट्स एक्चुअली नॉट फॉर एनीवन,
0: नॉट फॉर एनीवन, इट्स जस्ट फॉर माय सेल्फ।
1: क्योंकि कई बार हम ये करते हैं कि आप ऐसा कहते हो, सो आई एम डूइंग इट दिस वे, बट देन अगेन इट्स बिकॉज समवेयर इट इज यू नो मेरे ही प्रॉब्लम, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो
0: रही है। एब्सोल्युटली। तो इवन जो टीचर स्टूडेंट आपने कहा, टीचर डेफिनेटली, पेरेंट चाइल्ड पे वो डेफिनेटली, आप बच्चे का अच्छा चाहते हो तो आप कॉन्स्टेंटली बच्चे को गाइड करते रहोगे, बट उसके साथ आपको पॉजिटिव एनर्जी भेजोगे। अगर आप गुस्सा कर देते हो देन यू कांट, तो आप उनको बता दोगे, इंस्पायर कर दोगे, एंड फिर चेंज होना या न होना उसकी फ्रीडम। वैसे भी आप फोर्सफुल नहीं, वो देनी नहीं पड़ेगी, आपके पास चॉइस भी नहीं है। अगेन वी डोंट गिव फ्रीडम, द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू दैट फ्रीडम। आप ये नहीं कह सकते ठीक है मैंने आपको बता दिया, आप करना या नहीं करना ये आपकी मर्जी है। वो तो वैसे भी उसकी मर्जी है, हम जबरदस्ती तो करवा ही नहीं सकते। ये तो सिर्फ हम अपने आप को ही इस तरह से खुश करते रहते हैं, बट एक्चुअली इट्स देयर चॉइस। तो हम पूरी तरह से उनको सारी राय दें जो देनी है, लेकिन उसके बाद वी हैव टू लीव इट। वी कांट से यू नो दैट्स डिटैचमेंट, कि आप दे दें, बता दें और फिर साक्षी हो जाएं एंड वेट फॉर देम टू डू इट।
1: देन तब हमें प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती है कि अभी चेंज क्यों नहीं हो रहा।
0: तो देन एक्सपेक्टेशन, फिर वो एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारे कहे अनुसार क्यों नहीं चलते। यू नो गुस्से को खत्म करने का सिंपल, बहुत इजी तरीका, हैव नो एक्सपेक्टेशंस। आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखो। एक दिन के लिए करके रखो, इफ यू फाइंड दिस वेरी डिफिकल्ट टू डू। एक दिन के लिए करना कि मुझे आज सारा दिन में किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जिसको जैसा करना है जैसे चलना। वी डोंट हैव टू से टू देम कि आपको जो करना है जैसे।
1: लेकिन प्रॉब्लम ये है सिस्टर शिवारिया, जरूर मैं कहना चाहूंगी कि आई थिंक हम में से हर कोई, हर बार जब ये बात हो रही होती है कि किसी से कोई उम्मीद नहीं रखो, हमें से हर कोई ये कहता है कि हम तो कोई उम्मीद नहीं रखते, मुझे तो अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं है, मुझे तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे तो दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय
0: एक्सपेक्टेशन इज एट एवरी स्टेप। एक्चुअली हमें एक्सपेक्टेशन है, आपको टाइम पर आना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेशन है। आपको मुझे फोन क्यों नहीं किया, ये एक्सपेक्टेशन है। आपने अपना काम ठीक से क्यों नहीं किया, ये एक्सपेक्टेशन है। आपने प्यार से मुझसे क्यों नहीं बात की, ये एक्सपेक्टेशन है। आपने उल्टा जवाब क्यों दे दिया, ये एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशंस कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं हमेशा होने वाली है कि मैं जब बड़ी हो जाऊं, बच्चे बड़े हो जाएं, तब वो मेरा ध्यान। वो तो मोटे रूप एक्सपेक्टेशन, हर स्टेप पे एक्सपेक्टेशन। तो वो हर स्टेप पे जो एक्सपेक्टेशन है, जब वो मीट नहीं होगी तो गुस्सा आएगा। बिकॉज एक्सपेक्टेशन मतलब क्या, मेरा वो इमेज है एंड आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट इमेज। आप नहीं करेंगे, डिस्टर्ब।
1: लेकिन हम उसे कहते हैं कि तो आपका कर्तव्य था, आपको करना चाहिए। सी अगेन
0: एक्सपेक्टेशन, अगेन कर्तव्य था, ये भी किसने डिसाइड किया? मैंने डिसाइड किया कि ये आपका कर्तव्य था। तो फिर मेरी इमेज, तो अब आपकी इमेज डिफरेंट है, ये मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। सो प्लीज बिकम लाइक माय इमेज, एंड इफ यू डोंट बिकम लाइक माय इमेज, आई एम अलाउड टू गेट एंग्री। द होल डे दैट इज गोइंग ऑन, सारा दिन, हर स्टेप पे यही है। सिर्फ एक दिन का एक्सपेरिमेंट ये करना, एंड जस्ट सी हाउ यू फील। टुडे होल डे नो एक्सपेक्टेशन। कोई कैसा भी बात करे, कोई कुछ भी बोले, कोई कैसे भी काम करे, आई विल डिसिप्लिन देम, बट नो एक्सपेक्टेशन।
1: अच्छा, एक और बात है। ओके, दिस इज वंडरफुल। आई एम से लाइक विल ट्राई टू डू दैट। एक तो सबसे पहली बात जो हमें समझ में आई वो ये कि एक इम्पॉसिबल जो चीज है वो ये कि मैं कभी भी ना सिचुएशंस को चेंज कर सकती, कंट्रोल कर सकती हूँ, ना मैं लोगों को कंट्रोल कर सकती हूँ, जो कि

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया वो उन्होंने किया। मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया।

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। स्वदेशी आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है चरखा। गांधी जी का मानना था कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की गरीबी को मिटाया जा सकता था। वो कहते थे कि जिस रास्ते गरीबी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज मिलेगा। चरखा आंदोलन में न केवल अंग्रेजों का बहिष्कार शामिल था बल्कि शामिल थी देश की स्वाधीनता भी। गांधी जी कहते थे कि स्वदेशी कपड़ों के उत्पादन में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी उतना ही ज्यादा देश स्वावलंबी बनेगा। गांधी जी के चरखा आंदोलन के जादू से सभी लोग प्रभावित थे। ये लोगों के बीच इस तरह से रच बस गया था मानो जिंदगी का एक अटूट हिस्सा हो। चरखे के ऊपर गीत गाए जाने लगे थे। आइए सुनते हैं भोजपुरी तोहर।

स्वराज का संकल्प और आजादी का अभियान, इन दोनों के मूल में एक ही तत्व काम करता था और वो था सत्याग्रह। चरखे की तरह सत्याग्रह भी गांधी जी से जुड़ा हुआ था। इसी तत्व की ताकत से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। सत्याग्रह मानो समूचे स्वतंत्रता आंदोलन की प्राण शक्ति था। सत्याग्रह शब्द का जन्म 1906 में हुआ था। गांधी जी ने बाकायदा प्रतियोगिता आयोजित करके इस शब्द की तलाश की थी। ये शब्द भारतीयों की संपूर्ण संवेदनाओं को परिभाषित करता था। खुदाया हिंद की इकबाल चमके सारी दुनिया में, रहे शादाब हिंदुस्तान हमारा गुलसिता होकर। आइए सुनते हैं मोहम्मद इकबाल का कलाम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे अजीत तिवारी, मृदुल घोष, श्रीधर नागराज और अभिषेक नागराज। संगीतकार थे तापसी श्रीधर नागराज। आलेख और उद्घोषणा सुधानुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
3: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
4: ओम शांति।
3: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
4: थैंक यू सो मच।
3: आज फिर से मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ।
4: जरूर।
3: वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो। वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो बट थ्रू अ मिरर, आईने के द्वारा। एवरीथिंग वी डिसर्न इज कंपैरेटिवली हेल्ड टू द विजन विद विच वी सी ourselves.
4: Look at the line. We do not see the world through the window. We see the world through a mirror. Dunya ko hume khidki ke through nahi, ek aaine ke through dekh rahe hain. Dunya ko agar hume khidki ke through dekhte, khidki ke through to jo cheez jaisi hai waisi dikhai deti hai.
3: To detach hoke dekhte hain.
4: Jo cheez jaisi hai waisi dikhai degi. Through a window. But in the mirror, what do I see? आईने में what do I see? No, आईने में I see only myself.
3: वही तो मैंने आपसे
4: कहा। I can see here is the world. Suppose this is the world. You are the world for me. Let's say. ये दुनिया है, मुझे इसको देखना है। अगर मैं आपको खिड़की के थ्रू देख रही हूँ, मतलब खुला है सब, I can see you as you are. लेकिन अगर बीच में एक आईना है, मिरर है, आईने में I can see only myself. Through what I see myself, then I see you. So I do not see you as you are. ये बहुत deep line है और इसीलिए उसने लिखा

0: एक होता है सिचुएशन के अंदर घुसे हुए हैं और एक है सिचुएशन से साक्षी है। वो दो लोग सिचुएशन के अंदर हैं। अब एक है जिन्होंने फोन किया, आपने कहा उनको उस बच्ची ने विश नहीं किया, तो वो उनकी ईगो हर्ट हो गई एक। फिर जब उन्होंने डांटा तो वो बच्ची की ईगो हर्ट हो गई, तो वो रोते हुए आई। उसने भी तो उनका नजरिया नहीं समझा ना, दोनों ने
1: जोर से डांटा ना,
0: जोर से डांटा ना।
1: अब जरा इतनी भी अकल नहीं है तो
0: हाँ, लेकिन वो बच्ची भी, उसने भी तो वो नजरिया नहीं देखा ना कि हाँ इन्होंने इसलिए डांटा कि मैंने विश नहीं किया इसलिए डांटा। द पावर टू बी एबल टू सी द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, इम्पोर्टेंट इज वी आर नॉट एबल टू सी द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, वी कैन सी ओनली वन पर्सपेक्टिव, सिर्फ एक नजरिया।
1: जिसने फोन उठाया उसको क्या समझ में आई, क्यों झड़ रहा है मुझे।
0: जब हमें किसी ने कुछ कहा या किया तो हमें उतना पॉज होना पड़ेगा कि इसके पीछे इनका क्या रीजन, पर्सपेक्टिव या इंटेंशन था। जब तक हम वो नहीं देखेंगे, हम ना व्यक्ति को ना परिस्थिति को परख पाएंगे। इसीलिए तो वो खिड़की खुली नहीं है, खिड़की नहीं खुली ना,
1: मिरर के थ्रू।
0: मिरर के थ्रू मतलब सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव के थ्रू, सिर्फ उस आईने के थ्रू ही हम देख सकते हैं सबको। बहुत सारी, सारा दिन में हमारे से छोटी छोटी छोटी छोटी गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम सब
1: छोटी नहीं हुई ना, ये बात इतनी बड़ी बाद में।
0: लेकिन ये बात
1: वो जब वो घर आए तो बात भी नहीं करी, महीनों महीनों चला इसको कि बोलती मेरे मुझे आज तक किसी ने इतनी जोर से नहीं डांटा।
0: दोनों तरफ नजरिया नहीं देखा, दूसरे के संस्कार को नहीं समझा, फिर उसके बाद ईगो को हील नहीं कर पाए, बात को लेट गो नहीं कर सके। मैं लंबा चलता है, चीज इतनी होती है, इतनी सही नहीं परखी तो फिर बाद में निर्णय के लिया इनसे बात नहीं करनी, अभी जल्दी जल्दी ऐसे डांटते हैं। ये कर्म बदल गया, भाग्य बदल गया। ये सारा दिन में अगर हम चेक करेंगे ना तो पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट निकलेगी कि जो हम ये कितनी बार ऐसा करते हैं। इसीलिए जितनी पावर्स हमने अभी तक देखी, पावर टू लेट गो, ये सब जो पुरानी बातें हुई बीत गया, लेट को छोड़ना है।
1: पावर टू टॉलरेट,
0: फिर पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति कि दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करना। तीसरा एडजस्ट करने की शक्ति कि समाने की शक्ति। लेकिन ये तीनों चीजें भी करने के लिए जो चौथी शक्ति, वो ये वाली शक्ति है, परखने की शक्ति। मीन्स राइट रॉन्ग, सही गलत, हम बचपन से सीख रहे हैं सही गलत की परख होनी चाहिए। परखो तो सही क्या था, गलत क्या था, सच क्या है, झूठ क्या है, परख के फिर निर्णय लो। वी हर्ड दिस सिंस चाइल्डहुड। लेकिन जो हम पहले परखने की शक्ति बोलते थे, दैट वाज अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि सही क्या है, गलत क्या है, देखो तो नो, बट अ लॉजिकल स्पिरिचुअलिटी जो हमें सिखाती है, राजयोग मेडिटेशन से जो हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, और हर एक अनुभव भी करेगा उसको, कि जितना माइंड थोड़ा थोड़ा साइलेंस की तरफ, साइलेंस मतलब ये क्लटर जो नॉइज है ये कम होने लगती है, हम अपने ओरिजिनल संस्कार की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो जो परखने की शक्ति इमर्ज होती है वो एक आउटवर्डली परखने की शक्ति नहीं होती कि लॉजिकली राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, नॉलेज क्या कहती है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन वो होती है एक इनेट, अंदर से एक जो इनर वॉइस जिसको कहते हैं, जिसको हम इंट्यूशन कहते थे, नहीं जब मेरे अंदर की आवाज कहती है ये राइट है ये रॉन्ग है।
1: अंदर वाला तो हमेशा मुझसे बात करता रहता
0: है ना,
1: और कई बार बोलते हैं मत कर, मत बोल, मत बोल, और मैं हमेशा फंसा।
0: फंसा मतलब अगर नहीं माना तो फंसा।
1: मैं कई बार फंसा बाय नॉट लिसनिंग टू माय अंदर वाला,
0: नॉट लिसनिंग। हाँ
1: सिस्टर, एक बार मैं लोनावला जा रहा था अपने फार्म हाउस, तो अंदर वाला बोला चाबी तो ले लो। तो मैं ऐसा हाथ बढ़ा, मैंने क्यों, माली है उसके पास चाबी है, वहाँ सब खाना पका के देंगे। वहाँ गया तो मालिक के घर में किसी की डेथ हो गई, वो गांव चला गया।
0: जिसको हम अंदर की आवाज कहते हैं ना, वो एक परखने की शक्ति है जो अक्वायर्ड बातों से नहीं, लोगों के ओपिनियन के आधार से नहीं, जो इस समाज में रहते हुए जो बिलीफ सिस्टम्स हमने बने उसके थ्रू नहीं परखता, लेकिन जो आत्मा की इनेट विजडम है, आत्मा को जो अंदर से पता होता है कि सही और गलत क्या है। नहीं, कई बार हम कहते हैं मुझे अंदर से मालूम है कि ये सही है मेरे लिए, मुझे अंदर से मालूम है ये गलत है, वो जो आवाज आती है, वो जो राइट और रॉन्ग हमें बताएगा, वो हमेशा राइट निकलेगा। इट ऑलवेज बी राइट फॉर अस, बट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज स्टार्ट यूजिंग

0: मोर एंड मोर.
1: विवेक मेरा बेटा और मैं एक अपने लिए लैंड लेने गए थे तो उसके नंबर के लिए विवेक पूछकर बोलने लगा और मैं कि हम लोग वास्तु वाले को बुला ले उसको पूछ ले तेरे अंदर वाला क्या बोल रहा है. डैडी आई लव इट. डैडी मुझे अच्छी लगी. मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी. ना नंबर पूछो ना वास्तु पूछो तुम और मैं दोनों फंसेंगे क्योंकि वो कुछ बोलेगा ये कुछ बोलेगा ये हाथ से चीज चली जाएगी.
0: सही बात है.
1: आज तक हमको इतना सुख है उस प्रॉपर्टी से.
0: वन इज अक्वायर्ड नॉलेज एंड वन इज द इनेट नॉलेज दैट द सोल हैज.
1: दिस इज ब्यूटीफुल. आपने मुझे याद दिला दिया
0: तो सही और गलत की जो आवाज जो हमें पता है क्या सही है क्या गलत है. लेकिन वो जैसे आपने कहा ना अभी जो जब माइंड क्लटर्ड में होता है तो हमेशा बाहर ढूंढता है सही क्या है गलत क्या है. इससे पूछें इससे पूछें ये करें इधर पढ़ें उधर चेक करें. अगर हम सिर्फ 2 मिनट साइलेंस में बैठ जाएं सिर्फ 2 मिनट. हर आत्मा को हर बात का आंसर पता है. वी डोंट नीड टू फाइंड आउट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन और एनीवेयर. एवरी सोल नोज द आंसर टू एवरी क्वेश्चन एवरी इश्यू एंड एवरी प्रॉब्लम इन देयर लाइफ.
1: यू आर सो राइट. ये प्रैक्टिकली मैंने किया सिस्टर. विवेक को किसी ने बोला आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यंगस्टर्स की जरूरत है आज आपको नहीं किसी पार्टी से टिकट लेके लड़ते दैट यू सो गुड इन स्पीच. तो मेरे से वो एडवाइस लेने आया. मैंने कहा एक काम करो बाबा के सामने बैठो मंदिर में बैठो मेडिटेट करो और अंदर वाले से पूछो आपको जवाब आएगा. वो गया ही नहीं.
0: एक बार परखा सही फिर निर्णय लेना इज इजियर. इम्पोर्टेंट तो वो परख की शक्ति राइट होनी चाहिए ना. तो जितना आत्मा इस इनेट से अब आंसर निकालने शुरू करेगी हर चीज में. इवन अब अगर जब हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है दो लोगों के बीच जैसे हमने देखा कि दूसरे का संस्कार हम क्यों नहीं परख पा रहे. दूसरे का संस्कार क्यों हम दूसरे को अपने संस्कार के थ्रू देख रहे हैं क्योंकि उस टाइम हम इनेट से कनेक्टेड नहीं है. हम ईगो से कनेक्टेड है. हाँ
1: क्यों
0: इनेट से कनेक्टेड नहीं है ना. अगर हम इनेट
1: से कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ आप मुझे कुछ भी बोलते जाएंगे तो मैं इनेट से कनेक्टेड हूँ नहीं हूँ आप बदतमीजी करोगे तो.
0: वाइज सोल कौन सी है जो आत्मा अपनी विजडम से कनेक्टेड होगी. आप देखो जब हम अगेन जब हम महात्माओं के पास जाते हैं उनके साथ कोई गलत भी व्यवहार करता है.
1: वो तो मैंने देखा लेकिन मैं महात्मा नहीं हूँ ना.
0: महात्मा नहीं हो एक मिनट.
1: हम तो
0: महात्मा नहीं हो. मैं दिव्य आत्मा नहीं हूँ. मैं संत आत्मा नहीं हूँ. उस टाइम
1: क्या करना है.
0: उस टाइम मैं नहीं हूँ क्योंकि उस टाइम मैं अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्टेड हूँ. टॉकिंग टू पीपल लाइक अस ओनली.
1: आप बीच में महात्मा मत लाइए ना. महात्मा तो करता ही है. मैंने देखा हुआ है एक मेरे सामने जगत गुरु को एक आदमी इतना बोला उन्होंने सिर्फ बोला आप शायद इससे गलत समझ रहे हैं ये बात सत्य नहीं है.
0: पहली बात तो हम जो हम बार बार ये विक्टिम फीलिंग क्रिएट करते हैं ना कि हम तो संत आत्मा नहीं है.
1: इसमें विक्टिम की बात नहीं सिर्फ प्रैक्टिकल है. आप यही चीज जो उसने जगत गुरु से बोलता ही जा रहा था बोलता मैं सुन के मेरा मन कर अभी मारूं और वो देख रहे हैं बोलते शायद नहीं आपके ना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी.
0: तो अब वो संत आत्मा उस क्षण उस सीन में ही लेकर आते हैं कि एक व्यक्ति आया ठीक से नहीं बात की अब्यूजिव लैंग्वेज रॉन्ग लैंग्वेज यूज की. यहाँ वो संत आत्मा बैठे हैं यहाँ आप बैठे हैं. वो शांत थे.
1: मैं तो बहुत शांत
0: डिस्टर्ब हो रहे थे. ओके नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू सोल्स ओनली एट दैट टाइम. आप में और उनमें उस समय क्या फर्क था.
1: वो महात्मा थे मैं एक्टर था.
0: महात्मा थे मैं एक्टर था मतलब क्या.
1: हाँ, मतलब
0: महात्मा कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है.
1: तो फिर
0: कोई प्रोफेशन थोड़ी है कि वो महात्मा थे मैं एक्टर था. महात्मा कोई प्रोफेशन थोड़ी है. महात्मा है मतलब
1: क्वालिटीज तो है उनमें
0: है मतलब डेवलप की
1: और क्वालिटीज भी है काम भी है उनका और उनको
0: उसके
1: महात्मा को प्रैक्टिस भी तो होती है ना.
0: प्रैक्टिस तो हम भी कर रहे हैं ना. सी ये सब प्ली देके अपने आप को छुड़ाना नहीं है उस पुरुषार्थ से. वो महात्मा थे मैं एक्टर था नहीं. वो आत्मा है मैं आत्मा हूँ. वो आत्मा उस क्षण अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड थे. मैं आत्मा उस क्षण अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्ट होके अपने ईगो में था. वेरी सिंपल. आपने कहा हम संत आत्मा नहीं है. हम सब संत आत्मा है. परमात्मा हमें कहते हैं आप सब ओरिजिनली ब्यूटीफुल प्योर दिव्य आत्मा हो. सिर्फ संत आत्मा भी नहीं हो दिव्य आत्मा हो डिवाइन सोल देवी देवता. देवी देवता मतलब डिवाइन आत्मा, हर आत्मा वो है डिविनिटी। संत आत्मा प्रोफेशन नहीं है, आप एक्टर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ईगो होनी ही चाहिए और आपको ऐसे
1: ईगो होनी चाहिए नहीं बोला, मैं एक्टर हूँ महात्मा नहीं हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है।
0: मैं एक्टर हूँ इज अ प्रोफेशन,
1: तो क्या हुआ,
0: तो मैं एक्टर हूँ इज अ प्रोफेशन,
1: महात्मा तो
0: इज नॉट अ प्रोफेशन।
1: तो
0: महात्मा हूँ, एक महात्मा एक्टर बन सकता है,
1: महात्मा का बिहेवियर,
0: एक महात्मा एक्टर बन सकता है,
1: क्यों नहीं बन सकता,
0: सिंपल। मतलब आत्मा महान है, प्रोफेशन कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि मैं एक्टर हूँ तो ईगो होना इज फाइन।
1: सही बात है, कई महात्मा तो मर्डर भी करते हैं।
0: हाँ, दैट्स इट, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट हमने कौन से कपड़े पहन लिए,
1: आपका पॉइंट समझ में आया,
0: हमने कौन से कपड़े पहन लिए, हम आश्रम में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, या एक बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं, इट डजंट मैटर। महात्मा इज नॉट अ रोल, महात्मा इज नॉट अ प्रोफेशन, महात्मा मीन्स,
1: रिपीट करेंगे बहुत सुंदर,
0: महात्मा मीन्स वो आत्मा,
1: वो आत्मा हाँ,
0: जिसने अपनी महानता को, मतलब अपनी डिविनिटी को, अपनी ओरिजिनलिटी को इमर्ज किया है, फिर उसके बाद चाहे वो एक्टर का प्रोफेशन है या बिजनेसमैन है, वो फादर है, वो कुछ भी हो सकता है।
1: यूर राइट, अभी मेरे बात समझ में आई, क्योंकि अब मुझे थॉट आया कि मैं कई महात्माओं को जो ये रोल करते हैं लेक्चर देने का, रिलीजियस एक्स्ट्रा जो भी है, वो लोगों को मैंने गुस्से में भी देखा है, लड़ाई करते हुए भी देखा है, एकदम लो लेवल की बातें भी देखी है, पैसों के लिए भी उनको ग्रीड देखा है,
0: बिल्कुल
1: राइट। तो
0: विच इज ओके, अगेन हम यहाँ जजमेंटल नहीं,
1: मैं एक्टर और उसको नहीं करूंगा,
0: बट यहाँ हम उनके बारे में भी जजमेंटल नहीं हो रहे, ठीक है। वी आर नॉट हियर टू बी जजमेंटल अबाउट एनीबडी, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड कि आत्मा एवरी सोल, एंड एवरी सोल मीन्स एब्सोल्यूटली एवरी सोल ऑन दिस प्लैनेट। परमात्मा ने कहा हर आत्मा मीन्स हर आत्मा, चाहे इस समय वो कुछ भी कर रही है, एंड कुछ भी कर रही है मीन्स कुछ भी कर रही है, कुछ भी। अगर आज कोई आत्मा निमित्त बनती है मर्डर करने के, टेरर क्रिएट करने के विश्व के अंदर, वो आत्मा भी ओरिजिनली, वो आत्मा भी ओरिजिनली बहुत ब्यूटीफुल एंड प्योर आत्मा है, लेकिन इस समय किसी कारण से जो कंडीशनिंग हुई, जो सिखाया गया, जिस प्रभाव में आए, जो भी रीजन, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अपनी ओरिजिनलिटी से कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड। वो एक एक्सट्रीम है कि ओरिजिनलिटी से इतने डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि हम ऐसा कुछ कर्म करने लगते हैं। एक है हम सब लोग, लेट्स से मेजोरिटी, जो अपनी ओरिजिनलिटी से उतना डिस्कनेक्टेड नहीं है कि हम किसी के साथ ऐसा मर्डर करें या कुछ करें, लेकिन हम ओरिजिनलिटी से थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, तो हम गुस्सा करते हैं और ये सब सब कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट आर ओरिजिनल। और एक ऐसी सेट ऑफ आत्माएं हैं जो अपनी ओरिजिनलिटी में बहुत ज्यादा रहते हैं, जिनको फिर हम लेबल करते हैं नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट दे वेयर एंड हाउ दे लुक, बट बिकॉज ऑफ हु दे आर, कि वो आत्मा संत आत्मा है। जरूरी नहीं है जो संन्यास करते हैं, आश्रम में रहते हैं, या जो आपने कहा वर्कशॉप्स कराते हैं, वो संत आत्माएं होते हैं। आपको सारा दिन में चलते फिरते आपको ऐसी आत्मा मिलेगी, आपको कोई गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, कोई आप रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको जो खाना परोस रहा होगा, आपको उससे मिलकर ऐसी एक वाइब्रेशन आएगी, आप कहेंगे संत आत्मा है ये, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा।
1: लोग तो यहाँ तक बोलते, मैं किसी गाय को हाथ लगाने वाला था तो मैंने पूछा ये मारती तो नहीं, तो बोले नहीं, तो एक तो बिल्कुल संत है।
0: तो संत मतलब किसको हम संत लेबल करेंगे,
1: जिसको मतलब जिस,
0: जो आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी से ज्यादा कनेक्टेड है, मतलब जो आत्मा शांत रहती है, प्यार करती है, अनकंडीशनली हमें एक्सेप्ट करती है, जिसकी वाइब्रेशन, और किसको बोलते हैं संत, छोटे बच्चे को,
1: फ्रेंडली चाइल्ड,
0: छोटे बच्चे को जिसकी इतनी प्योरिटी है, इतनी डिविनिटी है, विच मीन्स इट कैन बी एनीबडी। नाउ नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू बी पीपल जिनके पास सिर्फ टाइटल है कि वो संत आत्मा है, ये 100% है। ना हमें ये सोचना है कि जिनके पास ये टाइटल है कि ये संत आत्मा है वो सारे परफेक्ट होने चाहिए, वो भी नहीं हमें देखना, क्योंकि आज क्या होता है?

0: ऐसा देख के फिर हम कई बार डिसइल्यूजन हो जाते हैं, हम परखने की शक्ति रॉन्ग उस टाइम यूज करते हैं, क्योंकि बहुत लोग आजकल कहते हैं ओ ये लोग भी ऐसे करते हैं, तो फिर हम क्या, सर वाई आर वी कंपेयरिंग विद एनीबडी, वाई आर वी जजिंग एनीबडी, लेट्स हैव नॉलेज। नॉलेज ये कहती है कि हर आत्मा प्योर है, राइट हर आत्मा अपनी प्योरिटी से अलग अलग मैग्नीट्यूड में डिस्कनेक्ट हुई है, कोई थोड़ा कोई ज्यादा कोई बहुत ज्यादा, लेकिन हर आत्मा के पास वो पावर है कि वो अपनी ओरिजिनलिटी पे वापस जा सकती है। कोई आत्मा हो सकती है घर गृहस्थ में रहती है, सारा दिन बिजनेस कर रही है, कारोबार कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी से बहुत कनेक्टेड है, तो वो अपनी डिविनिटी को अपने डे टू डे कर्म में रेडिएट करती है। कोई आत्मा हो सकती है कि वो आश्रम में सेवा करती है, कहीं भी पूरी दुनिया में, लेकिन वो आत्मा अभी जर्नी पर है, वो अभी अपनी ओरिजिनलिटी से उतनी कनेक्ट नहीं हुई है, वो वर्क कर रही है अपने पर, मेहनत की लेकिन हुई नहीं है। तो हमें ऐसे को देखकर डिसइल्यूजन भी नहीं होना है, जजमेंटल भी नहीं होना कि ऐसे आश्रम में रहते हैं, सब कुछ छोड़ दिया, संन्यास किया, फिर भी गुस्सा करते हैं। नो, इट्स ओके, दिस इज कम्पैशन, दिस इज अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। एंड उससे क्या होगा, ना हम उनके प्रति जजमेंटल होंगे और ना हम अपने को डिसएम्पावर करेंगे।
1: संत के जो आश्रम खोल के बैठे रहते हैं उनको गुस्सा करके तो देखता भी हूँ और बोलता भी हूँ ये संत थोड़ा ही है।
0: हमें किसी के ऊपर जजमेंटल नहीं होना है, हमें हर आत्मा की यात्रा पता नहीं है। आज अगर आप मुझे देख रहे हैं, सपोज आई एम ऑन दिस जर्नी, दिस जर्नी इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, ऐसे नहीं है आज डिसाइड किया तो ये ठीक हो गया, आज डिसाइड किया तो ये परफेक्ट हो गया। नो, अब आज अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ यहाँ एंड आप कह रहे, फिर फायदा क्या है, आप इतना सुना रहे हैं और आप ही गुस्सा कर रहे हैं।
1: मुझे बोलते हैं कि आप शिवानी दीदी के साथ इतने सारे सीरियल किए और छोटी सी बात पे आपको गुस्सा आ गया, तो फायदा है क्या हुआ जाके।
0: हाँ,
1: मुझे बोलते हैं
0: राइट,
1: तो देयर राइट।
0: हमें ये चेक करना है
1: सिस्टर, इट इज इम्पॉसिबल। देखिए, मैं किसी महात्मा को देखूं गांजे पी रहा है, मैं किसी को देखूं सिगरेट पी रहा है, किसी को देखूं मैं खराब काम कर रहा है, किसी को देखूं मैं लालची कर रहा है, तो मैं चुप रहूं और बोलूं हा हा हा हा, ऐसा तो होता ही है, ऐसे पॉसिबल है? एवरीबॉडी हैज टू प्ले द रोल। हाँ, तो फिर आपने, आप कितने एपिसोड्स में बोला आपने ड्यूटी करनी चाहिए?
0: हमारी ड्यूटी पहली ड्यूटी है कि हमें दूसरे के प्रति जजमेंट और क्रिटिकल नहीं होना है।
1: हम जजमेंट कहाँ करें, परखने की शक्ति जो आप बोल रहे हो वो परख रहा हूँ मैं।
0: हमें उनसे कुछ सीखना है, कुछ लेना है या नहीं लेना है, आवर चॉइस, वो परखना है। ठीक है, अगर आपको मेरे अंदर कुछ बहुत गलत दिखाई देता है, तो अगर आपको मेरे साथ बैठ के नहीं शेयर करना है, ये आपकी चॉइस, फाइन, ये परखने की शक्ति। लेकिन लेबल करना, जजमेंटल हो जाना, क्रिटिकल हो जाना, ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो ऐसे हैं, ये ऐसे ही करते हैं, फायदा क्या है, इससे तो आपकी पावर डिप्लीट हो जाएगी, मेरा नुकसान नहीं होगा।
1: लेकिन मैं परखा कि ये आदमी, ये संत का ये सब दरबार खोल के बैठा है और इतना बड़ा आश्रम खोल के बैठा है, वहां मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगा, वाइफ को भी बोलूंगा कि वहां बिल्कुल जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको,
0: विदाउट बीइंग क्रिटिकल।
1: समझाएं कैसे विदाउट बीइंग क्रिटिकल?
0: कोई भी चीज ऐसी ना करें जिससे अपने ही शक्ति डिप्लीट होती है। इट्स लाइक ये दिखा ये ठीक नहीं है, उधर से नहीं चलो, पांव टूटेगा, सिंपल, इतना ही परखना है सिर्फ, उधर नहीं
1: चक्कर में आ जाते हैं ना इनके,
0: तो वो अपनी परखने की शक्ति की कमी है।
1: मेरे अगर बच्चे और बीवी है तो मेरा काम है ना, मैं तो परख लिया तब उनको समझाऊं कि ऐसा है, ऐसा ऐसा मत।
0: वेरी ट्रू, विदाउट बीइंग क्रिटिकल एंड जजमेंटल अबाउट द अदर पर्सन, दिस इज नो, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट।
1: सर, लोग अपनी जायदाद दे देते हैं ऐसे लोगों को, ज्वेलरी दे देते हैं, पैसा देके बैठ जाते हैं, क्या क्या कैसे कैसे तो काम होते हैं आपको मालूम है क्या?
0: अपनी परखने की शक्ति की कमी है ना, हमें करना है करें, हमें नहीं करना है नहीं करें, इज फाइन। लेकिन जो हम बहुत ज्यादा दूसरे को क्रिटिसाइज करने की जर्नी पे चले जाते हैं, राइट, सपोज मेरी वाइट ड्रेस है लेकिन उस पे काले दाग है, ठीक है, आपने देख लिया, आपको नहीं आना नजदीक, दूर रहना है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, परख लिया, लेकिन दूर बैठकर

0: आप मुझ पर लगे हुए काले दाग के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उससे नफरत करेंगे, तो उससे मेरे काले दाग पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अपनी यात्रा पर हूँ अपने दाग को कम करने के लिए, लेकिन मुझे क्रिटिसाइज करते करते आपकी ड्रेस पर काले दाग ज्यादा लग जाएंगे।
1: मेरी ड्रेस पर काले दाग कैसे लगेंगे सिस्टर? मुझे एक बहुत जरूरी ये जानना है और मैं इसको इमीडिएटली नेक्स्ट एपिसोड में आपसे ये पूछूंगा।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू। ओम शांति।
2: वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो, वी सी द वर्ल्ड थ्रू अ मिरर। सीइंग द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो मीन्स सीइंग पीपल and situations as they are. Seeing the world through a mirror means seeing situations and people through our sanskars. When we see people through the filter of our sanskars, we will perceive their emotions, words and actions according to our sanskars, and we may not be able to understand them truly as they are. Raj Yoga meditation helps to silence our turbulent sanskars of ego, anger, hurt. This helps us to understand situations and people as they are, and this increases our power to discern. Power to discern or discriminate means to know what is right, what is wrong, what is true, what is false. Often we discern what is right or wrong based on acquired information, people's opinion, or belief systems created by society. This may or may not be right for us. Discernment based on our innate wisdom, which we call the inner voice or intuition, is right for the soul.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होकर बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मी आहे आपल्यासाठी शुभ असलेली शुभांगी

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुणे री आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: आओ आओ खूनहारो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे उम्र के कच्चे, बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बनके मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस। पांच आत्माएं ड्राइवर,

0: उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सबने कहा, हमने भी मान लिया, सबने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की गुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बात थी, तूने क्यों अपना वादा भुलाया है। भूलती हो ना गोरी, तूने मेरा दिल चुराया है।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?

0: रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम।

0: बच्चों कैसे हो तुम लोग?
1: बहुत अच्छे
2: दीदी।
0: लग रहा है सैंडी की थोड़ी सी तबीयत खराब है आज।
2: हाँ
1: मुझे भी लग रहा।
0: क्या हुआ सैंडी?
2: कुछ नहीं, थोड़ी वीकनेस हो रही है।
0: कभी कभी गर्मियों के दिन में तबीयत खराब हो जाती है।
2: हाँ ये बात तो है।
0: तो रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाओ।
1: ज्यादातर ट्रैवल करने से तबीयत खराब होती है।
0: ट्रैवल करने से तबीयत खराब होती है? ये तो है।
2: और आज मैं ट्रैवल करके आया हूँ इसीलिए।
0: ट्रैवल अगर गर्मियों में किया जाए तो फिर तो बॉडी का सारा पानी सूख जाता है। बहुत सारे पानी की जरूरत होती है और आराम की।
2: हाँ दीदी
0: है ना। अच्छा चलो, आज तुम ट्रैवल करके आए हो तो चलो हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं।
1: ओके
2: ओके।
0: तो तुम लोग की फेवरेट जगह, घूमने की फेवरेट जगह कौन सी है?
1: दिल्ली, मेरी माउंट आबू।
0: माउंट आबू?
1: हाँ।
0: और भुवना?
3: मेरी तो कूर्ग।
0: कूर्ग? ये कहाँ पे है?
3: कर्नाटका।
0: कर्नाटका में? क्या वो आपके घर के पास है?
3: नहीं।
0: आप कूर्ग घूमने कब गए थे?
3: लास्ट समर हॉलीडेज गई
0: 2015 में। अच्छा, कितने टाइम के लिए और किसके साथ गए थे?
3: मैंने मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया और अंकल के साथ गई।
0: अरे वाह। और वहाँ पे सबसे अच्छा आपको क्या लगा?
3: मुझे वहाँ सबसे अच्छा वो क्लब लगा जहाँ हम रुके थे, क्योंकि वह स्विमिंग पूल इतना अच्छा था कि हम दिन भर वहीं थे। और नेक्स्ट डे हमने एक तलकावेरी एक प्लेस है जहाँ कावेरी रिवर स्टार्ट होती है, वहाँ गई। वहाँ का फॉग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी मोमेंट थी वो जब हम महसूस करते हैं। वो बहुत कूल था वह जगह, हिल स्टेशन है ना इसलिए।
0: अच्छा, वो एक हिल स्टेशन है।
3: हाँ,
0: इसीलिए वहाँ पे ठंडी होगी।
3: और
0: आपने इतने सारे दिनों में वहाँ पे क्या क्या देखा?
3: कॉफी एस्टेट, फिर बहुत सारे टेम्पल्स देखा मैंने, और एक रिवर के पास गई जहाँ हम खेल रहे थे पानी के साथ में और मेरे भैया।
0: अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या बोला?
3: कॉफी एस्टेट।
0: कॉफी स्टेट्स, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा?
3: मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रीज और कॉफी प्लांट्स देखी मैंने। कॉफी के पत्ते जैसे निकालते वो स्मेल बहुत अच्छी।
0: क्या आपने वहाँ कॉफी पी?
3: नहीं, वो सीजन नहीं था ना।
0: अच्छा, मतलब सिर्फ कॉफी को बनते हुए देखा और बहुत सारे टेम्पल्स देखे।
3: हाँ।
0: अरे वाह, जगह तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुन के घूमने का मन कर रहा है ना सैंडी?
2: हाँ दीदी,
1: सुन के तो ऐसा लग रहा है हम भी वहाँ घूमा है।
2: चले।
0: हाँ, यहाँ तो थोड़ी गर्मी हो रही है, ठंडी जगह जाने में तो मजा आता है। और सैंडी, तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है?
2: दिल्ली।
0: दिल्ली? दिल्ली तुम कब गए थे?
2: इसी वेकेशन में।
0: इसी वेकेशन में गए थे। दिल्ली में सबसे अच्छा क्या लगा?
2: लोटस टेम्पल।
0: लोटस टेम्पल? हाँ, लोटस टेम्पल तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। लोटस की शेप का नजर आता है दूर से देख के।
2: हाँ।
0: और बताओ, दिल्ली में कौन कौन सी जगह तुमने देखी?
2: मीनार, फिर इंडिया गेट और अक्षरधाम, कालरा मंदिर, बहुत सारी जगह घूम लूंगा।
0: मतलब बहुत सारे मंदिर तुमने घूमे। और उसमें से सबसे फेवरेट जगह
2: लोटस टेम्पल।
0: लोटस टेम्पल लगी।
2: और कुतुब मीनार।
0: और कुतुब मीनार लगी।
1: हाँ। कुतुब मीनार तो कभी भूल ही नहीं सकता।
2: नहीं।
0: अच्छा, कुछ स्पेशल अलग है कुतुब मीनार के साथ?
2: हाँ।
0: क्या
2: वहाँ पे काफी एंजॉय किया मैंने और पंकज ने।
1: वहाँ हमें एक नया फ्रेंड भी मिले जो फॉरेन के।
0: अच्छा, वहाँ आप लोगों को नए फ्रेंड्स मिले इसीलिए वो जगह स्पेशल। हाँ। हो गए। और दिल्ली में बस इतनी जगह गए? रेड फोर्ट नहीं गए?
1: रेड फोर्ट
2: गए थे ना, फिर क्लब भी गए, फिर मॉल भी गए, बहुत सारे
0: मॉल गए।
2: हाँ, वर्ल्ड स्क्वायर, एमएक्स मॉल, बहुत सारे मॉल घूमे।
0: दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े मॉल है।
2: हाँ।
0: और मेट्रो में ट्रैवल किया कि नहीं?
2: खूब
1: मेट्रो में तो
2: पूरे दिन मेट्रो में, मेट्रो कार्ड बनवाया, पूरे दिन मेट्रो में घूमे।
0: मेट्रो में घूमने में मजा आता था
2: बहुत। पंकज तो बोले यही रुक जाते
1: हैं। हमें तो ऐसा लगता था कि मेट्रो में ही अपना घर बना ले।
0: इतना अच्छा लगता था मेट्रो में।
1: हाँ।
0: और इंडिया गेट कैसा लगा?
2: इंडिया गेट तो अच्छा ही था, वहाँ गए तो अपन थोड़ा घूम भी गए थे ना।
1: हम वहाँ खो गए थे।
0: खो गए थे।
2: हाँ।
0: अलग हो गए थे दोनों?
2: नहीं, साथ ही थे।
1: रास्ता खो गए थे।
0: अच्छा, वहाँ से मेट्रो स्टेशन का रास्ता खो गए थे?
1: नहीं, टैक्सी स्टैंड का।
0: और अमर जवान ज्योति देखी कि नहीं?
1: देखी बहुत।

0: अच्छी थी,
1: अच्छा लगा।
0: हाँ, वो ज्योति हमेशा जलती रहती नहीं है।
2: और वहाँ पे इंडिया गेट में खास बात और देखी, उस पे जो जो लोग शहीद हुए हैं सबका नाम लिखा हुआ उसके ऊपर।
1: और वो ज्योति हमेशा जलती रहती है।
0: यदि वो ज्योति क्यों जलती है?
1: क्योंकि वो उन शहीदों की याद में जलाई जाती है और उनको हम हमेशा सल्यूट करते हैं।
0: हाँ।
1: हमेशा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो जवानों के जो शहीद हुए उनके लिए वो ज्योति हम हमेशा जलाए रखते हैं। उसको कंटिन्यू जलाया जाता है, कभी बुझने नहीं दिया जाता। और जब स्पेशल ओकेजन होते हैं तो वहाँ परेड होती है और खूब सारी भीड़ होती है उन्हें देखने के लिए।
2: हाँ, सिर्फ टीवी में देखा।
1: टीवी में देखा है।
2: हाँ।
1: और दिल्ली कितने दिनों के लिए गए थे आप लोग?
0: 10 दिन।
1: आप लोग अकेले गए कि मम्मी पापा के साथ?
0: हम दोनों फ्रेंड्स गए थे, दीदी के साथ।
2: दीदी के साथ,
1: दीदी के साथ गए थे। अच्छा, अरे वाह। चलो, आप लोग देश की राजधानी को देख के आए। बहुत अच्छी बात।
0: हमने राजस्थान की राजधानी भी देखी,
2: जयपुर।
1: अच्छा, मतलब दिल्ली के बाद जयपुर का टर्न था।
2: हाँ।
1: तो पंकज तुम बताओ, जयपुर में तुम्हारा फेवरेट क्या था?
0: जयपुर में मेरा फेवरेट था WTP मॉल।
1: WTP मॉल? मॉल अच्छा क्यों लगा सबसे ज्यादा?
0: वहाँ बहुत अच्छा था, बहुत शांति थी, और उसके बाहर जो लाइट्स लगी हुई है वो बहुत स्पेशल लाइट्स है, वो बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को।
1: मतलब कुछ कलरफुल लाइट्स?
0: कलरफुल लाइट्स है, बहुत अच्छी।
1: अच्छा, तब तो देखना पड़ेगा। और जयपुर में क्या क्या देखा?
0: और जयपुर में तो कुछ खास नहीं, बस अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया।
1: हवा महल नहीं देखा?
0: नहीं।
1: अच्छा, जयपुर में हवा महल है। और जयपुर को पता क्या कहते हैं?
0: पिंक सिटी।
1: और पिंक सिटी क्यों कहते हैं जयपुर को?
2: वहाँ की सारी दीवारें गुलाबी गुलाबी नजर आती है।
1: हाँ। और पुराना जयपुर देखा आप लोगों ने?
0: हाँ। नहीं, मैंने नहीं देखा।
1: मतलब दोस्तों के साथ एंजॉय किया।
2: हाँ।

0: और भुवना, मैंने सुना है आपने बहुत सारी जगह घूमी है।
1: हाँ।
0: क्या आप कभी कंट्री के बाहर भी गए हो?
1: हाँ, मैंने यूके में मस्कट गई।
0: मस्कट गए हो, तो आपको कुछ याद है मस्कट का?
1: मुझे लूलू मॉल याद है।
0: मॉल याद है, और वहाँ पे तो आप बच्चे होंगे तो आपने खूब एंजॉय किया होगा।
1: हाँ।
0: है ना? और इंडिया में आप कहाँ कहाँ गए हो?
1: मैं भी राजस्थान गई, मेहरानगढ़ जोधपुर में, हवा महल, कुंभलगढ़, गुरु शिखर।
0: इतनी सारी जगह?
1: मैंने वो अरावली माउंटेन्स गई वहाँ, और मैंने जब ऊपर की इतना हवा रही थी, बहुत अच्छा फील हुआ। मैं जे बहुत प्लेजेंट था, और मैंने एक राजस्थानी ड्रेस भी खरीदी।
0: अरे वाह, राजस्थानी ड्रेस भी खरीदी, कलरफुल कलरफुल।
1: हाँ।
0: वहाँ पे आप शाम को गए होंगे, सनसेट देखा कि सनराइज देखा?
1: सनसेट।
0: सनसेट देखा, कैसा लगा सनसेट देखने में?
1: बहुत अच्छा।
0: और कौन सी जगह? जोधपुर गए आप? जोधपुर कैसा लगा?
1: वो तो बहुत ब्लू सिटी है, तो इसलिए बहुत कूल रहा।
0: कूल रहा। वहाँ पे क्या क्या देखा?
1: मेहरानगढ़।
0: मेहरानगढ़, और वो क्या है?
1: वो एक महल है।
0: अच्छा, महल में आपको सबसे अच्छा क्या लगा?
1: जब हम छत में गए, वहाँ सब ब्लू सिटी दिख रहा था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: मतलब महल की छत से पूरी सिटी ब्लू नजर आ रही थी?
1: हाँ।
0: अरे वाह, फिर तो वो व्यू बहुत ही अच्छा होगा। और राजस्थान में आप कहाँ गए?
1: मैंने
0: कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
1: हाँ।
0: है ना? उनका जन्म स्थान आप देख के आए?
1: हाँ।
0: और वहाँ तो बहुत ऊपर चल के जाना पड़ता है ना?
1: हाँ।
0: तो थके नहीं?
1: नहीं। मैंने एक वंडर भी देखा, राजस्थान का बादल महल।
0: अच्छा, और वो वंडर क्या है?
1: जहाँ हम, वो बहुत ऊपर है, हमें बहुत तेज चढ़ना पड़ेगा, और जब हम ऊपर चलेंगे तो वहाँ हम बादल को छू सकते हैं।
0: वहाँ से सिर्फ बादल नजर आते हैं?
1: हाँ, बहुत अच्छा।
0: बहुत अच्छा था ना? बादल महल तो मैंने भी देखा। और बताओ, कहाँ कहाँ घूमे हो पंकज?
2: और हम दिल्ली में अक्षरधाम घूमे।

0: अक्षरधाम। अच्छा हाँ, अक्षरधाम को हम कैसे मिस कर सकते हैं?
1: बहुत स्पेशल जगह है वो भी।
0: स्पेशल जगह है,
2: खास करके वाटर शो नाइट का।
0: आप लोगों ने वो देखा?
1: हाँ, हाँ। बहुत अच्छा है।
0: क्या क्या देखा उसमें हमें बताओ तो।
1: वाटर शो ऐसा है कि जब वहाँ फवारे से वाटर निकलता है और ऐसा लगता है कि एक म्यूजिक चल रही है और उस पर वो वाटर डांस कर रहे हैं।
0: अच्छा
2: हाँ जी।
0: और क्या उसके पहले उसमें कोई थीम भी होती है? लाइट एंड साउंड शो देखा आप लोगों ने?
1: हाँ, वही लाइट एंड साउंड शो कहते हैं उसको।
0: उसमें एक बार तो दुनिया की स्थापना, पालना और विनाश का पूरा शो भी दिखाया गया था। मेरे ख्याल से अलग अलग थीम पे वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है।
1: हो सकता है, क्योंकि हमने कुछ और देखा था।
0: हाँ, और वाटर और म्यूजिक के थ्रू वो थीम को रिप्रेजेंट किया जाता है।
2: काफी इंटरेस्टिंग था।
0: काफी इंटरेस्टिंग था ना, मजा आया। और वहाँ पे वो जो बड़ी सी जगह है जहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है, खुला खुला आसमान के नीचे इतने सारे लोगों के साथ भी कितना मजा आता है ना।
1: बहुत अच्छा था। और वो खास करके टेम्पल जिसमें ऐसा लगता है कि पूरा गोल्ड का बना हुआ है।
2: वहाँ की कैंटीन भी अच्छी।
1: इसे तो मेरा खाने का ही।
0: नहीं, अच्छी बात है, अगर जगह अच्छी और खाना भी अच्छा हो तो डबल डबल अच्छा हो गया ना।
2: मैं पहले कैंटीन नहीं था कहीं भी।
0: और कहाँ घूम रहे हो? दिल्ली के अलावा कहीं घूमने गए हो?
2: कोटा।
0: कोटा, कोटा में क्या देखा?
2: मैंने कोटा में वहाँ पे एक परमाणु ऊर्जा बनाते हैं ना अपने, जो लाइटें आती पूरे राजस्थान में, वो देखा है।
0: अच्छा, उसको कैसे बनाते हैं आपने?
2: हाँ, हाँ वहाँ पे अंदर गए थे हम, स्कूल से गए थे जब घूमने गए थे, तब स्कूल से कुछ प्रोग्राम था हमारे जिम्नास्टिक होता है, तो उसमें हमारी टीम गई थी। तब सर में 6 लोग थे, तब सर हमको घुमाने लगे। तो वहाँ पे काफी अच्छा है, कुछ चंबल करके कोटा में है, उस पानी से लाइट बनता है वहाँ पे, काफी इंटरेस्टिंग है।
0: पानी से लाइट बनती है? अरे वाह।
2: अपनी जात राजस्थान में सब जगह लाइट वहीं से आता है, परमाणु ऊर्जा।
0: अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज देख के आए आप। और कोटा में तो कोचिंग सेंटर बोलते हैं ना?
2: हाँ, बहुत,
0: मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स होते हैं।
2: स्टूडेंट्स स्टूडेंट। और कोटा में खास बात ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये लाव कर रखा है कि घर को भी स्कूल बना सकते हैं।
0: घर को भी स्कूल बना सकते हैं?
2: हाँ।
0: वो कैसे?
2: क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन अच्छी, बहुत पढ़ाई काफी अच्छी है कोटा की।
0: पढ़ाई अच्छी है,
2: नॉलेज बहुत काफी है कोटा में।
0: लेकिन घर को स्कूल कैसे बना सकते हैं?
2: जैसे ना कि मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव दे रखा है कि
1: मतलब अगर किसी घर में कोई एजुकेटेड व्यक्ति है तो खुद का क्लास खोल सकता।
2: हाँ,
0: उसे अलग से परमिशन की जरूरत नहीं?
2: नहीं, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा वहाँ पे। ये हमने वो हम जहाँ रुके थे पास में कोचिंग सेंटर था, इतनी भीड़ हम तो सीधे था बस वही देखते थे।
0: वहाँ पे तो देश भर से स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आते हैं ना।
2: हाँ।
0: दूर दूर से आते हैं। तो आप लोग भी थोड़ी पढ़ाई करके नहीं है?
2: नहीं,
1: हम तो बस देखने गए थे।
2: हम तो बस खेलने के लिए गए थे। हमारा वहाँ पे उमेर सिंह स्टेडियम था, तो हमारे वहाँ पे प्रोग्राम था हमारा शो, मतलब जिन मास्टर का शो था हमारा, तो सुबह जाना होता शो करने के लिए और शाम को।
0: अच्छा।
2: क्योंकि मैं जिन मास्टर में रह चुका हूँ ना, स्टेट लेवल खेल के आ चुका हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो खेलने के बहाने आपको घूमने को मिल गया?
2: हाँ, पांचवा रैंक आया था हमारा, हमारी टीम का।
0: अरे वाह,
2: थैंक यू।
0: तो ये पता है बच्चों, ये भी अच्छी बात है, जब आप पढ़ाई में अच्छे होते हैं, खेलने में अच्छे होते हैं, तो उसके साथ साथ भी आपको घूमने की कई अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं।
2: हाँ।
0: है ना। और पंकज, आप और कहाँ घूमने गए हो? जब आप छोटे थे क्या तब कहीं घूम के आए?
1: जब मैं छोटा था तब तो मुझे याद भी नहीं मैं कहाँ घूमने गया।
0: इतने छोटे भी नहीं,
1: ऐसी कोई मोमेंट याद नहीं है।
0: अच्छा, अपने आपका जो घर है, आप लोग आप रोड में रहते हो, ये भी तो टूरिस्ट प्लेस है, माउंट में बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं।
2: हाँ दीदी।
0: तो यहाँ के बारे में कुछ बताओ, यहाँ तो आप लोग बहुत घूमे होंगे।
1: यहाँ तो हमने हर जगह घूम रखा है।
0: तो यहाँ की जगह के बारे में कुछ बताओ।
1: यहाँ मैं सुंदर माता मंदिर घूमने गया था।
0: वहाँ पे क्या है?
1: वहाँ पे बस एक मंदिर है, बहुत बड़ा है और फेमस मंदिर है।
0: फेमस है, बहुत पुराना है।
1: और वहाँ एक सैंड की हिल है।
0: सैंड की हिल है? अच्छा,
2: पूरा रेत ही रेत।
0: अच्छा,
1: इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है।
0: और भुवना, तुम्हारे घर के पास कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत फेमस है?
3: चार मीनार।
0: चार मीनार। पहले हम सबको बताओ आपका घर।

0: रहा है?
1: मेरा घर तो थोड़ा दूर है चार मीनार से, मारेटपल्ली में।
0: अच्छा, और वहाँ कौन कौन सी जगह है जो आपने घूमी है?
1: मैंने चार मीनार घूमा, फिर गोलकंडा।
0: गोलकंडा क्या है?
1: वो एक महल है जहाँ राजा रहते थे, वो एक कैपिटल होता था हैदराबाद का पहले।
0: हैदराबाद का कैपिटल, ओके। और वहाँ क्या क्या चीजें हैं?
1: वो एक्चुअली रुइन हो गई, हाफ तो रुइन हो गई, इसलिए मैंने इतना कुछ नहीं देखा, फिर देख के आगे बस
0: देख के आगे। और आपके घर में कौन कौन सी घूमने की जगह है?
1: जब मैं छोटी थी मैं चेन्नई गई, वहाँ क्वींसलैंड गई मैं।
0: क्वींसलैंड?
1: बहुत छोटी थी।
0: वो जगह आपको याद है?
1: हाँ, फोटोस भी थी। और मैंने एक जू गई।
0: जू गए? जू में तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं।
1: हाँ,
0: आपका फेवरेट कौन सा है?
1: मेरा फेवरेट रैबिट।
0: रैबिट तो बहुत क्यूट होते हैं। और पंकज सैंडी, अपने शहर के बारे में हमें और नहीं बताओगे?
2: माउंट आबू हमारा काफी अच्छा है।
3: हमारा शहर तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है
0: क्योंकि राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन।
2: हाँ, माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं।
0: राजस्थान का कश्मीर कहते हैं? अरे वाह। और कौन कौन सी घूमने की जगह है? अगर कोई आपके शहर घूमने आता है तो उसे कहाँ कहाँ लेके जाओगे?
2: दिलवाड़ा का जैन मंदिर।
0: दिलवाड़ा का जैन मंदिर,
2: जिसे इतिहास में पढ़ा भी जाता है।
0: वहाँ की खासियत क्या है सैंडी?
2: खासियत है वहाँ की महावीर भगवान की मंदिर है, 880 किलो सोने की है।
0: अच्छा, और वहाँ की जो कारीगरी वो तो देखने लायक
2: है। उन्हें लोग बुक्स में पढ़ते हैं और देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से आते हैं।
0: वहाँ की एक एक दीवार में अलग अलग नक्काशी और कारीगरी है।
3: इस मंदिर का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ
2: कारीगरी नहीं की गई।
0: और कितना सुंदर और बड़ा मंदिर है।
2: हाँ दीदी, बहुत।
0: दिलवाड़ा मंदिर तो सच में बहुत।
2: और कहा जाता है कि दूसरे देश के लोगों ने शायद उसे वार करने की कोशिश करी, इस मंदिरों पे तोड़ने की कोशिश करी, पर उस मंदिर में कुछ भी खरोच भी नहीं आई।
0: पर एक खरोच भी नहीं आया,
2: ऐसा मेरे पापा ने सुना मैंने।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत सी कहानियाँ हैं जो मंदिर से जुड़ी हुई हैं।
2: हाँ,
0: और कौन कौन सी जगह है?
2: अचलगढ़, जहाँ पर शिव जी की शिवलिंग।
0: अच्छा, अचलगढ़ आप लोग गए हो?
2: हाँ, मैं एक बार गया था फैमिली के साथ। हाँ,
0: माउंट में तो वैसे कहीं भी घूमने चले जाओ अच्छा।
2: अचलगढ़ में पापा बता रहे थे कि वहाँ दो भैंस है जो वहाँ पे दूध दही की नदियों बहती थी।
0: अच्छा,
2: हाँ,
0: मतलब है कि दूध घी दही।
2: हाँ,
0: बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था।
2: हाँ, और वो दो भैंस पी जाते हैं तो उनको शायद किसी राजा ने गोली मार दिया था तो वो पत्थर के बन गए थे, अभी भी वहाँ पर है।
0: अच्छा, ऐसी कहानी मशहूर है।
2: हाँ, और हम लोग देख के अभी भी वो है, ऐसे दो भैंस वहाँ पर
0: जो पत्थर की भैंस है वो। हाँ, वहाँ पे,
2: और अभी भी गोली मारी उसकी निशानी पे है।
0: अच्छा।
2: हाँ,
0: ये तो देखना पड़ेगा।
3: मैं भी देखना चाहता हूँ।
2: ठीक है, चलिए।
0: अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें फ्यूचर में घूमने का मौका मिले, किसी एक जगह जाने का मौका मिले, देश में या विदेश में, तो वो जगह कौन सी होगी?
2: मेरी तो अमेरिका।
0: अमेरिका? और अमेरिका क्यों?
2: बस अमेरिका अच्छा लगता है, अमेरिका जाना।
3: टीवी में अच्छा लगा।
0: टीवी में और फिल्मों में हम हाँ। अमेरिका देखते हैं और अमेरिका बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसलिए अमेरिका जाना है। और बाकी चीजें तो अमेरिका जाके पता चलेगी
2: कैसा है।
0: तो सैंडी जब बहुत सारी पढ़ाई करके एक अकाउंटेंट बन जाएगा, फिर अमेरिका घूम के आएगा?
2: हाँ।
0: और हम सबको लेके नहीं जाओगे?
2: हाँ, लेके जाऊंगा ना दीदी, बिल्कुल। पहले मैं जाके आऊंगा, देखो अच्छा है तो ले जाऊंगा।
0: अच्छा, और पंकज?
3: मैं लंदन जाना चाहता हूँ।
0: लंदन जाना चाहते हो? लंदन क्यों जाना चाहते हो?
3: वो प्लेस मुझे नाम से ही अच्छा लगता है, इसलिए मुझे वहाँ देखना है कि वहाँ क्या है जो इतना फेमस है वो।
0: अच्छा, हाँ, लंदन का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, जब भी हम विदेश की बात करते हैं लंदन का नाम तो जरूर आता है।
3: हाँ दीदी, इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ वहाँ ऐसा क्या है जो फेमस है।
0: वहाँ ऐसा क्या है जो इतना फेमस है, ये ढूंढने के लिए आप लंदन जाना चाहते हैं?
3: हाँ,
2: खोज करेगा पंकज।
0: ठीक है, आप दोनों साथ में जाके खोज करके आना।
2: ठीक है।
0: और भूमना, आप कहाँ जाना चाहते हो?
4: मैं पेरिस जाना चाहती हूँ।
0: आप पेरिस जाना चाहते हो? अच्छा, और पेरिस क्यों जाना चाहते हो?
4: क्योंकि मैं एक वंडर देखना चाहती हूँ इस वर्ल्ड का, ईफिल टावर।
0: अच्छा, जो सेवन वंडर्स वर्ल्ड हैं उनमें से एक वंडर आप देखना चाहते हो?
4: हाँ।
0: क्या किसी ने इंडिया का
4: ताजमहल
0: देखा है? देखा है? हाँ। मतलब आप आगरा गए हो?
2: हाँ, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो गांव जा रहे थे तो बीच में आगरा ट्रेन लेट थी, तो फिर वहाँ से स्टेशन से पापा ले गए थे, 10-15 मिनट के लिए गए थे।
0: अच्छा, तो वहाँ पे क्या देख के अच्छा लगा?
2: सबसे मस्त वहाँ की नदी, जो पास से नदी निकल रही है, काफी इंटरेस्टिंग। वहाँ की आगरा की पूरी ताजमहल है, उसका पूरा परछाई वो नदी में दिखती है।
0: नदी में दिखती है। हाँ। और वो दूर से बहुत ही सुंदर नजर आता है ना?
2: हाँ।
0: और इंडिया के वंडर की बात की और वर्ल्ड का एक वंडर घूमना देखना चाहती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या ट्रैवलिंग के टाइम पे कोई मुश्किलें आती हैं?
2: इसे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है।
0: जैसे?
3: जैसे कई बार खो जाते हैं रास्ता।
2: जैसे हम दिल्ली में खो गए थे।
0: दिल्ली में खो गए थे, फिर मिले कैसे?
2: हम साथ में खोए, मतलब बस रास्ता भूल गए।
0: रास्ता भूल गए
2: तो
0: रास्ता भूल जाए तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
2: हमने गूगल खोला।
0: गूगल खोला? हाँ, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ है।
3: लेकिन हाँ। फिर भी मुझे एक मेन पॉइंट याद था जहाँ से हम वापस जा सकते थे।
0: इसीलिए जब आप घूमने जाएं तो
2: मैं थोड़ा डर गया।
0: आप तो डर गए थे कि कहीं गलत ना चले जाए?
2: हाँ। जबकि पंखे सही आ रहा था।
0: होता है कभी कभी जब हम डर जाते हैं तो सही भी हमें सही नजर नहीं आता।
2: हाँ। थोड़ा मैं जल्दी हड़बड़ा जाता हूँ उस बात के लिए।
0: और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है?
2: कि पेशेंस रखना चाहिए।
0: हमें पेशेंस रखना चाहिए और सही रास्ता खोजने के लिए इंतजार करना चाहिए। गूगल है, आसपास के कुछ लोग हैं जो आपको विश्वास के पात्र लगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। और कभी भी एक व्यक्ति के डायरेक्शन पर ना जाके 3-4 लोगों से वो डायरेक्शन कंफर्म करें, तभी आगे बढ़ें।
2: ओके दीदी,
0: है ना?
3: हाँ दीदी।
0: उसे कहते हैं क्रॉस चेक करना। 3-4 लोग तो आपको एक साथ गलत नहीं बताएंगे।
2: हाँ।
0: है कि नहीं?
3: कुछ लोग मजाक भी करते हैं।
0: कुछ लोग मजाक कर सकते हैं या गलत बता सकते हैं, लेकिन अगर 3-4 लोगों से आपने क्रॉस चेक किया तो मतलब आप सही रास्ते तक पहुंच जाओगे, है ना?
2: हाँ दीदी।
0: और दोस्तों के साथ घूमने में ज्यादा मजा आता है कि फैमिली के साथ?
2: दोस्तों के साथ।
0: और पंकज?
3: फ्रेंड्स के साथ।
0: भुवना?
4: फैमिली के साथ।
0: भुवना को फैमिली के साथ ज्यादा मजा आता है। फैमिली के साथ मजा नहीं आता पंकज और सैंडी को?
2: मजा आता है
3: पर उतना नहीं,
0: क्योंकि दोस्तों के साथ ज्यादा मस्ती करते हैं।
2: हाँ।
0: लेकिन फैमिली के साथ भी बहुत मजा आता है, क्योंकि उनके साथ वो टाइम हमें घर पे कभी कभी नहीं मिल पाता। सब लोग अपने अपने जॉब में व्यस्त होते हैं, इसीलिए जब भी फैमिली को लेके जाओगे तभी भी और इन्जॉय करने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करना।
2: ठीक है दीदी।
0: और सैंडी भी हमें कोई जगह के बारे में बताने वाले हैं क्या?
2: हाँ, अंबाजी मंदिर, जो कि हम पैदल गए थे घूमने के लिए।
0: पैदल? कितनी दूर?
2: यहाँ से ज्यादा दूरी पे नहीं है। मैं और पंकज जब अंबाजी मंदिर में नवरात्रि चलते हैं तो काफी लोग पैदल जाते हैं, अच्छी मान्यता होती है, तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम पैदल गए थे। हाँ, फिर शुरू से जाके वहाँ हालत खराब हुई थी हम लोगों की, दर्शन तक ये नहीं सो गए,
0: मतलब इतना चले कि थक गए।
3: हाँ, तो बहुत मजा आया।
2: हाँ।
0: दोस्तों के साथ सफर में भी ज्यादा मजा आता है घूमने से ज्यादा।
2: फर्स्ट टाइम पैदल गए थे हम लोग कहीं।
0: पैदल
2: पता नहीं
0: लगा था आप लोग को पैदल चल के जाने में।
2: रात को 8 बजे निकले थे ना, फिर
3: 5 घंटे
0: पैदल चले थे
2: लगातार।
0: ठीक है बच्चों, आज हमने ट्रैवलिंग के बारे में बहुत सी बातें की।
2: हाँ दीदी।
0: अभी तो तुम लोग छोटे छोटे हो और इतनी सारी जगह घूम के आए हो, और जब और बड़े हो जाओगे तो और जगह जब घूमने जाओगे तो एंजॉय करने के साथ साथ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की भी कोशिश करना।
2: हाँ
3: दीदी, अभी तो सिर्फ इंडिया की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है,
0: बाद में विदेशों की भी करेंगे।
2: हाँ।
0: और जहाँ भी जाएंगे उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे, ताकि वो हमेशा हमारे और भी काम में आए। ओके, आज की ये बातचीत हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।

तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Now we need to understand, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, मतलब बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

न करो दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा न करो वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक।

एक दिन तुम्हारे दिल में भी एक आग उठेगी, तूफान उठेगा, मोहब्बत जाग उठेगी। हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको यहाँ, सर के बल चल कर आऊँगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला, हर हाँ

ओ बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार तो हर यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी और दिल

आसमां क्या नशा नशा सा है, बोलिए न बोलिए सब सुना।

नशा नशा सा है, बोलिए रब बोलिए सब।

करो अच्छे करो मेरे जान दे, धीरे धीरे हौले हौले नशा ये पिलाया किसने, फिर ये चुप के चलाया किसने, ये मीठा मीठा जादू जगाया।

0: ना, मैं कपड़े बदल रही हूँ।
1: ओ माफ करना, भूल गया था। अच्छा तुम कपड़े बदल लो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ।
0: ए क्या हुआ?
1: हुआ ये मीनू, हमारे दरमियान ये साड़ी एक दीवार बन गई है।
0: अगला कहेगा इसे दीवार कहता है।

0: अब तो कोई दीवार नहीं है ना?
1: नहीं, अब कोई दीवार नहीं मीनू।
0: मीनू नहीं, मीना।

0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, धामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी
1: नारायण।

0: क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भले नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। निस दिन देखूं जिनके सपने खो बैठूं प्रीतम अपने।
0: तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचू, दासों के बाजार में बेचू। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां विरह की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।